0: NBC रेडियो हर पल आपके साथ।
1: तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है?

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो
0: प्रभात आराधना, हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

एमबीसी रेडियो, वजह मुस्कुराने की। सुप्रभात श्रोताओं, घड़ी मिला लीजिए, इस समय सुबह के ठीक 6 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं सुबह के पहले संक्षिप्त समाचारों के साथ।

नमस्कार, 6 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 21वां सत्र आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। करीब 130 बड़े नेता इसमें हिस्सा लेंगे। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल कर रहे हैं। मुख्य मुद्दों में नए महासचिव का चुनाव, जलवायु बदलाव और एआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम शामिल हैं। जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ। आयात 9.4% घटा जबकि निर्यात 10.7% बढ़ा। हालांकि जहाजों को दी जाने वाली सामग्री और ईंधन को अलग कर दें तो निर्यात में 7% की गिरावट आई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार धूम्रपान करने वाली महिलाओं में गर्भधारण से जुड़ी परेशानी का खतरा 40% से अधिक हो सकता है। 7 युवा मोशन अक्टूबर महीने में सिंगापुर में होने वाली स्टेम रेसिंग विश्व प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। ये पहली बार है जब अफ्रीका इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। कृषि उद्योग मंत्रालय बीज और फलदार पौधे तैयार करने के लिए छोटे किसानों को बढ़ावा दे रहा है। पहली योजना से 27 किसान जुड़ेंगे, इसके लिए 8 मिलियन रुपए रखे गए हैं। विदेश स्तर पर यमन में लड़ाई के कारण 1,20,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में 3,000 से अधिक लोगों ने पड़ोसी जिबूती के शरणार्थी शिविर में पना ली है। इसके साथ ये समाचार समाप्त हुए। अब बढ़ते हैं मौसम की खबरों की ओर। मौसम की जानकारी। पूर्व से आ रहे अस्थिर बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं। देश के पूर्व और सेंट्रल प्लाटू पर आज सुबह के दौरान रह रहकर बरसात होगी। शाम को देश के पश्चिम में बरसात जारी रहेगी, अन्य जगहों में बादल घिर रहेंगे। रात के मौसम की बात करें तो ऊंचाइयों पर मौसम खराब ही रहेगा और बादल घिर रहेंगे। हवा दक्षिण पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से बहेगी जिसके झोंके इससे ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के बरे समुद्र खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची

0: लहरें उठेंगी, समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम अन्य इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच। सूर्योदय 6 बजे, सूर्यास्त 6:05 पर।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius, Radio Mauritius.
3: सुबह के 6:04 और 20 सेकंड्स। आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं कुछ विज्ञप्तियां सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई। वालोंचिना और पिचिकॉन फिनिक्स के आसपास के इलाके, जिनमें है CWA वालोंचिना, वालदेवी ईवन गार्डन, मौसलमॉ लिनवो, कुछ इलाके पिचिकॉन, मौसलमॉ रिवर एज, सोफिया ब्रांच रोड और मौसलमॉ दामगी के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल बुधवार 23 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही साथ वालोंचिना और पिचिकॉन फिनिक्स के कुछ और इलाके, जहां पर है मौसलमॉ लिनवो, कुछ इलाके पिचिकॉन, और इन इलाकों में कल सुबह 9 बजे से, माफ़ कीजिएगा, सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच और पुनः दोपहर के 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्तियां जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
4: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज़ पर, ये है रेडियो मॉरिशस।
4: रेडियो मॉरिशस,
1: Radio Mauritius.
3: सुप्रभात श्रोताओं, ये मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का रेडियो मॉरिशस प्रसारण है। मीडियम 819 किलोहर्ट्ज़ पर से हमारा ये प्रसारण जारी हो रहा है। आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। माइक पर आपका साथ दे रही है रत्ना। सितंबर महीना, 22 तारीख 2026 का वर्ष, मंगलवार का दिन। मैं हूँ रत्ना, उपस्थित हो चुकी हूँ आप सभी की सेवा में अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और आज का दिन सभी के लिए ऊर्जाजनक रहे, ईश्वर की कृपा सभी पर बनी रहे। आज के इस दिन की शुरुआत हम करेंगे मानस मोती कार्यक्रम के साथ अभी थोड़ी ही देर में, और ये कार्यक्रम डॉक्टर वीनु अरुण द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। कुछ सदाबहार भाव गीतों के साथ आज की सुबह को और सुरीली बनाएंगे। पुनः 6:30 बजे हम जुड़ेंगे समाचार बुलेटिन के साथ, और समाचारों के उपरांत सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। तो आइए आज के सुविचार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं। श्रोताओं, अगर पूजा के बाद भी किसी भूखे को देखकर मन ना पिघले तो समझिएगा मंदिर तक पहुंचे हैं, लेकिन धर्म तक अभी पहुंचना बाकी है। आइए इसी के साथ डॉक्टर वीनु अरुण का स्वागत करते हैं मानस मोती कार्यक्रम में।
5: आइए सुनिए मानस मोती रामायण सेंटर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम।
6: रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मोती कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रकृति के सुंदर दृश्यों के माध्यम से गहन आध्यात्मिक और नैतिक संदेश दिए हैं। उनका उद्देश्य केवल प्रकृति के बाहरी रूप का वर्णन करना नहीं, बल्कि उसके माध्यम से मानव जीवन, संतों के पवित्र स्वभाव और आध्यात्मिक सत्य को भी समझाना है। आज जो चौपाइयाँ और दोहे मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उनमें एक सरोवर के माध्यम से संतों के निर्मल धर्ममय जीवन और

आध्यात्मिक तथ्य का निरूपण किया गया है। तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जह तह पिय ही विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा, पुरई नि सघन ओठ जल, बेगिन पाई अमर्म, माया छन्न न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म, सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माहि, जथा धर्म सीलन के दिन सुख संजुत जाहि। अर्थ क्या है आइए देखें। ये जो सरोवर है उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है, मन को हरने वाले सुंदर चार घाट बंधे हुए हैं, भांति भांति के पशु जहां तहां जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी है। घनी पुरैनों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता, जैसे माया से ढके रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एक रस सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। आइए इन चौपाइयों और इन दोहों में छिपे हुए अर्थ पर हम एक बार विचार करें। चौपाई में कहा गया है, संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। अर्थात सरोवर का जल संतों के हृदय की तरह निर्मल और पवित्र है, यानी सरोवर के जल की तुलना संतों के हृदय से की गई है। जैसे सरोवर का जल कैसा है, बहुत ही पवित्र है, बहुत ही निर्मल है। कैसे निर्मल और पवित्र है, जैसे संतों का हृदय, क्योंकि संत का हृदय निष्कपट होता है, शुद्ध होता है, करुणा से भरा हुआ होता है, उसमें किसी प्रकार का छल कपट या स्वार्थ नहीं होता। जैसे स्वच्छ जल में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है, पारदर्शी होता है स्वच्छ जल, वैसे ही संत का हृदय भी पारदर्शी होता है। यानी संत के हृदय में ऐसा नहीं कि कहे कुछ और करे कुछ, मन में कुछ बाहर कुछ, नहीं, उनका हृदय बिल्कुल पवित्र होता है। और यहाँ चार मनोहर घाट ये जो कहा है, इसका क्या अर्थ है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चार प्रतीक पुरुषार्थों के प्रतीक के रूप में मनोहर घाटों की बात कही गई है। यानी संतों के जीवन में ये चारों पुरुषार्थ संतुलित और मर्यादित रूप में विद्यमान रहते हैं। संत अपने जीवन में धर्म को आधार बनाकर अर्थ और काम को मर्यादा में रखते हुए अंततः मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। इस प्रकार सरोवर के चार घाट जीवन के संतुलित और आदर्श मार्ग का संकेत देते हैं। आगे तुलसीदास जी लिखते हैं, जहाँ तह पियहि विविध मृग नीरा, जनु उदार गृह जाचक भीरा। अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के पशु उस सरोवर का जल पी रहे हैं। ये दृश्य ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी उदार और दानी व्यक्ति के घर पर याचकों की भीड़ लगी हो। देखिए कितने उनकी उपमाएं कितनी सुंदर हैं, तुलनाएं कितनी सुंदर हैं। ये उपमा संतों के उदार स्वभाव को प्रकट करती है। जैसे उदार व्यक्ति के घर से कोई याचक यानी कोई भी मांगने वाला कुछ आए तो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, उसी प्रकार संत का हृदय भी सबके लिए खुला होता है। जो भी उसके पास आता है वह ज्ञान प्रेम करुणा और प्रेरणा पाकर संतुष्ट होकर लौटता है। संत किसी में भेदभाव नहीं करते। जिस प्रकार सरोवर का जल सबके लिए समान रूप से उपलब्ध है, उसी प्रकार संत का स्नेह और कृपा भी सबके लिए समान होती है। और इसके बाद तुलसीदास जी बहुत ही सूक्ष्म आध्यात्मिक संकेत देते हैं, बहुत ही सुंदर है। पुरैन सघन ओट जल, बेगिन पाई अमर्म, माया छन

0: न देखी है जैसे निर्गुण ब्रह्म, अर्थात सरोवर में घनी पुरैन की आड़ के कारण उसके जल की गहराई का तुरंत पता नहीं चलता। पहली बात, पुरैन का मतलब क्या है? पुरैन कहते हैं कमल के पत्तों को। अब आप जरा इसे समझिए कि एक सरोवर है, जैसे मान लीजिए गंगा तालाब, वो भी एक सरोवर है, या पाम्पलेमुस में जो एक छोटी सी झील बनी हुई है, वो तो बहुत छोटी है, लेकिन उदाहरण के लिए जैसे उसमें वो कमल के पत्ते बिछे होते हैं तो अंदर पानी दिखाई नहीं देता, क्योंकि पूरे जल को किसने ढक रखा है? कमल के पत्तों ने ढक रखा है। तो ये जो सरोवर जिसका वर्णन यहाँ तुलसीदास जी कर रहे हैं, उस सरोवर में भी कमल के पत्ते पूरी तरह से पड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य कि कमल के पत्तों ने सरोवर के पानी को ढक रखा है, इसलिए जल की गहराई का पता नहीं चलता, क्योंकि वो ढका हुआ है पत्तों से। उसी प्रकार माया से आच्छादित होने के कारण निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो पाता। देखिए कितनी महत्वपूर्ण और कितनी गहरी बात कितने सहज ढंग से कह रहे हैं। निर्गुण ब्रह्म क्या है? सरोवर की गहराई के समान है, लेकिन निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार हम नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा हृदय माया के आवरण से ढका हुआ है, हमारा जीवन माया में लिप्त है, इसलिए हम उस ब्रह्म का साक्षात्कार उसी प्रकार नहीं कर पाते जैसे कमल के पत्तों से ढके होने के कारण सरोवर के जल की गहराई को हम माप नहीं सकते। तो कितनी ऊंची बात तुलसीदास जी कितने स्वाभाविक और कितने सहज और सरल ढंग से समझा रहे हैं कि जिस प्रकार सरोवर के ऊपर फैले हुए पत्ते उसकी गहराई को छिपा लेते हैं, उसी प्रकार संसार की माया परम सत्य को हमारी दृष्टि से ओझल कर देती है। मनुष्य बाहरी संसार के आकर्षण, मोह और भ्रम में उलझा रहता है, इसलिए वह उस परम सत्य को नहीं देख पाता जो सर्वत्र विद्यमान है। इसका एक अर्थ ये भी है कि सत्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को माया की परतों को हटाना होगा। जब मन निर्मल और एकाग्र होता है तभी परमात्मा का साक्षात्कार संभव होता है। इसलिए अंत के दोहे में उन्होंने कहा, सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, जथा धर्म सीलन के दिन सुख संजुत जाही। अर्थात उस अथाह और गहरे जल में सभी मछलियां समान रूप से सुखी रहती हैं, उसी प्रकार धर्मशील और सदाचारी लोगों के दिन भी सुखपूर्वक व्यतीत होते हैं। यहाँ मछलियों का सुखी रहना धर्मशील मनुष्यों के जीवन का प्रतीक है। जो व्यक्ति धर्म सत्य और सदाचार का पालन करता है उसके जीवन में संतोष और शांति बनी रहती है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसके भीतर एक स्थिर आनंद रहता है। इस प्रकार यद्यपि तुलसीदास जी प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं, सरोवर का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उसके माध्यम से पहले उन्होंने संतों के स्वभाव का वर्णन किया और उसके बाद निर्गुण ब्रह्म और माया के परस्पर संबंध को समझाते हुए उन्होंने उस सरोवर की सुंदरता का वर्णन किया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार संतों का जीवन सदा संतुलित रहता है, सदा संतोष से परिपूर्ण रहता है। और श्रोताओं, आज रामचरितमानस से कुछ चुनी हुई चौपाइयों और दोहों के साथ ही मैं इस कार्यक्रम को विराम देने की अनुमति चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार और शुभ दिन।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस मोती।

रामपुर का लक्ष्मण, इस गीत को हमने अभी भी सुना किशोर कुमार और आशा ताई की आवाज में। श्रोताओं, ज्यादा जानना जरूरी नहीं होता, सही चीज गहराई से जानना ज्यादा आवश्यक होता है। और जानकारी के महासागर में बस हमें तैरना सीखना है। चलिए, इसी के साथ बेहतरीन से बेहतरीन गीतों का ये सफर जारी रखते हैं और आपकी सुबह को और भी तरोताजा बनाने के लिए लेते हैं ये अगला गीत। और लता जी की प्यारी सी आवाज में रखा हुआ ये गाना है, फिल्म 20 साल बाद से लिया हुआ।

चलिए इसी के साथ अभी थोड़ी ही देर में हम जुड़ेंगे समाचारों की ओर, समाचारों के साथ बिल्कुल, और समाचारों के बाद सुबह का नजराना कार्यक्रम में हम पुनः उपस्थित रहेंगे आपकी सेवा में। जाते जाते बस यही कहेंगे कि हर दिन एक छोटी सी असुविधा बिल्कुल आप चुनिए, क्योंकि कहते हैं ना कि आराम का जाल जो होता है ना वो बहुत ही खतरनाक होता है। आराम का जो जाल है वो हमें कहीं ना कहीं लेजी बना देता है। इसीलिए अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो थोड़ी सी असुविधाएं को भी पालिए। और कहते हैं ना थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, बिल्कुल आप कंफर्ट जोन के बाहर निकलिए, तब जाकर आप ग्रो कर पाएंगे, तब जाकर आप आगे बढ़ पाएंगे। और इसी के साथ आइए ये बहुत ही लाजवाब सा गीत अलबेला फिल्म से लिया हुआ लता जी और चितलकर की आवाज में, हालांकि है तो सुबह, शाम हुई नहीं है, पर चलिए शाम का इंतजार हर किसी को होता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: समाचारों में आपका स्वागत है। नमस्कार, सुबह के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। ये नया दिन आप सभी के लिए शुभ हो। शुरू करते हैं आज की सुर्खियों के साथ। करीब 130 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेता आज मंगलवार 22 सितंबर से न्यूयॉर्क में जुट रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 21वां सत्र शुक्रवार तक चलेगा। विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ विदेश सचिव रॉय बिसुंदोयाल और संयुक्त राष्ट्र में मॉरिशस के राजदूत मिलान मितौबान भी न्यूयॉर्क में मौजूद। एमबीसी से बातचीत में मिलान मितौबान ने इस बार की महासभा के मुख्य मुद्दों के बारे में बताया। जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा कम हुआ, लेकिन पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले अभी काफी अधिक। एक महीने में आयात 9.4% घटकर करीब 30.4 बिलियन रुपए रह गया। यमन में लड़ाई तेज होने के बाद हजारों लोग जान बचाकर पड़ोसी देश जिबूती पहुंच रहे हैं। एक बार फिर स्वागत है आपका इन समाचारों में। इन सुर्खियों को अब देते हैं विस्तार। करीब 130 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेता आज मंगलवार 22 सितंबर से न्यूयॉर्क में जुट रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा का 21वां सत्र शुक्रवार तक चलेगा। मॉरिशस की ओर से विदेश मंत्री रितेश रामफोल इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कई बड़े नेता बैठक में मौजूद रहेंगे, जबकि कुछ अहम चेहरे नजर नहीं आएंगे। इससे दुनिया की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की भी एक तस्वीर सामने आती है। प्रणव बिहारी और गीता सुनारा।
2: सबसे पहले बात उन नेताओं की जो इस बार मौजूद नहीं रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब न्यूयॉर्क नहीं जा रहे हैं, जबकि चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग संयुक्त राष्ट्र महासभा में कभी

0: शामिल होने नहीं गए हैं। इसे रूसी और चीनी राष्ट्रपतियों की ओर से एक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के मुकाबले कुछ दूसरे मंच ज्यादा उपयोगी हैं, जैसे दोनों नेता 10 दिन पहले भारत में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में मौजूद थे। कुछ नेता अपनी मर्जी से अनुपस्थित नहीं हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को वीजा नहीं मिला है। अमेरिका ने लगातार दूसरे साल उन्हें वीजा देने से इनकार किया है, लेकिन कई ऐसे नेता हैं जो इस महत्वपूर्ण बैठक में जरूर शामिल होंगे। इनमें सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप का नाम आता है। अमेरिकी राष्ट्रपति आज महासभा को संबोधित करने वाले हैं। पिछले साल उन्होंने अपने संबोधन में बहुपक्षीय सहयोग की कड़ी आलोचना की थी। इसके विपरीत इमानुएल माक्रों मौजूदा समय की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए देशों के बीच सहयोग के महत्व पर जोर देंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान भी महासभा को संबोधित कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के बावजूद उन्हें वीजा देने से इनकार नहीं किया गया है। एक और संघर्ष है यूक्रेन में चल रहा युद्ध। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने मंगलवार को अपने अमेरिकी समकक्ष से मुलाकात करने की घोषणा भी की है। वहीं मॉरिशस के विदेश मंत्री रितेश रामफल शुक्रवार को महासभा को संबोधित कर सकते हैं। वे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका को स्थायी प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग रखेंगे।
1: करीब 130 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसरे बड़े नेता आज मंगलवार 22 सितंबर से न्यूयॉर्क में जुट रहे हैं। तो विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ विदेश सचिव रॉय बिसुंदोयाल और संयुक्त राष्ट्र में मॉरिशस के राजदूत मिलान मितौबान भी न्यूयॉर्क में समय मौजूद है। एमबीसी से बातचीत में मिलान मितौबान ने इस बार की महासभा के मुख्य मुद्दों के बारे में बताया। इनमें अंतोनियो गुटेरेस की जगह संयुक्त राष्ट्र के अगले महासचिव का चुनाव अहम रहेगा। मॉरिशस के लिए जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चर्चा भी खास मायने रखेगी। इसके अलावा दुनिया भर में AI के इस्तेमाल के लिए बेहतर नियम बनाने पर भी बात हो सकती है। इस मुद्दे पर कुछ प्रस्ताव भी मंजूर किए जा सकती हैं। मिलान मितौबान को सुनते हैं, उनसे बात की काविंता पेसो ने।
2: En principe, avant la fin de l'année, l'élection d'un nouveau secrétaire général des Nations Unies. Et ça, évidemment, c'est une question majeure qui préoccupe tout un délégué pendant les prochaines semaines. On connaît la question de l'eau. Vient une question très importante pour la communauté internationale et non une conférence que les Nations Unies peut organiser en décembre à Abu Dhabi. Le délo, en principe, il y a une norme de résolution qui va adopter. Ce qu'on appelle disaster preparedness, comment un pays prépare pour faire face à un désastre. Et dans le même contexte, capable aussi souligner les débats qui pourraient leur préparation pour une pandémie. Nous avons aussi des choses qui sont arrivées dans le passé. Une des préoccupations aussi majeures pour nous en particulier et pour les autres îles, c'est ce qu'on appelle Sea Level Rise. Donc, c'est tout l'effet du changement climatique, mais en particulier la montée du niveau de la mer qui menace en fait l'existence même de plusieurs îles. Il y a aussi un sujet qui peut faire l'objet de beaucoup de débats, mais au Kavavatan, c'est le AI governance, parce qu'il nous cause beaucoup de cadres réglementaires pour AI, mais en fait, pour Bizin, il y a aussi un framework international, parce que si un pays prend bonne mesure et qu'un autre pas prend bonne même mesure, risque de l'avantage que ça le pays a gagné. Donc, il est nécessaire qu'il y ait en fait un accord international pour que tout un pays adopte les mêmes mesures par rapport à AI. Et non, un débat intéressant qui commençait un peu déjà dans la session précédente et qui peut certainement continuer dans cette session-là, c'est ce qu'il appelle Beyond GDP. Parce que pendant de nombreuses années, en fait, GDP fut l'indicateur principal de beaucoup de questions liées au développement, au financement du développement. Et là, finalement, un début, on est encore tout au début, mais vous avez souligné, de débat sur comment nous avons, et non, par les autres indicateurs, comment nous avons assessé la vulnérabilité de spécifique.

0: de certains États, et pas et non un seul critère qui applique à tout le monde et qui est le critère traditionnel de GDP.
1: जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा कम हुआ है, लेकिन पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले अभी काफ़ी अधिक है। एक महीने में आयात 9.4% घटकर करीब 30.4 बिलियन रह गया। इसकी एक बड़ी वजह ईंधन पर खर्च में आई कमी है। दूसरी ओर निर्यात 10.7% बढ़ा है, मगर ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से जहाज़ों को दी जाने वाली सामग्री और ईंधन से हुई है। इसे अलग कर दें तो निर्यात में 7% की गिरावट दर्ज हुई है। जुलाई में व्यापार घाटा कम हुआ है, लेकिन अर्थशास्त्री एरिक निंग का कहना है कि केवल एक महीने के आंकड़ों से पूरी स्थिति का पता नहीं चलता है। उनके अनुसार मॉरिशस को अपना निर्यात बढ़ाने और नए सामान विदेशों में बेचने पर ध्यान देना होगा, साथ ही खाने पीने की चीज़ों और ऊर्जा के लिए आयात पर निर्भरता भी कम होगी। धूम्रपान केवल फेफड़ों और दिल को ही नुकसान नहीं पहुंचाता, इससे पुरुषों और महिलाओं को माता पिता बनने में भी परेशानी हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 8 सितंबर को जारी अपनी नई रिपोर्ट में इस खतरे के बारे में बताया है। वर्ष 2026 के बीच दिए किए गए अध्ययन के अनुसार धूम्रपान करने वाली महिलाओं को गर्भधारण में परेशानी का खतरा 40% अधिक हो सकता है। मॉरिशस में धूम्रपान करने वाले पुरुषों की संख्या काफी अधिक है। वर्ष 2021 के सर्वेक्षण के अनुसार 35.3% पुरुष और 3.7% महिलाएं धूम्रपान करती हैं। हालांकि बच्चा होने में परेशानी का केवल एक ही कारण धूम्रपान नहीं, फिर भी इसके खतरे को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य मंत्रालय से डॉक्टर विदीश रामचरितर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। उनसे बात की शबनीस उजिया वाहिद अली ने, विवरण गीता सुनाराम।
2: Définitivement, nous trouvons une hausse de fertilité qui a augmenté surtout dans les derniers 5 à 10 ans.
3: पिछले 5 से 10 वर्षों में इनफर्टिलिटी के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। ज्यादातर कारण दुनिया भर में पुरुषों को लेकर हैं। सिगरेट से कई समस्याएं पैदा होती हैं। हम सिगरेट न जलाने की सलाह देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, शीशा या अन्य पदार्थों का भी सेवन न करने की सलाह देते हैं। सिगरेट पर खोज की गई है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। किसी व्यक्ति को सिगरेट न चलाने की बात कहने का भी एक तरीका है। सरकार द्वारा देश के अस्पतालों में स्मोक सिजेशन क्लिनिक कायम किए गए हैं।
1: चीनी वाहन कंपनी BYD ने सितंबर की शुरुआत में चीन में 183,000 से अधिक गाड़ियां वापस मंगवाई हैं। इन गाड़ियों के ब्रेक पैडल के एक हिस्से में खराबी पाई गई है। इनमें क्वीन और टैंग सीरीज की वे गाड़ियां शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2014 से 2022 के बीच बनाया गया था। मॉरिशस में BYD गाड़ियों के मालिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों सीरीज देश में नहीं बेची जाती। हालांकि मॉरिशस के वाहन बाजार में BYD की बिक्री बढ़ रही है। नेशनल लैंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के 9 सितंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार अगस्त महीने में मॉरिशस में BYD के 57 गाड़ियां बिकी हैं। इसके साथ BYD अगस्त में सबसे अधिक बिकने वाली वाहन कंपनियों की सूची में चौथे स्थान पर हैं। कॉल एलिजे और दाविद टोमास की बताई जा रही एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में रावातोमांगा मामले से जुड़े 350 मिलियन रुपए की कथित मांग की बात सामने आई है। हालांकि रिकॉर्डिंग असली है या नहीं और इसमें किन लोगों की आवाज़ें हैं ये अभी साबित नहीं हुआ है। जांच अब फ्रांस तक पहुंच गई है। FCC की एक टीम रविवार को वहां पहुंची है। सोमवार को फ्रांस में मॉरिशस के दूतावास में उस व्यक्ति का फोन जांचा गया जिसे कथित तौर पर अक्टूबर 2025 में ये ऑडियो फाइल मिली थी। जांच अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फाइल कब और कैसे मिली और इसे किस तरह सुरक्षित रखा गया। अद्रियन वालिया, गीता सुनारान।
3: प्राप्त जानकारियों के अनुसार जिस फोन की जांच की जा रही है वो फ्रांस में रहने वाले नासिर बिकी के एक करीबी का है। बताया जा रहा है कि ये फाइल उसे 23 अक्टूबर 2025 को रिकॉर्डिंग किए जाने वाले दिन ही भेजी गई थी। सुरक्षा के लिहाज से ये फाइल उसके करीबी को भेजी गई थी। बताया जा रहा है कि नासिर बिकी ने उससे इस फाइल को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर उसे वापस भेजने को कहा था। इस तरह नासिर बिकी ने ये फाइल दोबारा हासिल की और बाद में FCC पहुंचे, जहां उन्होंने 11 सितंबर को एक अफिडेविट और एक USB की के साथ ये रिकॉर्डिंग सौंपी थी। अब जांच

0: कर्ता इसी दावे की पुष्टि करने में जुटे हैं। जांच की ये प्रक्रिया फ्रांस में मॉरिशस के राजदूतावास में चल रही है और आज भी जारी रहने की उम्मीद है। उनके वकील समाद गुलामुली के अनुसार फ्रांस में की गई ये कार्रवाई तेजी और गंभीरता के साथ पूरी की गई है। उन्हें उम्मीद है कि अधिकारियों के मॉरिशस लौटने के बाद जाँच में और तेजी आएगी। वहीं फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने मीडिया में जानकारी लीक होने पर चिंता जताई है। आयोग का कहना है कि इससे जारी जाँच प्रभावित हो सकती है। फिलहाल ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता और उसमें सुनाई देने वाली आवाजों की पहचान की पुष्टि होना अभी बाकी है।
1: यमन में लड़ाई तेज होने के बाद हजारों लोग जान बचाकर पड़ोसी देश जिबूती पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में 3,000 से अधिक लोगों ने वहां शरणार्थी शिविर में पनाह ली है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हाल की हिंसा के कारण 1,20,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। लगातार हवाई हमलों, ड्रोन और मिसाइल हमलों से तटीय इलाकों में डर और तनाव बना हुआ है। चले जानते हैं कि स्थानीय स्तर पर मौसम का हाल कैसा रहेगा। हमारे इलाके पर पूर्व से आ रहे अस्थिर बादलों का असर है। आज सुबह के दौरान देश के पूर्व और सेंट्रल प्लाटो पर रह रहकर बरसात होगी। शाम के मौसम की बात करें तो देश के पश्चिम में बरसात जारी रह सकती है। अन्य जगहों पर बादल घिरे रहेंगे। रात को ऊंचाइयों पर वर्षा जारी रहेगी और अन्य इलाकों पर बादल घिरे रहेंगे। हवा पूर्व की ओर से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके इससे ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। प्रवाल रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा, विशेषकर दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। समुद्र में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटू पर 15 से 17 और अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान शहरी इलाकों पर 19 से 21, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच होगा। सूर्योदय 5:59 पर और सूर्यास्त 5:06 पर होगा।

0: देश विदेश और मौसम संबंधी जानकारियों के साथ हम पहुंच गए हैं इस बुलेटिन के अंत में। तकनीकी सहायक हमारे साथ रहे फैजान, उनको हम धन्यवाद देते हैं। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। रॉयल रोड ग्रैंड रिट्रीट में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के मनीचंद रामफल की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें मानिक के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के सवा दो बजे उनके बेटे प्रकाश रामफल के घर, लोग उन्हें दीप के नाम से भी जानते हैं, ग्रैंड रिट्रीट से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावांचिया की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:15 PM. Rue Jasmin, Mosselman and Rose, Highlands May, 73 years old, ki Junya Diapal Singh ki mrityu ho gayi hain. Paidaish naam Ramcharitu, लोग उन्हें गौमती के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज सुबह तीन बजे उनके बेटे राकेश दियापाल सिंह के मकान हाईलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM. रॉयल रोड बॉम्बू में 62 साल के भुवनेश्वर उलकोरी की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें दया के नाम से अधिक जानते थे। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उन्हीं के मकान बॉम्बू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मुंतान सैंपिया बॉम्बू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 12:30 PM. सीते गारीबो वाली दे प्रेत में 64 साल के 64 ईयर्स ओल्ड के राज उजागिया की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें सुनील के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान वाली दे प्रेत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सिपाही ब्रुले वाली दे प्रेत की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM. Avenue Fleuris Plaisance Rosilmé 34 years old ki Rishi Olkori ki

हो गई हैं। लोग उन्हें अर्जुन के नाम से अधिक जानते थे। उनके अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान भूलजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलोनी व्यू की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड के श्री नारायण दत्त रामगुलाम की मृत्यु हो गई है। लोग उन्हें नारायण के नाम से

पेचित रिविये से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावंचियो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी क्रिमेशन टुडे एट अ क्वार्टर पास्ट 10 एएम Maurice Martin Street, L'Espérance Pitomé, 72 साल के 72 years old के आनंद चमन की मृत्यु हो गई है. उनके अर्थ आज दिन के 11 बजे उनके बेटे रंजीव चमन के मकान पीतों से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 11 एएम. Impasse Sahai, Royal Road, Goodlands में 91 साल की 91 years old की धनवंती सहाय की मृत्यु हो गई है. लोग उन्हें पति के नाम से अधिक जानते थे. उनकी अर्थी आज दोपहर बाद दो बजे उनके बेटे गोई दामरी के मकान गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआगुश गुडलैंड की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2 p.m. Reservoir Road, Goodlands, 77 साल की मिसिज मारी क्लोदेट सीतामल की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी आज दिन के 10 बजे उन्हीं के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोतोतो की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 10 a.m. High Metal Road, Pointe-Pimomé, 58 साल की 58 years old की धरी माउती गंगवा की मृत्यु हो गई है. पैदाइश नाम रिदोई. लोग उन्हें इंदिरा के नाम से अधिक जानते थे. उनके अर्थ आज दोपहर बाद दो बजे उनके पति सुखदेव गंगवा के मकान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पोइंट-ओ-बीश की शमशान भूमि ले जाया जाएगी. क्रिमेशन टुडे एट 2 p.m. शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस स्पोर्ट्स न्यूज़।
1: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगले तीन हफ्तों के लिए इंटरनेशनल ब्रेक, छुट्टी केवल लीग के लिए, पर इंटरनेशनल खिलाड़ियों को अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेलने का मौका होगा। इंग्लैंड की टीम में एक के बाद एक इंजुरी क्राइसिस, चिनो लिब्रामेंटो, कोबी माइनू, कोल पाल्मर, मार्कस राशफोर्ड और डेक्लन राइस इंग्लैंड के लिए इंजुरी के कारण नहीं खेल पाएंगे। कोच टोमास टुखेल के लिए समस्या गंभीर, मॉर्गन गिब्स व्हाइट और जेम्स गार्नर को इमरजेंसी बुलाया गया है। इस शनिवार को इंग्लैंड का सामना वर्ल्ड चैंपियन स्पेन से होगा वेम्बली में। इसके बाद 28 सितंबर को चेक रिपब्लिक के खिलाफ मैच, 3 अक्टूबर को क्रोएशिया के खिलाफ और फिर 6 अक्टूबर को चेक रिपब्लिक के खिलाफ मैच है। ये सभी मैच नेशंस लीग के लिए हैं। ग्रुप 3 में इंग्लैंड की टीम है। टीम टॉक के अनुसार लिवरपूल फेयेनोर्ड के 20 साल के राइट बैक गिवारो रीड को मॉनिटर कर रहा है, पर मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल भी उस पर रुचि दिखा रहे हैं। गिवारो रीड नेदरलैंड्स का अंडर 21 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। इधर एशियन गेम्स में 13 साल की यू जीदी ने दूसरा गोल्ड मेडल जीता। इस बार 200 मीटर इंडिविजुअल मेडले में चैंपियन बनी, फिर से चैंपियनशिप रिकॉर्ड के साथ। इससे पहले 200 मीटर बटरफ्लाई में भी यूजीडी गोल्ड मेडल जीत पाई थी। आईटी नागोया जापान में लग रहे इन खेलों में अभी तक चाइना 23 गोल्ड मेडल जीत पाया है, टोटल 38। फिर जापान 8 गोल्ड मेडल, रिपब्लिक ऑफ कोरिया 5 गोल्ड मेडल। भारतीय डेलीगेशन के खाते में 4 सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। एशियन गेम्स में भी भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई, बांग्लादेश को हराकर। फाइनल में आज श्रीलंका के खिलाफ मैच है, सुबह 8:30 ये फाइनल शुरू होगा। मॉरिशस की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम क्लब एम अगले महीने श्रीलंका के खिलाफ 2 फ्रेंडली मैच खेलेगी। पहला मैच 2 अक्टूबर को और दूसरा 5 अक्टूबर को, दोनों मैच 7:00 को दो के नेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उधर कुसाफा कप अंडर 20 में सेशेल्स ने मॉरिशस को 4-3 से हराया। क्षेत्रीय स्तर पर, रीजनल लेवल

0: पर इस सप्ताहांत के दौरान वोस्नो स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में बॉम्बू वेरिये की सबाकोस टीम ने ग्रांबे की ब्लैक कारोल एफसी को 4-0 से हराया। प्लेन मायों वेटेरन टूर्नामेंट के दूसरे दिन शेबेल की जीत हुई 1-0 से साउथर्न नेशनल वेटेरन एफसी के खिलाफ, स्कोर 1-0, जबकि अरब सिटी ने ट्रॉ बुटिक को 5-2 से हराया। एक रॉयल लेगेसी फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल इस संडे को टेरूज रेंजर्स वर्सेस वेल एफसी। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आगे दीजिए नमस्कार आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: 6:55 हो चुके हैं और इसी के साथ आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नजर डालते चले। ऑसेनाल के आसपास के कुछ इलाके जिनमें है लाहौद बालाक्लावा, इवाको, ऑसेनाल गवर्नमेंट स्कूल के निवासियों को सूचित किया जाता है कि आज मंगलवार 22 सितंबर को दोपहर के 1 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा।
1: 819 kilohertz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: The Mauritius Broadcasting Corporation invites you to submit your bid for the provision of medical insurance cover for the period 2026-2027. The bidding document is available free of charge on the Procurement Policy Office website, publicprocurement.govmu.org. Please note that bids must be submitted exclusively by email to tender@mbc.mu. For queries, contact the Tender Committee on 402-8000, extension 427. Or email bidsec@mbc.mu by 17th of September 2026. And remember, the deadline for submission is 24th September 2026 at 2 p.m.
4: Radio Mauritius.
5: 819 kilohertz par ye hai Radio Mauritius.
4: Radio Mauritius.
5: Radio Mauritius.

0: On the hour, every hour. Radio Mauritius.
1: 7:01 इससे आगे बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक और विज्ञप्ति सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई और ये विज्ञप्ति है तमाघैं के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए, खासकर मौसल मकालूस एवेन्यू बुआ कोगाई और ला मियाई, इन इलाकों में रहने वालों को सूचना दी जाती है कि कल बुधवार 23 सितंबर को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिजली की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं। इसी के साथ आइए आगे का कार्यक्रम जारी रखते चले।
2: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर

0: सुबह का नजराना कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का तहे दिल से पुनः स्वागत करते हैं। मैं हूं रत्ना, आपकी सेवा में उपस्थित हो चुकी हूं। 7:02 हो चुके हैं और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम के साथ आइए बहुत ही प्यार से जुड़ते हैं। 22 तारीख सितंबर महीना, मंगलवार का दिन और मंगलमय मन को लिए मंगलवार में कदम रखते हैं और इसी के साथ सभी का मंगल हो, सभी का भला हो, सभी का अच्छा हो, बस यही तो हमारे अंदर वो ऊर्जा प्रकट करती है, ऊर्जा स्रोत बनती है। और इसी के साथ आइए आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं चिंतन के साथ, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं डॉक्टर लक्ष्मी जमन। आइए उनका स्वागत करते हैं।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: चरित्र बल पर ही मनुष्य दैनिक कार्य, प्रलोभन और परीक्षा के संसार में दृढ़ता पूर्वक स्थिर रहते हैं और वास्तविक जीवन की क्षीणता को सहन करने योग्य बनते हैं।

7:07 और इसी के साथ चलिए आपको बताते चले आज कौन कौन से कार्यक्रम रखे गए हैं। जी हाँ, आज के कार्यक्रम में इस वक्त सुबह का नजराना कार्यक्रम आप सुन रहे हैं जो जारी रहेगा दिन के 9 बजे तक, और उसी के अंतर्गत 8 बजे हम जुड़ेंगे भोजपुरी समाचारों के साथ, और भोजपुरी समाचारों के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने भाई विलन एक्चुअली उन्होंने हीरो के साथ काम हीरो के काम में शुरुआत की थी, पर धीरे धीरे करते हुए विलन के रोल में वे ज़्यादा प्रचलित हुए, और इसके लिए बस थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना पड़ेगा बिल्कुल। और ये जारी रहेगा सुबह के 9 बजे तक। 9 बजे के बाद आप सुन पाएंगे आज की चर्चा का कार्यक्रम, और आज के इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी सुमिता सरकार। आज हिंदी दिवस पर बिल्कुल ये कार्यक्रम आधारित रहेगा, और आज के मेहमान होंगे श्रीमान राज शेखर जी। तो ज़रूर आज के इस कार्यक्रम में आप इस कार्यक्रम को सुनिएगा, रेडियो मॉरिशस पर इसका सीधा प्रसारण सुन पाएंगे और MBC के तीसरे चैनल पर इसका सीधा प्रसारण देख सकते हैं। साथ ही साथ इसको पुनः से रीब्रॉडकास्ट किया जाएगा 3 बजे से 4 बजे के बीच रेडियो मनोरंजन पर। ये जारी रहेगा 9 बजे से 10 बजे के अंतर्गत, और 10 बजे के

0: समाचारों के बाद भक्तिमय वातावरण को बनाते हुए भक्ति धारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जहां पर भक्तिमय भजनों के साथ आपका साथ मैं दूंगी पुनः से। और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे आचार्य वेद सुधा, आचार्य सुदेश बद्री जी को वेद सुधा कार्यक्रम में। 11 बजे तक इस कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। 11 बजे के बाद विविध भाषाओं के कार्यक्रमों को सजाया जाएगा रेडियो मॉरिशस की लहरों पर, जिसकी पहल होगी शम्मे फरोजा कार्यक्रम के साथ, जो होगा उर्दू भाषा में और पेशकश रहेगी सैयदा सुबाई की। 12 बजे तेलुगु भाषा का कार्यक्रम लेकर आएंगी वर्षा। 12:30 बजे मराठी गीतों का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा सीताबाई धर्मिया द्वारा। और फिर ठीक 1 बजे आप सुन पाएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम, जिसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी आरएससी की ओर से। 1:45 बजे अमिता लेकर आएंगी गुजराती गीतों का कार्यक्रम। 2:00 से 2:30 बजे के बीच मैंडरीन का कार्यक्रम होगा, जिसे प्रस्तुत करेंगे डेविड। और 2:30 बजे से शुरू होगा आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम आपकी पसंद, जिसे प्रस्तुत करेंगी रोशनी। ये चलेगा शाम के 4 बजे तक। 4 बजे पुनः आप सुन पाएंगे तमिल भाषा का कार्यक्रम, प्रस्तुतिकरण होगी पुवना की। शाम 5 बजे भूले बिसरे गीत, इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी उषा। शाम 6 बजे देश विदेश की खबरें, समाचार बुलेटिन। और ठीक उसके तुरंत बाद पुनः आपके लिए कार्यक्रम सजाए जाएंगे। और बिल्कुल मैंडरीन का कार्यक्रम होगा शाम 6:30 बजे के करीब, समाचारों के तुरंत बाद। और इस कार्यक्रम को सजाएंगी जिन। 7 बजे पुवाना फिर लेकर आएंगी तमिल भाषा का कार्यक्रम। 7:30 बजे कृतिका की प्रस्तुति में होगा तेलुगु भाषा का कार्यक्रम। 7:50 पर मराठी कार्यक्रम को लेकर आएंगे श्री श्रामा। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम, जिसे प्रस्तुत करेंगे अनीता। 8:40 पर महफिल शब, इस कार्यक्रम को प्रस्तुतिकरण की जाएगी निसार अख्तर द्वारा। 9:00 बजे से लेकर 11:00 बजे के बीच भोजपुरी तड़का कार्यक्रम, प्रस्तुतिकरण होगी आरजे प्रताप सिंह की। और 11:00 बजे से लेकर 12:00 बजे के बीच सुनहरे पल का कार्यक्रम सजाया जाएगा नीतूषा की ओर से। 12:00 बजे से कल सुबह 6 बजे तक आप सुन पाएंगे ओवरनाइट प्लेलिस्ट। वैसे आपको ये भी याद दिला दें कि अभी बिल्कुल एक विशेष पर्व चल रहा है गोविंदन और वेंकटेश्वरा व्रतम के अवसर पर, तो 5:35 पर आप सुन पाएंगे एक विशेष कार्यक्रम जो होगा तमिल भाषा में, जिसकी प्रस्तुतिकरण की जाएगी हमारे तमिल अनाउंसर्स द्वारा। और 5:50 पर आप सुन पाएंगे तेलुगु भाषा का कार्यक्रम तेलुगु महासभा की ओर से। तो ये थी सूचना, ये थी बिल्कुल झलकियां हमारे रेडियो कार्यक्रमों की। और इसी के साथ आपको ये भी याद दिला दे, आज दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच पुनः मैं आपका साथ दूंगी। और आज हमारे साथ जुड़ेंगी पैरिस पल्लवी अंचाज, जो कानून की दुनिया से लगकर है, और जानेंगे उन्हीं की उड़ान की कहानी उन्हीं की जुबानी। तो बिल्कुल साथ दीजिएगा रेडियो मनोरंजन पर दोपहर के 2 बजे से 3 बजे के बीच। और इसी के साथ चलिए फिर रुख करते हैं हमारे गीतों की ओर, सुबह का नजराना कार्यक्रम को जारी रखते हैं।
1: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

महीना तो सितंबर का है, पर कैसे कहें, ऐसे ठंड के मौसम में अगर पसीने छूटने लगे तो ये संकेत है कि भाई बीमारी, बुखार, कुछ तो गड़बड़ है सेहत के साथ। और ये था गाना 12 o'clock मूवी से लिया गया। जी हाँ, इस फिल्म का जो संगीत निर्देशन किया था ओ पी नैयर साहब का, आपने तो सुन ही लिया होगा। ये जो गाना, ये जो लचक थी गाने में, गीता दत्त की आवाज़ मोहम्मद रफ़ी ने दिया था साथ। और इस फिल्म में नज़र आए थे गुरुदत्त और वहीदा रहमान साथ नज़र आए थे, रहमान साहब भी। और लाजवाब गीतों का ये सफर है हम जारी रखेंगे आपके साथ। भाई कहते हैं ना, सुबह उठकर काम पर जाना ये हर किसी के नसीब में नहीं होता। अगर आपके आपको ये मौका मिला है तो शिकायतें ना करें कि भाई आज फिर काम पर जाना पड़ेगा, बड़ा बड़ा भारी दिन होगा। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें और बिल्कुल हिम्मत के साथ काम करें ताकि आपका मूड भी अच्छा बना रहे और अच्छी एक प्रोडक्टिविटी बने। चलिए इसी के साथ 7:18 मजेदार गीतों के साथ आपका दिन तो हम जबरदस्त बना ही रहे हैं, और मजेदार गीतों के सफर में चलिए एक और मजेदार अनसुना सा गाना आपको सुनाते हैं। ये है संध्या मुखर्जी की आवाज में, बहुत ही प्यारा सा गीत, शायद आपने कभी सुना हो।

थी सजा। देवानंद और निम्मी साहब इस फिल्म में नजर आए थे। ये प्यारी सी आवाज, बिल्कुल संध्या मुखर्जी की एक लाजवाब सी आवाज। हर आवाज में एक अलग हरकत, एक अलग भाव। और चलिए लाजवाब गीतों के सफर में हम भी आपका बहुत ही प्यार से साथ दे रहे हैं और मौसम बहुत ही मजेदार, कुछ पुराने गीतों के साथ इस सुबह को और भी तरोताजा। भाई कहते हैं ना कि गलती करने से मत डरो, गलती छुपाने से डरो। नई दुनिया में ये कहते हैं ना कि जो ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता ही असली ताकत है। अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो बिल्कुल गलती को मानकर माफी मांग लीजिए, क्योंकि गलती करना ये तो इंसान की फितरत होती है। भाई कई बार होता है ना, हो जाती है गलती, पर गलती को समझकर सही समय पर मांग लेनी माफी आपको एक अच्छा इंसान बनाने की ओर एक कदम है। और चलिए प्यारे से गीत के सफर में आपको एक और ऐसा गाना सुनाते जो है मुकेश साहब और आशा जी की आवाज में एक अनसुना सा गीत।

गीतों को सुनकर आपका दिल खुश हो रहा है। चलिए, इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। इसीलिए बहुत ही कम शब्दों में कहें तो किसी को खुश करना इतना मुश्किल नहीं होता। और ये बहुत ही प्यारा सा गीत था, तुम्हारी कसम से लिया हुआ म्यूजिक था, राजेश रोशन साहब का, नवीन निश्चल पर फिल्माया हुआ ये प्यारा सा गीत। और काफी सारे लोग हमें मैसेज करके कह रहे हैं कि बहुत अच्छा गाना, उनका फेवरेट। चलिए, अच्छा लगा जानकर। और बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और आज का दिन आप सभी के लिए इन गीतों की तरह रहे। भाई कहते ना कि आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो सोशल मीडिया के जमाने में हम कितना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। पहले तो खिड़कियों के पर्दों से ताक झाक हुआ करती थी, पर आजकल तो खुलेआम हम सोशल मीडिया पर दुनिया के, मतलब जिंदगी में कितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, फॉलोअर्स कितने बनते हैं, इसी पर हमारा ध्यान टिका रहता है। इसीलिए बस हम तो यही कहेंगे कि भाई फॉलोअर्स नहीं बनाओ, फॉलोअर्स मत बनाओ, अपना फोकस बढ़ाओ। जिंदगी में अगर कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो फोकस बढ़ाओ। और ये जो लाइक्स है ना, ये तो बस कुछ क्षण के लिए है। आपकी जो रियल कौशल है, आपके अंदर जो छुपा हुआ जो टैलेंट है, वो ही हमेशा के लिए है, वो ही स्थाई है। और इसी के साथ मज़ेदार गीतों का ये सफ़र हम जारी रखते हैं, बस अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छे अच्छे गीतों के साथ। और सोने की चिड़िया फिल्म से लिया हुआ ये गीत, फिर ले जाते हैं आपको 50s के ज़माने की ओर, तलत महमूद और आशा जी की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना।

चलिए फिसलते हुए समय के साथ हम भी फिसल कर आ चुके हैं आपकी फेवरेट सेगमेंट की ओर, जो है छोटी सी बात। और छोटी सी बात, कुछ ऐसी बातें आप तक हम लेकर आते हैं। ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत कुछ, छोटी छोटी बातें जो है हमारे जीवन में हमें कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करने वाली ये बातें। और चलिए इसी के साथ आज एक कहानी हमें मिली है बहुत ही मज़ेदार, और ये एक तिब्बती कथा है, एक पुरानी तिब्बती कथा जो दो उल्लुओं पर आधारित है। जी हाँ, दो उल्लू एक वृक्ष पर आकर बैठे थे। एक ने सांप अपने मुंह में पकड़ के रखा था और भोजन था उन दोनों का, और एक ने

चूहे को पकड़ लिया था। दोनों ने मुंह में दबोच कर रखा था। ये उनका सुबह का नाश्ता था, सुबह के नाश्ते की तैयारी थी। दोनों जैसे ही बैठे वृक्ष पर, पास पास आकर दोनों बस इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह होगी। तब तक वो मुंह में दबोचे हुए थे अपने प्रे को, बिल्कुल अपने शिकार को। और दूसरा एक जो चूहा पकड़ लाया था वो भी उसके पास ही बैठा हुआ था उल्लू, और उसने देखा कि सामने वाले के मुंह में सांप है और इसके मुंह में चूहा। पता है क्या हुआ? सांप ने जब देखा कि आगे चूहा है, यानी चूहा पकड़ा हुआ है और बस वो उसको देखता जा रहा है, दोनों में अभी जान बाकी थी। अब सांप ने जब जैसे ही चूहे को देखा तो वो ये भूल गया कि वो भी उल्लू के मुंह में फंसा हुआ है, वो भी मौत के शिकंजे में है। चूहे को देखकर उसके मुंह से बस रस टपकने लगा और वो भूल ही गया कि मौत के मुंह में तो वो भी अटका हुआ है। उसको अपनी जीवेशना ने बिल्कुल पकड़ लिया था, और चूहे ने जैसे ही देखा कि सांप को ये भयभीत हो गया है, वो कांपने लगा। ऐसे मौत के मुंह में बैठा है, बिल्कुल चूहा भी ये भूल गया कि वो खुद भी मौत के मुंह में जकड़ा हुआ है, पर सांप को देखकर वो कांपने लगा। वे दोनों उल्लू बड़े हैरान हुए। एक उल्लू ने दूसरे उल्लू से पूछा, अरे भाई इसका कुछ राज समझे? तो दूसरे ने कहा, बिल्कुल समझ में आया कि जीभ की रस की स्वाद की इच्छा इतनी प्रबल है कि सामने मृत्यु खड़ी है तो भी दिखाई नहीं पड़ रही, और ये भी समझ में आ गया कि भय मौत से भी बड़ा होता है। मौत सामने खड़ी है, उससे ये भयभीत नहीं हो रहे हैं, और बिल्कुल ये भयभीत जो है चूहा जो है वो सांप को देखकर भयभीत हो रहा है। वैसे तो दोनों ही मौत की चंगुल में फंसे हुए हैं और भय से भयभीत है कि कहीं सांप उस पर हमला ना कर दें। दोस्तों, मौत से हम भयभीत नहीं हैं, हम भयभीत हैं, हम भय से ज्यादा भयभीत हैं, यानी भय से, डर से हम ज्यादा डरे हुए हैं। और लोभ स्वाद का, इंद्रियों का, जीवेशना का इतना प्रगाढ़ है, इतना ज्यादा है कि मौत 2400 घंटे खड़ी है तो भी हमें दिखाई नहीं दे रही। और बिल्कुल यही बात है जो हमें जिंदगी में सीखनी है, समझनी है। हम इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं, हम इतने ज्यादा लालची हो जाते हैं कि कई बार हमसे कुछ छिन न जाए, बस हमें इसी चीज का डर लगा रहता है। पर भाई जब जाने का समय आएगा तब तो सारा कुछ छोड़कर ही जाना है। हम कैसे भूल जाते हैं ये सारी चीजें? कुछ लोग इस कदर अपनी चीजों से, अपने नाम से, अपने स्टेटस से लगाव कर बैठते हैं, लगता है कि ये कभी जाएगा ही नहीं, और इतना ज्यादा डर में अपनी जिंदगी को बिताते हैं। पर ये सब किस लिए, क्यों, कभी सोचा है आपने? ये जो लालच है ना, ये कभी कभी हमें इस कदर अंधा कर देती है कि हम अपनी अस्तित्व को ही भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी बात एक बार फिर हमें बहुत बड़ी चीज सिखाती है कि मौत से भी बड़ा भय है हमारे अंदर का डर।

0: जुर्म सनसलिया हुआ ये गीत आशा ताई और मोहम्मद अजीज की आवाज में। सुबह का नजराना कार्यक्रम को रखते हैं जारी।
1: सूरज की चमचमाती किरणों के साथ सुबह का नजराना।

वैसे मानना पड़ेगा आपके प्यार का सैलाब बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। और इसी के साथ हम आपको बताते चले, यहाँ पर हमें पत्ते कम पड़ रहे हैं, पन्ने कम पड़ रहे हैं भाई आपके नामों को नोट डाउन करने के लिए, पर कुछ भी कह लो आपका प्यार भाई, कुछ भी। दिल से थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत प्यार। और यहाँ पर श्यामा जी हमेशा की तरह साथ देती हुई।

का नाम जोड़ते हैं यहाँ पर, उनके प्यारे भैया जयप्रकाश, भाभी नम्रता, केशव और युधीश, साथ है उनकी दोस्त प्यारी सखियां विश्वानी जी और वीना रामफल, साथ है उनकी प्यारी बहन वैजयंती, और यहाँ पर काटोबोन से है माला सुमारू जी उनके पति सूर्यदेव के साथ, फ्लोरियाल से सादेरी है माधुरी जी, वाकवा से जुड़ी हुई हैं शोभा जी, अनुषा, शर्वीना, अवनीश अर्णवी और उनकी प्यारी बहन है प्रेमिला जयमंगल जो हैं कौंडमास से, माफ़ कीजिएगा मोचीदास से, और उनकी प्यारी सखी राधा बाल गोबिंद नुअलफोंस से जुड़ी हुई हैं मानती जी, उनकी दो प्यारी बहनें अनंती, आरती, साथ है उर्वशी, अनुषा, गिरीशा, मितिशा, भव्य, पुष्कल, हितांशु, और लक्ष्मी जी बॉम्बू से जुड़ी हुई हैं, और आज दीदी शीला का जन्मदिन है, पांच प्यारी बहनें, पांच भाइयों की ओर से, माफ़ कीजिएगा, पांच बहनें चार भाइयों की ओर से, और गीदू परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार जाता है दीदी शीला को। नोएल फ्रांस से ही जुड़ी हुई हैं गायत्री जी, साथ है भाई बेटा अजय, मामी है कल्याणी मोहन, मेबग से भाभी है शकुंतला जो रहती है मोताईलुंग, और उनकी प्यारी सखी हैं गीता बाई। बिलगुस से साथ दे रही हैं अनीता जी, आज उनकी प्यारी ननन शीला वुचित का जन्मदिन है जो रहती हैं पोर्ट लुइस, और शीला जी की सभी भौजियों की ओर से, साथ है करुणा, अमृत, अमिता और अनीता, छह नीस यानी छह भगिनियों की ओर से, बहनों की ओर से और सभी परिवार की ओर से बहुत सारा प्यार। शिवरानी जी जुड़ी हुई हैं घोबुआ से, और साथ ही साथ उनके प्यारे बेटे सुधीर शर्मा सुनाही जो है काटोबोन से, बहू है रोशनी, साथ है श्री शिखा शिवान और बेटे राज, बहू आरती जो है घोबुआ से, और उनके पोते हैं यश, बहू है अंजलि और साथ है बेटा कबीर, बेटी है शर्मिला सीचन और नातिन है उर्वशी रघुबा, प्यारी बहन कृष्णा कुमारी गौरी शंकर और भाई है उमाकांत दीपचंद जो रहते हैं बुबासें, और साथ ही साथ यहाँ पर कमला जी जुड़ी हुई हैं कत कुकु से, आज उनके यहाँ पर नन्नी सी परी आई है, 15 दिन हो चुके हैं और वे बहुत खुश हैं, साथ है पापा अविश, मामा दीक्षा, उनको ढेरों बधाइयाँ, और साथ ही साथ दादा संजय, दादी है कविता और बड़ी दादी कमला की ओर से और सभी रामन परिवार की ओर से उनको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। उदय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं रिवेजपुस से, और बिल्कुल उनकी प्यारी पत्नी संगीता, बेटी है स्मृति, कीर्ति, दामाद है नागेश और नाती है केयान, साथ ही साथ उनकी समधन है ज्योति, समधी जी है सुनील जो है बॉशेगी से, लीला जी जुड़ी हुई हैं बॉशेगी से, मौका से है सुदेवी जी, कुछ तबीयत नासाज है, बस आप ठीक हो जाए, हम आपके लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे, आपके पति और बच्चों का नाम जोड़ते हैं। उश्तिया से कल्याणी जी भी जुड़ चुकी हैं, 20 तारीख को कल्याणी जी आप अपना जन्मदिन मना चुकी है, रविवार को आपको कहेंगे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे आपकी दो बेटियों की ओर से, आपके पति की ओर से और आपके सभी दोस्तों की ओर से और रामायण मंडली के सभी सदस्यों की ओर से आपको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। अनीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अनीता लाल जी ईतू गोगा नागेश्वर परिवार के साथ मोडाल बेयक की ओर से, और त्रियोले से सूरज शर्मा सजादा जी भी जुड़ चुके हैं, ओकुले से अमृता जी भी इस वक्त साथ दे रही हैं, सरिता जी जुड़ चुकी हैं काटोबोन से, जय बजरंगबली आपको भी, नीता खेदनी हमारे साथ है सेंट जूलिया विलाज से, आपकी प्यारी सखी स्वाधिका और सभी खेदनी परिवार के साथ, मोडाल बेयक से जुड़ी हुई हैं इंदिरा लॉटन, विश्वानी दुमन जुड़ी हुई हैं वाकवा से और रोजबेल से साथ दे रही हैं साकुन, आज उनके प्यारे बेटे ऋषि जीवन का जन्मदिन है, तो चलिए ऋषि भैया आपको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके पापा, आपकी मम्मी साकुन, साथ ही साथ आपकी प्यारी पत्नी, आपके भाई और दो प्यारे बच्चे एवा और शेन की ओर से आपको ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। हाईलैंड से जुड़ी हुई हैं उषा जी, कुंज बिहारी और मोहन सिंह परिवार के साथ, सेंट जूलिया दुतमौ से जुड़े हुए हैं राजन रामा जी, हमेशा की तरह प्यारा सा मराठी में हमेशा मैसेज भेजते हैं और सच में हमारा दिल खुश कर देते हैं, बिल्कुल आपने सच कहा दादा, बिल्कुल आप कहते हैं कि जहाँ पर शांति है, प्रेम है, वही घर स्वर्ग है, सही कहा। और यहाँ पर सुनीता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है गौगुप से, उनकी दो प्यार तीन प्यारी बहनें विमला, अमृत और वीना जी,
विजय बंधन और उनका पूरा परिवार क्लावित से जुड़ा हुआ है। पत्नी रेखा, तीन प्यारी बहनें बिंदु, चंदनी, कुमारी और आपके सभी दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए। राजन जी जुड़े हुए हैं लाफ्लोगा से, पत्नी माला और दो प्यारी

0: बेटियों के साथ प्रार्थना और प्रगति। सुभाषनी कासिदोस हमारे साथ जुड़ चुकी है वाकवा से, कहती है मुकेश साहब का गाना हमें बेहद पसंद आया, फिल्म सजा का जो गीत आपने चलाया, थैंक यू सो मच, बस आप ही लोगों के लिए ये गाना हम चुनकर लाते हैं। यहाँ पर लीलो जी भी खौफवा से जुड़ी हुई हैं, आज घर पर है अपनी प्यारी बहन मानती के साथ, दो प्यारी सखियां शीला और गीता जी जो खेत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपको बहुत बहुत हिम्मत। प्रेमिला सी गुलाम हमेशा की तरह कौंदमास से साथ देती हैं, रागिनी और साधना जो है बेचू परिवार रिश्मो फ्लाक से साथ देते हुए, और अनसुया राम किलावंत्रियोले से जुड़ी हुई, क्योपीप से गीता जी जुड़ी हुई हैं, मोताइलोंग से भी गीता जी आपका फ़ोन आ रहा था पर अनफॉर्चुनेटली हम आपके फ़ोन को अटेंड नहीं कर पाए, माफ़ी चाहते हैं। वाकवा से नलिनी जोखन हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, लेस्पेरांस त्रेबुशे से है किरण बारोट और उनकी प्यारी पत्नी नम्रता, और यहाँ देवी जी आपका भी प्यारा सब मैसेज आ चुका है, कहती हैं गुड मॉर्निंग, आपको भी बहुत बहुत प्यार। और बिल्कुल जो लोग आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं, हमारे टीम की ओर से आपके लिए एक खास हम खास गाना, भाई अगर प्यार है तो इजहार कीजिए और अगर किसी के लिए चाहत है तो इस बात के लिए भी बिल्कुल आप कहें उनको कि आप उनको पसंद करते हैं। और चलिए इसी के साथ ये गाना आपके नाम हम ज़रूर चलाना चाहेंगे, आशा करते हैं बर्थडे पर ऐसा गाना कोई अगर आपको कह दे आई लाइक यू या आई लव यू, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। चलिए यही गाना हमें जोड़ेगा 8 बजे के समाचारों के साथ, समाचारों के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रेम नाम के एक ऐसे इंसान के साथ जो 90 वर्ष के हो चुके हैं।
1: मैडम हाउ डू यू डू,
2: नहीं नहीं नहीं भाभी ऐसे नहीं, एक्टिंग करके बताओ।

0: I like you.
1: अब तुम्हारे भेजे में बात आई, अब आगे बढ़े।
2: ठहरो, अरे तू भी चुप हो जा। खामों का बीच में बजाता रहता है। अच्छा भाभी, अगर वो नहीं शर्माई तो?
1: अरे पागल बुद्धू, वो अगर नहीं शर्माई तो कोई और शर्माएगी।
3: ऐसा क्या?
1: हाँ,

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: फजीर के ठीक 8 बजे तक सुना भोजपुरी में समाचार। नमस्ते। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बरहम के बीच कल दोपहरिया फोन पर बातचीत भइल। प्रधानमंत्री दफ्तर के मुताबिक सकारात्मक माहौल में भइल इस बातचीत में मॉरिशस ब्रिटेन के संबंध और सागुस मुद्दा पर खास चर्चा भइल। एंडी बरहम फिर भरोसा दिलैलन कि 22 मई 2025 के भइल समझौता के मंजूरी दिलावे खातिर ब्रिटेन अमेरिका के साथ मिलके काम करी। जेगोगोसिया सैनिक अड्डा के कामकाज सुरक्षित रखल ब्रिटेन के बड़ा प्राथमिकता बनल बा। डॉक्टर नवीन राम गुलाम सागुसियन समुदाय के ई दर्द भरल अध्याय के हमेशा खातिर समाप्त करे में ब्रिटेन से मिल रहल सहयोग के स्वागत करलन। दोनों प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री रितेश रामफल और ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलीबैंड के बीच होखे वाला बैठक के भी स्वागत करलन। करीब 130 देशन के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दूसर बड़ा नेता आज से न्यूयॉर्क में जुटत हवन जा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वां अधिवेशन शुक्रवार ले चली। मॉरिशस के ओर से विदेश मंत्री रितेश रामफल ई में हिस्सा लेवत हवन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बैठक में शामिल नहीं होयन जा। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के अमेरिका से वीजा नहीं मिलल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज महासभा के संबोधित करियन। रितेश रामफल शुक्रवार के मॉरिशस के बात रखियन। विदेश मंत्री रितेश रामफल के साथ विदेश सचिव रॉय बिसुंदोयाल और संयुक्त राष्ट्र में मॉरिशस के राजदूत मिलन मितौबान भी न्यूयॉर्क में मौजूद हवन जा। ये बार संयुक्त राष्ट्र के अगला महासचिव के चुनाव एगो बड़ा मुद्दा रही। जलवायु बदलाव से पैदा हो रहल समस्या और दुनिया भर में AI के इस्तेमाल खातिर नियम बनावे पर भी चर्चा हो सकेला। ये पर कुछ प्रस्ताव मंजूर होके के भी उम्मीद बा। जुलाई में मॉरिशस के व्यापार घाटा कम भइल बा। बकेर पिछलका बरिस के जुलाई के से तुलना करल जाए तो ई अभियोग काफ़ी जस्ती बा। ई एक महीना में आयात 9.4% घट के 30.4 बिलियन रुपया रह गल। एकर एगो बड़ा कारण ईंधन पर खर्च में कमी बा। दूसर ओर निर्यात 10.7% बढ़ल बा। बकेर ई बढ़त खास तौर पर जहाजन के दिहल जाए वाला सामान और ईंधन से भइल बा। धूम्रपान खाली फेफड़ा और दिल के नुकसान नहीं पहुँचावेला। एकरा चलते पुरुष और महिला के माँ बाप बने में भी दिक्कत हो सकेला। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक धूम्रपान करेवला महिला के गर्भ ठहरे में परेशानी के खतरा 40% जस्ती हो सकेला। मॉरिशस में 35.3% पुरुष और 3.7% महिला धूम्रपान करेला। बच्चा होखे में परेशानी के कई गो कारण हो सकेला। बकिर धूम्रपान से होला खतरा के नजरअंदाज नहीं करे की चाहेला। कॉल एलिजे और दाविद टोमास के आवाज बतावल जा रहल एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में गवातुमांगा मामला से जुड़ल 350 मिलियन रुपया के कथित मांग के बाद बा। ये रिकॉर्डिंग के जांच अब फ्रांस ले पहुंच गल बा। FCC के एगो डेलीगेशन रविवार के फ्रांस पहुंचल। सोमवार के मॉरिशस दूतावास में उ आदमी के फोन जांचल गल जेकरा 2025 में ई वीडियो फाइल मिलल रहल। जांच अधिकारी पता लगावत हवन जा कि फाइल कब और कैसे मिलल और एकरा के कैसे सुरक्षित रखल गल। रिकॉर्डिंग असली बा के नहीं और ई में किकर आवाज बा ई अभी साबित नहीं भल बा। यमन में लड़ाई तेज होके के बाद हजारों जना जान बचा के पड़ोसी देश जिबूती पहुंच गल हवन जा। पिछल का कुछ दिन में 3000 से जस्ती लोग एक शरणार्थी शिविर में आसरा लीले हवन जा। तई रहल हमनी के भोजपुरी में समाचार। हमनी के सुनला जा। धन्यवाद। सुनो शोक समाचार। हाई

Little Road, Pointe-Pimomé, Arthawan Baris K, 58 ans, qui, Dharimauti Gangwa, Dharimauti Gangwa, Pedaish Tamridoy, Gujar Galhawan, Unkar Matiaj, दोपहर के 2 बजे उनकर पति सुखदेव गंगवा के घरे पोएटोपिमो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पोएटोबिश के शमशान भूमि ले जावल जाए एम्पर सहाय रॉयल रोड गुडलैंड्स में 91 बरिस के कथमय ओसों के दुनवंती सहाय गुजर गलहवन उनकर माटी आज दोपहरिया 2 बजे उनकर बेटा गोई दामरी के घरे गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुआउज गुडलैंड्स के शमशान भूमि ले जावल जाए मोरिस मार्टिन स्ट्रीट लेस्पेरांस पितों में 72 बरिस के 72 ओं के आनंद चमन गुजर गलहवन उनकर माटी आज दिन के 11 बजे उनकर बेटा रंजीव चमन के घरे पितों से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पितों के शमशान भूमि ले जावल जाए 74 बरिस के श्री ससन कातोजों के श्री नारेंद्रनाथ रामगुलाम गुजरगल हवन वो आगे प्राइमरी स्कूल फिजिकल एजुकेटर के हैसियत से काम करत रलन उनकर माटी आज दिन के सवा दस बजे मुगा फ्यूनरल पॉल पेचित रिविया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावंचुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए अवेन्यू फ्लोरिस प्लेजेंस रोज एलमी 34 बरिस के 34 ओं के ऋषि अलकोरी गुजर गलहवन उनकर माटी आज फजीर के 10 बजे उन्हीं के घरे रोजिल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कॉलिव्यू के शमशान भूमि ले जावल जाए सीते गरीबू वाली दे प्रेत में 64 बरिस के 64 ओं के राज उजागिया गुजर गलहवन उनकर माटी आज फजीर के 10 बजे उन्हीं के घरे वाली दे प्रेत से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सिपाही भूले वाले दे प्रेत के शमशान भूमि ले जावल जाए रॉयल रोड बॉम्बू में 62 बरिस के 70 ओं की भूमेश्वर उलकोरी गुजर गलहवन उनकर माटी आज दिन के 12:10 उन्हीं के मकान बॉम्बू से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मोताई सैंपिया बॉम्बू के शमशान भूमि ले जावल जाए रू जासमें मोसलमा हाईलैंड्स में 73 बरिस के 63 ओं के श्रीमती जूनिया दियापाल सिंह गुजर गलहवन पैदाइश नाम रामचरितु उनकर माटी आज सपहर 3 बजे उनकर बेटा राकेश दियापाल सिंह के घरे हाईलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फिनिक्स के शमशान भूमि ले जावल जाए रॉयल रोड घन रुथ्रेट में 62 बरिस के 70 ओं के मणिचंद रामफल गुजर गलहवन उनकर माटी आज दिन के सवा दो बजे उनकर बेटा प्रकाश रामफल के घर घन रुथ्रेट से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावंचुए के शमशान भूमि ले जावल जाए शोकग्रस्त परिवार संगे हमनी सहानुभूति प्रकट करें थे जा।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर। एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
2: मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के लहरों पर, जी हाँ, फिर से आपका स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ आज की छोटी सी मुलाकात के साथ। और इस कार्यक्रम में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे अभिनेता या अभिनेत्री के साथ। पर फिलहाल आज की जो मुलाकात है वो है एक ऐसी शख्सियत के साथ जिन्होंने अपने एक ही डायलॉग से पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी जगह कायम कर दी। नाम है मेरा प्रेम, प्रेम चोपड़ा। जी हाँ, 1935 के जन्मे, 23 सितंबर को मनाएंगे अपना जन्मदिन और बिल्कुल 90 इयर्स के हो चुके हैं, 91 के हो जाएंगे कल प्रेम चोपड़ा साहब। और अभी कुछ ही दिन पहले एक और ऐसी सनसनीखेज खबर आई थी कि प्रेम चोपड़ा साहब की मृत्यु हो गई है। पर ये कहते हैं ना कि इंटरनेट के मामले, भाई क्या कहे, तोड़ मरोड़ के ऐसी ऐसी खबरें इंटरनेट पर डाल देते हैं लोग। किसी के जिंदगी में क्या चल रहा है ये बिना सोचे समझे। बस चलिए, ऊपर वाला प्रेम चोपड़ा साहब को एक लंबी उम्र दे। और आज हम बात करेंगे प्रेम चोपड़ा साहब की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जिन्होंने बिल्कुल एक अलग ही छाप कायम की। एक हिंदी फिल्म अभिनेता जिन्होंने 6 दशकों से भी ज़्यादा के अपने करियर में 380 से भी अधिक मूवीज़ में काम किया। और वे मुख्य रूप से 1960s से लेकर 1990s के बीच हिंदी सिनेमा में विलन यानी खलनायक की भूमिकाओं में ज़्यादा नज़र आए थे। और बिल्कुल, हालांकि उन्होंने फिल्म में एज अ हीरो एंट्री मारी थी, पर धीरे धीरे करते हुए उनके जो रोल्स हैं, उनका जो गेटअप है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, विलन के रोल्स में वे बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आए। और प्रेम चोपड़ा ने सकारात्मक और चरित्र प्रधान भूमिकाएं भी निभाई हैं फिल्म इंडस्ट्री में। तो चलिए आज आपको सुनाते हैं उन्हीं के बारे में कुछ ऐसी बातें, हो सकता है कि आप शायद ही जानते होंगे। ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के लाहौर में जन्मे, जो अब पाकिस्तान कहलाता है, और बिल्कुल भारत के बंटवारे के बाद शिमला में पले बढ़े प्रेम साहब ने हिंदी सिनेमा में आने से पहले पत्रकारिता और पंजाबी फिल्मों में काम किया था। और उन्हें शहीद 1965 फिल्म से बहुत ही बड़ी पहचान मिली, जिसके बाद उन्होंने उपकार 1967 में, बॉबी 1973 में, दो अनजाने 1976 में और क्रांति 1981 में आने वाली जैसी मूवीज में शानदार अभिनय किया। और सच में देखा जाए तो बॉबी फिल्म में उनका जो मशहूर रोल या मशहूर डायलॉग रहा, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे यादगार डायलॉग में से एक है। सालों तक प्रेम चोपड़ा साहब ने कई बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, खासकर राजेश खन्ना के साथ, जिनके साथ उन्होंने लगभग 20 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। जैसे हिंदी सिनेमा बिल्कुल बदला, उन्होंने विलन के रोल से हटकर कैरेक्टर और कॉमेडी रोल करने भी शुरू किए। और 21वीं सदी में भी उन्होंने फिल्मों और टेलीविज़न में काम किया, और उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2023 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त हुआ। अपने एक्टिंग करियर के अलावा चोपड़ा साहब ने अपनी बेटी रकिता नंदा द्वारा लिखी गई आत्मकथा प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा, जो 2014 में पब्लिश हुई, इसमें भी उन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। और वे समाज सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के कामों में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहे हैं। वैसे

उनका परिवार जो है वो बहुत ही बड़ा परिवार, और देखा जाए तो रणवीर लाल और रूप रानी चोपड़ा के 6 बच्चों में तीसरे नंबर पर आते हैं प्रेम चोपड़ा साहब, जिनका जन्मदिन होगा कल, यानी 23 सितंबर को वे जन्मे थे 1935 को लाहौर में, एक पंजाबी हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ। और भारत के बंटवारे के बाद उनका परिवार शिमला चला गया, जहां उनकी परवरिश हुई, पढ़ाया उनको, वो पढ़े लिखे और बड़े हुए, और उन्होंने शिमला के SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की। उनके पिता चाहते थे कि वे डॉक्टर या फिर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करें, यानी IAS के अधिकारी बने। कॉलेज के दिनों में कई नाटकों में भी उन्होंने हिस्सा लिया, और उसी की वजह से चोपड़ा साहब को ये जो एक्टिंग का कीड़ा है इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी। माता पिता के कड़े विरोध के बावजूद बॉलीवुड फिल्मों में एक्टिंग करने का अपना जो सपना है पूरा करने के लिए वे बॉम्बे चले आए, और शुरुआती दिनों में मुंबई के कुलाबा गेस्ट हाउस में वे रहते थे। उन्होंने अपना पोर्टफोलियो दिखाने के लिए फिल्म स्टूडियो जाना भी शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था। पर धीरे धीरे करते हुए बस प्रेम चोपड़ा साहब ने हिम्मत नहीं हारी। उनकी जो एक्टिंग की जो पैशन थी वो उन्होंने बिल्कुल जारी रखी, और अपना कार्य वे करते रहे, अपनी कोशिशों को उन्होंने जारी रखा, और बिल्कुल इसी के साथ वे आगे बढ़ते रहे। और कई सारी ऐसी फिल्मों के बावजूद उनको मौका तो नहीं मिला, पर एट दैट टाइम कह सकते हैं कि बंगाली, उड़ीसा, बिहार, उन्होंने बहुत सारे ऐसे टूरिंग्स किए थे, बहुत एजेंट्स को वे मिले थे, पर कुछ बन नहीं रही थी बात। और तभी उनकी मुलाकात हुई चौधरी करनैल सिंह के साथ, जो कि एक पंजाबी प्रोड्यूसर थे, और उनको एक एक्टर की ज़रूरत थी। जी हाँ, वे जाते थे कि वे उन्हें एक ब्रेक दे। तो उनकी जो डेब्यू मूवी थी वो एक पंजाबी मूवी थी, और बिल्कुल इस मूवी में उनको हिंदू और मुस्लिम लव स्टोरी पर ये आधारित कहानी रही, जो बहुत ज़्यादा हिट हुई थी उस ज़माने में, और उस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड को मिला था फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन पंजाबी। और आप मानेंगे, उस ज़माने में प्रेम साहब ने अपनी डेब्यू फिल्म की थी मात्र 2,500 रुपए में। और बिल्कुल टाइम्स ऑफ इंडिया में ये पब्लिश हुआ, और सच में इसके बाद कई सारी ऐसी फिल्में जैसे वो कौन थी, शहीद, मैं शादी करने चला, तीसरी मंजिल जैसी फिल्मों में उनको ब्रेक मिला। और सच बताएं तो प्रेम साहब ने ये खुद कहा था कि ये जो एक्टिंग है ये उसे फुल टाइम प्रोफेशन नहीं बनाना चाहते, बट बिल्कुल अपना पैशन जारी रखना चाहते हैं एक्टिंग के माध्यम से। और कुछ ऐसी फिल्मों के साथ उनको पहला ब्रेक मिला शहीद फिल्म के लिए, सुखदेव के रोल के लिए, जो बहुत ही पॉजिटिव लीडिंग रोल था, और इस फिल्म को बिल्कुल करार दिया गया एज अ डेब्यू, हिंदी डेब्यू प्रेम चोपड़ा साहब का। वैसे आपको ये भी बता दें, वो कौन थी फिल्म के पहले प्रेम साहब 4 मूवीज में ऑलरेडी काम कर चुके थे। और बिल्कुल इस फिल्म के गीत को हम सुनते हैं, शहीद फिल्म का ये जो गाना है, रंग दे बसंती चोला, कितना हिट हुआ था ये तो आपको याद ही होगा।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: वैसे आपको याद होगा मनोज कुमार साहब ऐसी पेट्रियोटिक यानी देशभक्ति वाली फिल्मों में कितना मानते थे, और बिल्कुल आपको ये भी याद दिला देते हैं कि मनोज कुमार साहब ही थे जिन्होंने प्रेम साहब को ये ब्रेक ऑफर किया था शहीद फिल्म के लिए, और इस फिल्म में बिल्कुल मनोज कुमार साहब ही नज़र आए थे। और साथ ही साथ मैं शादी करने चला जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है, और साथ बॉक्स ऑफिस वाली हिट मूवीज़ जैसे निशान, सिकंदर आज़म, सगाई, मेरा साया, तीसरी मंजिल, उपकार जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी भूमिकाएं निभाई। और इसके बाद तो मतलब जैसे उनकी ज़िंदगी में विलन रोल्स की तो बाढ़ ही आ गई, और बिल्कुल जी हाँ, उपकार फिल्म के बाद उन्होंने बहुत इस पर फोकस करना शुरू किया। पर सच बात बताएं तो लोगों को उनका जो रोल था विलन वाला वो ज़्यादा पसंद आता था। 1967 में उनको लीड विलन रोल के लिए बहुत सारी ऑफर्स आती थी। 1967 से लेकर 1995 के बीच उन्होंने कई सारे ऐसे रोल्स किए, और ख़ासकर उस ज़माने में सुजीत कुमार, रंजीत, अजीत, मदनपुरी, प्राण, प्रेमनाथ, जीवन, अमरीश पुरी, अमजाद खान जैसे लीड विलन रोल्स में उनका नाम शामिल होने लगा। 1970s में उन्होंने स्मॉल बजट मूवीज़ की समाज को बदल डालो जैसी मूवीज़ में भी उन्होंने काम किया, और काफ़ी तेलुगु मूवीज़ में भी उनको रोल की ऑफर्स आई जैसे कंचना और शारदा।
0: एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: और बिल्कुल एक गाना था, तुम अपनी सहेली को इतना बता दो कि उससे कोई प्यार करने लगा, ये पिक्चराइज हुआ था प्रेम चोपड़ा साहब पर। चलिए अभी थोड़ी ही देर में अगर होगा तो हम ये गाना ज़रूर आपके लिए चलाना चाहेंगे। और निशान फिल्म में भी उनकी भूमिका लाजवाब रही, तो निशान फिल्म का ये गाना, हालांकि ये उन पर पिक्चराइज गाना नहीं है, पर उस फिल्म का ये गाना हम आपको ज़रूर सुनाना चाहेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: जी हाँ, कुछ ऐसे गाने भी थे जो पिक्चराइज किए गए थे प्रेम चोपड़ा साहब पर, फिल्म समाज को बदल डालो। और इस फिल्म में एक ऐसा गाना था जो पिक्चराइज हुआ था प्रेम चोपड़ा साहब पर, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया। चलिए, इस गीत को हम ढूंढ पाए हैं और ये गाना भी हम आपको ज़रूर सुनवाना चाहेंगे।
2: अपनी सहेली को इतना बता दो

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: ऐसे कई सारे गाने हैं जो मतलब बहुत कम फिल्माए गए थे प्राण साहब, माफ कीजिएगा, प्रेम चोपड़ा साहब पर। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं प्रेम चोपड़ा साहब की। और प्रेम चोपड़ा साहब ने फिल्म नफरत में भी काम किया था, शायद आपको याद होगा किशोर कुमार की आवाज़ में गाया हुआ ये गाना। चलिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

वैसे आपको बता दें, ये जो गाना है 1973 के दौर में आई थी फिल्म नफरत, और बिल्कुल ये गाना भी फिल्माया गया था प्रेम चोपड़ा साहब ने।

0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: और कुछ भी कह लो दोस्तों, उनके जो डायलॉग्स थे भाई हटकर, और उनके डायलॉग्स की वजह से ही आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका बहुत नाम है। आइए कुछ डायलॉग्स अगर हो पाए तो हम आपके लिए जरूर चलाना चाहेंगे।
2: प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा।
0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
3: कमाल है यार, कमाल है, क्या एक्टिंग है यार। अरे मरने की इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहे हो डसूजा कि सचमुच लगता है कि तुम जिंदा ही नहीं हो। कसम है बहादुरी की, मान गए तुम्हारी एक्टिंग को।
0: एक छोटी सी मुलाकात एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
4: मेरा नाम मधु।
2: मधु बहुत मीठा नाम है। मधु या मधुमक्खी।
0: एक कलाकार के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: बिल्कुल मधु या मधुमक्खी, ये कुछ ऐसे डायलॉग्स थे जो ओरिजिनली बिल्कुल ऑन सेट, कहते हैं ना कई बार ऐसे ऐसे डायलॉग्स उन्होंने मारे जो बिल्कुल बहुत ज्यादा हिट हो गए। और शायद आपको वो वाला डायलॉग तो याद होगा ही, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। और ऐसे ऐसे डायलॉग्स के साथ उन्होंने बिल्कुल अपनी एक अलग ही छाप बॉलीवुड इंडस्ट्री में छोड़ दी। और आज भी हम ऐसे ऐसे डायलॉग्स के कई सारे ऐसे फनकार हैं जो उनके डायलॉग्स को बिल्कुल बतौर के मिमिक करते हैं, जिनके शीशे जिनके घर शीशे के होते हैं वो बत्ती बुझाकर कपड़े बदलते हैं। और बिल्कुल यादगार गीतों का सफर यादगार फिल्मों के द्वारा आपको सौतन फिल्म का वो डायलॉग तो याद होगा कि वे मैं वो बला हूं जो शीशे से पत्थर तोड़ता हूं। एंड कंटिन्यूड उसके साथ ही ये डायलॉग था कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो बत्ती बुझाकर कपड़े बदलते हैं। आपको शायद याद होगा कि गोलमाल फिल्म में भी उन्होंने अपनी भूमिका निभाई।

0: आई थी रत्ना पाठक के पिता के रोल में, और जब मिथुन दा उनको मिलने जाते हैं तो वहां पर यही डायलॉग पूरी तरह से बदल दिया जाता है। और उनका ही डायलॉग प्रेम चोपड़ा साहब के सामने मिथुन दा ने कहा था कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो बेसमेंट में कपड़े बदलते हैं।
1: मुलाकात,
0: तो जी हाँ, आज की ये मुलाकात थी प्रेम चोपड़ा साहब की कुछ ऐसी फिल्मों के साथ। वैसे तो उनकी फिल्में, जैसे हमने बताया कि इतनी सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया था कि भाई बहुत ज़्यादा ही, और कुछ ही ऐसे गाने थे जो फिल्माए गए थे उन पर। तो चलिए एक और ऐसा गाना आपको सुनाते हैं, ये है फिल्म डॉक्टर विद्या से लिया हुआ मुकेश साहब की आवाज़ में। और मज़ेदार गीतों का ये सफ़र है जो यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर में पूरा हो जाएगा, और बस आप साथ देते रहिए हमारे। यही गाना हमें जोड़ेगा हमारी अगली कड़ी के साथ, जो है हमारी धरोहर किरण जानकी का साथ रहेगा इस सेगमेंट में, और भोजपुरी गीत का आनंद उठाते हुए बढ़ेंगे हम आगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: दोस्तों ये था सफर, एक छोटी सी मुलाकात का, जहाँ पर आज हमने आपकी मुलाकात करवाई प्रेम चोपड़ा साहब से। और प्रेम चोपड़ा साहब बिल्कुल 91 इयर्स के हो जाएंगे कल। इसी के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री की इस दिग्गज कलाकार को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसी के साथ चलिए अगला सेगमेंट बिल्कुल करीब है और जुड़ने का समय हो चला है, 8:50 होने को हैं। स्वागत करते हैं हमारी धरोहर कार्यक्रम में किरण जानकी का।

0: आपके स्वागत बा। आज हमने सुयाक पर चर्चा करब जा। सावान इलाका के पो सुयाक के नाम 1787 में देवल गल बा, 1787 में। ई जोन पोर्ट बा रिविया सावान, जहां समुंदर से मिलेला, हुआ पर पावल जाला। पो सुयाक नाम लील दो फ्रांस जोन आगे मॉरिशस के नाम रहल, ओकर गवर्नर फ्रांसवा विकोंट दे सुयाक के नाम पर रखल गल बा। फ्रांसवा विकोंट दे सुयाक 1789 मतलब कि 1779 से 1787 तक लील दो फ्रांस के गवर्नर रहलन। अपन मैंडेट के अंत में ई बंदरगाह के उ अपन नाम देलन। एकर से आगे बे दु सुयाक ब्रा दु मेयर दु ला सावान नाम से जानल जात रहल। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान एकर नाम कांटों दु ला सावान रखा गल। सुयाक 1775 तक प्लेन विलियम्स पर निर्भर करत रहल और 1787 तक ग्रैंड पो पर भी। 1803 में ग्रैंड सावान और पिचित सावान के विभाजन करल गल। सुयाक के मृत्यु 1803 में अपन महल में हो रहल और एकर संगे ही मेजों दे सुयाक के रोशनी बुझकल। समझ कल हुई बा मेजों दे सुयाक ई उ गवर्नर के नाम रहल, लेकिन उनकर नाम आज भी हमने के देश में दक्षिण इलाका में लेवल जाला और फ्रांस के सुयाक शहर में भी 1729 में सुयाक के तीन गो कॉन्सेशनियर रहल। इमे रिविया दु पोस्ट, रिविया ड्रागों, रिविया दु टाबा और रिविया दे जंगी भी शामिल रहल। लेकिन बहुत समय तक सावान इलाका के ऐसने ही छोड़ दिया गल, ओके नेग्लिजे कर दिया गल। हियाँ पर जो निवासी लोग हवन जा वो लोग बहुत कमती रहत रहलन सा, कहे कि हियाँ के जो इलाका बा वो थोड़ा उबर खबर रहल। जोन एकमात्र निवासी हियाँ रहत रहल उ रहल एस्क्लाव मारों लोग, और ई लोग के हमला के वजह से हियाँ कोई नहीं रहे। कहे कि एस्क्लाव मारों के आस पास जे तू जेबा तो उ लोग समझन जा आप उनका पकड़े आवत हवा, तो उ लोग हमला कर देवत रहलन सा। अब उधर 1724 में रिविया जु पोस्ट के मिलिट्री पोस्ट पर ई लोग हमला करे लगलन सा, जेकर बाद पड़ल ई इलाका के छोड़ देवे के। खाली दुगो कॉन्सेशनिया के परिवार यहाँ पर 1731 तक रहल रहलन सा और 1771 में जमीन के कॉन्सेशनिया के संख्या अब बढ़े लगल और बेलोम्ब में बसेरा शुरू हुई लगल। और पो सुया के विकास के विचार आल ताकि लकड़ी के व्यापार सकत पोटलुई तक होवे, साथ ही खाना पानी के जो ढोवे के काम बा ओकर आवाजाही हिये से शुरू होई लगल। और यहाँ पर कितने ऐसन दुर्लभ गांछी मतलब बहुत गौ पावे जाए होला गांछी के लकड़ी यहाँ खूब काटल गल। लेकिन विकास तब होल जब बनारस में ईक के खेती यहाँ पर होई लगल। ई खेती से पोसुयाक के इकोनॉमी के गति मिलल। 1780 में लारक और लुद्वी बहुत यहाँ पर बनल और ई पोसुयाक में ओकर जो व्यापार बा यहाँ से हुआ ले जाए के ई काम चलल। सावान इलाका में एगो नाम प्रचलित होई लगल उबखत, जेकर बड़ा परिवार हुआ पर बस गेलन सा, और उ रहल जीजे से मौते जे 1787 में कॉन्सेशनिया बनल। सुयाक के पश्चिम में एगो नदी के नाम भी इनकरे नाम पर रखा गल, सैमौते। और हुआ पर कितने नदी बा और सैमौते ई सब के गिनती में जोड़ देवल गल। सुयाक के जन ऐतिहासिक जगह बा जन हमनी के धरोहर में गिनल जाला, ई पर काल बतियाब जा और आपके जानकारी देव अब जा। अभी खातिर इतना ही, धन्यवाद, नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। पता चला। इसी के साथ किरण जानकी जी के बहुत बहुत धन्यवाद बुलबजा और एक बढ़िया गीत
2: हमारी धरोहर
1: विशाल मंगरू और जितेश झूरन की आवाज में रखा।

और है ये गीत हमनी के जोड़ी 9 बजे के समाचारों के साथ। आप सब कोई से अब भेंट हुई 9 बजे के समाचारों के बाद रही आज की चर्चा के कार्यक्रम, और 10 बजे के समाचारों के बाद भक्ति धारा कार्यक्रम में पुनः हम आपकी सेवा में रहेंगे।

0: मंगलवार 22 सितंबर घड़ी मिला लीजिए, सवेरे के 9 बज रहे हैं और समाचारों को लेकर आस्था आ चुकी है। आस्था, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार आप सभी को। स्वागत मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनके ब्रिटिश समकक्ष बर्नहम के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। एंडी बर्नहम ने 22 मई 2025 के समझौते को मंजूरी देने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शागोसियन समुदाय के लिए इस दर्दनाक अध्याय को समाप्त करने में ब्रिटेन के समर्थन का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री रितेश रामफल और मिलीबैंड के बीच होने वाली बैठक का भी स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। करीब 130 बड़े नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल कर रहे हैं। नए महासचिव का चुनाव जलवायु परिवर्तन और AI के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल है। जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ। आयात 9.4% घटा जबकि निर्यात 10.7% बढ़ा है। हालांकि जहाजों को दी जाने वाली सामग्री और ईंधन को अलग कर दें तो निर्यात 7% कम हुआ है। ब्रेक पैडल में खराबी मिलने के बाद BYD ने चीन में 183,000 से अधिक गाड़ियां वापस मंगवाई हैं। इसमें किन और टैंग सीरीज शामिल हैं। ये दोनों सीरीज मॉरिशस में नहीं बेची जाती, इसलिए यहां के वाहन मालिक प्रभावित नहीं होंगे। गवातोमंगा मामले में 350 मिलियन रुपए की कथित मांग से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाँच फ्रांस तक पहुँच गई है। FCC ने कहा है कि एक व्यक्ति का फोन जांचा गया है। रिकॉर्डिंग की सच्चाई और में सुनाई देने वाली आवाजों की पहचान अभी साबित नहीं हुई है। विदेश स्तर की खबरें जो आज सुर्खियों में है, उनमें यमन में लड़ाई तेज होने के बाद 120,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में 3,000 से अधिक लोगों ने पड़ोसी जिबूती के एक शरणार्थी शिविर में पना ली है। इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
3: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
4: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: Welcome to RM2.
1: Musty Mornings. Radio Musty.
0: गुड मॉर्निंग एंड वेल यस आप कनेक्टेड हो गए हो मस्ती मॉर्निंग में एंड गाने में उन्होंने पूछा हु इज दैट गर्ल वेल इट्स नर्मनी एंड आपका स्वागत है मस्ती मॉर्निंग में. आशा करते हैं कि आप ठीक हैं. ट्यूजडे मॉर्निंग का मूड कैसा है आपका? आई एम श्योर अभी हमारे कुछ दोस्त अभी तक ऑफिस पहुँच भी गए होंगे और कुछ अभी ट्रैफिक में बस थोड़ा और करते हुए फंसे होंगे. और आज एक इंटरेस्टिंग डे भी है. आपको बता देते हैं कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड कार फ्री डे. तो अगर पॉसिबल हो आज गद्दी को थोड़ा रेस्ट दीजिए, वॉक कीजिए, साइकिल निकालिए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्राई कीजिए. थोड़ा सा चेंज लेकिन एनवायरनमेंट के लिए बड़ा ही पॉजिटिव स्टेप्स है. तो चलिए ट्यूसडे को थोड़ी मस्ती, थोड़ी पॉजिटिविटी और बहुत सारे गुड वाइब्स के साथ स्टार्ट करते हैं. तो नेक्स्ट गाना आपके नाम करते हैं आदित्य नारायण की आवाज़ में आपके मॉर्निंग को मस्ती मॉर्निंग बनाने के लिए. एंड बाय द वे इट्स 99 मेक विश.
2: You can find me in the club, bottle full of bub, my mind got...
1: You're listening to Musty Mornings. Stay tuned, stay musty. Radio Musty.

0: तो उन्होंने पहली बार महसूस किया, केवल उन्होंने ही नहीं बल्कि उस समय और भी जितने महापुरुष थे जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे, उनके दिमाग में आया कि अंग्रेज जो हैं अंग्रेजी भाषा के साथ हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं
1: जी।
0: तो कोई एक भाषा प्रतिनिधि भाषा के रूप में होनी चाहिए जिसके मार्फत हम अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। जिस तरह से आज मोदी जी पूरे विश्व में हिंदी के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, वही समस्या आज़ादी से पहले हमारे महापुरुषों के सामने भी थी
1: जी।
0: वही समस्या जो है आप देखेंगे कि मॉरिशस के जो महापुरुष थे, जो हमारे प्रथम जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री रहे और जो राष्ट्रपिता रहे सर शिव सागर राम गुलाम जी, उनके सामने भी ये लोग दूरदृष्टि वाले लोग थे। तो उन्होंने देखा कि हमें यदि एक लंबी लड़ाई लड़नी है तो एक अपनी भाषा, क्योंकि अपनी भाषा इसलिए कि उसमें हमारी अपनी पहचान है, हमारी अपनी संस्कृति है और संस्कृति का एक लंबा इतिहास है जिस पर कि हम गौरव कर सकते हैं। तो जब हम अपनी भाषा और अपनी संस्कृति के साथ जब किसी के सामने मजबूती के साथ खड़े होते हैं तो उनकी नींव को हिला देते हैं। तो गांधी जी ने भारत में सबसे पहले यह महसूस किया कि गांधी जी तो गुजराती, उनकी मातृभाषा गुजराती थी, उसी तरह आप देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक
1: मराठी थे,
0: लाला लाजपत राय पंजाबी उनकी भाषा थी, और ऐसे बहुत सारे मतलब चाहे वो पश्चिम बंगाल के रहे हों जिनकी मातृभाषा बंगाली थी, उन लोगों ने कहा कि नहीं हिंदी जो है एक संपर्क भाषा है तो संपर्क भाषा के रूप में हम आंदोलन करेंगे और पूरे भारतवर्ष में करेंगे। तो उससे जो है हिंदी का महत्व जो है बढ़ा, और हिंदी चूँकि इसलिए बढ़ा कि जिसे हम हिंदी कहते हैं वो कभी हिंदुस्तानी भाषा होती थी और हिंदी और उर्दू को एक ही भाषा बोलते
1: थे। जी बिल्कुल, ये आपने सही कहा
0: है ना। तो वहाँ जो था वो दो संप्रदाय को जोड़ने वाली भी भाषा है, यानी एक संप्रदाय से हम आंदोलन नहीं कर रहे थे, हम दोनों लोग मिलकर आंदोलन कर रहे थे। तो हिंदी का महत्व जो है इस रूप में काफ़ी बढ़ा। और जब देश आज़ाद हुआ तो बात यह हुई कि क्यों ना हिंदी को जो है राष्ट्रीय भाषा के रूप में हम स्थापित कर दें, घोषणा कर दें। तो संविधान सभा के सामने जो है यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। समिति बैठी, 3 साल तक जो है गहन जो है इस पर चर्चा हुई, निष्कर्ष यह हुआ कि हिंदी भाषा जो है अभी विकसित उस तरह से नहीं हो पाई है, यानी सभी राज्य अभी तैयार नहीं हैं कि हिंदी में जो है कार्य कर सकें। लेकिन चूंकि वह समय जो था, वह समय 14 सितंबर 1949 था जबकि ये बात हुई कि क्यों ना हम हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी राजभाषा के रूप में हम ये करें। और 15 साल के बाद जब सभी राज्य जो है तैयार हो जाएंगे तो फिर हम हिंदी को एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में दर्जा हम दे सकते हैं। लेकिन वो किसी कारणवश वो नहीं हो पाया, लेकिन लगातार हिंदी पर बात जो है होती रही। और फिर आप देखेंगे कि 1953 में सेम जो यही जो दिवस है 14 सितंबर पूरे भारत में जो है हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया, और उस समय से हिंदी मनाने की शुरुआत जो है हिंदी दिवस मनाने की शुरुआत होती है
1: जी।
0: उसका उद्देश्य यह रहा हिंदी दिवस मनाने के लिए कि लोगों को जागरूक कर सकें। देखिए हिंदी जो है कई भाषाओं की जो है प्रतिनिधि भाषा के रूप में है, उसके अंतर्गत बहुत सारी भाषाएं आ जाती हैं जो बोलियां हैं, केवल हिंदी का विकास जो है किसी एक भाषा से नहीं हुआ। और मेरा मानना है कि जब हम मॉरिशस के भी संदर्भ में हम देखते हैं तो सर्वप्रथम जो हमारे पूर्वज 1834 में, उससे पहले भी आए हैं लेकिन उसके सब बाद जब आना शुरू हुए गिरमिटिया के रूप में, तो मुझे लगता है और भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं 1850, तो मैं जब दोनों देश की तुलना करता हूं तो

0: पूरा मॉरिशस देश जो है वो हिंदी भाषा के साथ ही विकसित हो रहा है, यानी हिंदी भाषा तो विकसित हो ही रही है, साथ ही साथ जो है हमारी संस्कृति भी उसके साथ विकसित हो रही है। चाहे वो गंगा तालाब की यात्रा ही क्यों ना हो, यदि किसी को यह लगता है कि हमारी संस्कृति कैसी है और हम हिंदी भाषा कैसी है, तो उनको जो है महाशिवरात्रि में एक बार पैदल गंगा तालाब की यात्रा करनी चाहिए, तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि हिंदी भाषा और संस्कृति भारत से बाहर पूरे विश्व में कहीं प्रतिष्ठा जो है पाई है तो वो मॉरिशस से।
1: और अभी जितने भी हम हमारे धार्मिक पर्वों की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारी भाषा तो उससे जुड़ ही जाती है। अभी हमने गणेश चतुर्थी का पावन पर्व मनाया गया, जिस तरह से शिवरात्रि एक समय था एक जो है इतना जो है पॉपुलैरिटी गेन किया कि इस बड़े स्तर पर मनाई जाती है। आज गणेश उत्सव भी उतने ही बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है देश के कोने कोने में, और लोग देखने के लिए आते हैं कि किस तरह से मनाया जाता है।
0: जी बिल्कुल, देखेंगे कि जो भी हमारे भारतीय पर्व त्यौहार हैं, अब हम देखिए जितनी भारतीय भाषाएं हैं उसमें सभी शब्द जो है एक दूसरी भाषा के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक भाषा है तो उसमें हिंदी भाषा के शब्द नहीं होंगे, या तमिल तेलुगु है तो उसमें भी हिंदी है या संस्कृत भाषा के शब्द, सभी भाषाएं कहीं ना कहीं मिलती
1: एक दूसरे से
0: खाती हैं, और कुछ ना कुछ लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते। अब तो AI का जमाना है और इंटरनेट की दुनिया में जो है सभी भाषाएं बहुत करीब आ रही हैं, और हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं और सभी भाषाओं के रचनाकारों से भी हम परिचित होते हैं, ऐसा है नहीं है। ये है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो पर्व त्यौहार है, चूँकि क्या है कि आपने जब इस कार्यक्रम की भी शुरुआत की तो आपने एक बात कही कि भाषा गई तो संस्कृति गई, जो कि यहाँ पर जो हिंदी प्रचारणी सभा है वहाँ का मुख्य जो है स्लोगन भी है, तो आप देखेंगे कि ये बात एकदम 100% सही है कि भाषा गई तो संस्कृति गई, यानी ये हमारी पहचान की बात है। और यदि हमारी प्रतिष्ठा है तो इसी कारण से है, क्योंकि हम अपनी संस्कृति को बचाने में कामयाब रहे हैं और यही हमारी पहचान है। जब हम पर्व त्यौहार की बात करते हैं, रीति रिवाज की बात करते हैं, या नृत्य की बात करते हैं, संगीत की बात करते हैं, तो हमारे पर्व त्यौहार या शादी समारोह हो, कुछ भी हो, वह न संगीत के बिना पूरा होगा, न नृत्य के बिना पूरा होगा। और संगीत नृत्य में जो है हमारी
1: भाषा आ ही जाती है। हम मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं कहीं ना कहीं भाषा ही तो है,
0: बिल्कुल
1: है ना?
0: बिल्कुल हाँ। वो हमारी जो है भाषा है। एक बहुत ही अपने दर्शक को जो है मॉरिशस के बारे में ही एक महत्वपूर्ण तथ्य बताना चाहूँगा, जो ऐतिहासिक तथ्य है। जब मैं उनसे चर्चा कर रहा था, हमारे बहुत ही आदरणीय प्रहलाद रामशरण जी हैं जो इतिहासकार हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई कि 1948 से पहले यहाँ पर केवल 12,000 ही मतदाता थे।
1: अच्छा
0: जी। और वे जो मतदाता थे वे केवल वही थे जो अंग्रेजी और फ्रेंच जानते थे या उनके पास बहुत पैसा था
1: जी।
0: तो फिर पहली बार जो है यह निर्णय हुआ, जब हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी यहाँ थे उनके कारण जो वे आंदोलन कर रहे थे, तो पहली बार यह निर्णय हुआ कि जो भी साक्षात्कार करना जानेगा, जो भी साइन कर सकता है अपनी भाषा में, उन लोगों को जो है वोट देने का अधिकार मिल जाएगा, मत देने का अधिकार मिल जाएगा। तो बड़ा आपको आश्चर्य होगा कि 1948 में जो है मतदाता की जो संख्या है लगभग 72,000 के आसपास पहुंच गई, 12,000
1: से। हाँ, तो देखिए कितना।
0: और उसमें जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका यदि निभाया तो बैठका ने निभाया
1: जी।
0: रातों रात लोगों ने जो है हस्ताक्षर करना
1: सीखा,
0: हिंदी में ही नहीं, तमिल तेलुगु अपनी भाषाओं में। और उसी का चमत्कार है कि आज मॉरिशस देश जो है हिंद महासागर में चमक रहा है, एक ऐसे देश के रूप में जहाँ सांस्कृतिक एकता है, सामाजिक एकता है, सद्भावना है, एक लोगों के बीच प्यार है, मोहब्बत है। तो भाषा जो है, कबीरदास बोलते हैं ना कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। तो भाषा का एक दूसरे से द्वेष नहीं होता, और भाषा किसी खास संप्रदाय की भी नहीं होती।

0: भाषा वही अच्छी है जो दूसरे का दिल जीते, और हिंदी भाषा ने जो है पूरे विश्व को प्रेम के सूत्र से बांधने का काम किया है।
1: ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। चलिए, आज का विषय इतना दिलचस्प है, पिछले सप्ताह हम इसे करना चाह रहे थे लेकिन काफ़ी पर्व वगैरह आ गए थे तो इस विषय को नहीं लेकर आ पाए थे, लेकिन आज हमें मौका मिला तो हमने सोचा हिंदी दिवस पर बेशक हम चर्चा करेंगे। 4028085 नंबर हमारा, अगर आप लोग इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, हिंदी के प्रति आपका जो प्रेम है उस पर कुछ कहना चाहते हैं, अपने विचारों को बांटना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। आपसे हम जानना चाहेंगे डॉक्टर राजशेखर जी, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो अपने आप में ये भाषा बहुत आगे निकल गई है ना। इसमें ऑब्वियसली जो भी लोग हिंदी को लेकर कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मतलब कि सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी लेवल तक हिंदी हिंदी, तो अब जो है कहाँ तक पहुँच गई है। और उसके अलावा जो है फिल्मों का बोले, गानों का बोले, फिर जितने कहानीकार हैं, लेखक है, सबका अपना अपना बड़ा योगदान है। और ख़ासकर मॉरिशस के संदर्भ में बात करें तो आप तो पढ़ाते हैं इस विषय को, तो आप किस तरह से जो है छात्रों में रुचि देखते हैं हिंदी के प्रति?
0: देखिए, आपने कई सवाल एक साथ आपने पूछ लिए हैं, तो मैं धीरे धीरे सभी सवाल का जवाब देता हूं। हिंदी का विकास जब हम देखते हैं तो सर्वप्रथम आप देखिए कि हिंदी कभी हिंदवी, कभी हिंदुस्तानी
1: जी,
0: कभी उर्दू
1: जी,
0: फिर हिंदी, कभी खड़ी बोली, तो कई नामों से जो है जानी गई है। आपको आश्चर्य होगा कि हिंदी का जो निर्माण हुआ है वो बाजार के कारण हुआ है।
1: जैसे कैसे, मतलब के?
0: जब कई जगह के लोग जब बाजार में आते हैं, अपने सामान को बेचते हैं या आदान प्रदान करते हैं, संवादों का आदान प्रदान होता है, तो एक भाषा विकसित होती है। इस पर बहुत शोध हुए हैं, तो हिंदी का निर्माण उसी रूप में हुआ।
1: अच्छा,
0: ठीक है। धीरे धीरे हिंदी आंदोलन की भाषा बनी। आप हमेशा ध्यान दीजिएगा कि पूरे विश्व की वही भाषा, ठीक है, महत्वपूर्ण होती है जिस देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होने लगती है, ठीक है। भारत धीरे धीरे, आप तो जान रहे हैं, कई बार हम पांचवीं अर्थव्यवस्था हैं, कभी अभी चौथी बाई पहुंचे थे, हमारा लक्ष्य भी तीसरी अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का। जैसे जैसे भारत, खास करके आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत होगी, हमारी हिंदी भाषा उसी तरह से महत्वपूर्ण होती चली जाएगी। एक तो यह है। दूसरी बात जो है कि बाजार से ही जुड़ी हुई जो बात है वह है मनोरंजन
1: जी।
0: ठीक है, यानी जो बिकता है वही अच्छा है।
1: हाँ।
0: तो सब लोगों को आजकल जो है, चाहे वो पेय पदार्थ हो या गेम हो, कुछ भी हो, उनको हिंदी में बेचना अच्छा लग रहा है क्योंकि हिंदी का बाजार बहुत बड़ा है
1: जी।
0: ठीक है, तो हिंदी जो है धीरे धीरे बाजार के कारण और भी ज़्यादा भाषा विकसित हो रही है। पहली बात तो यह है। दूसरी बात, हिंदी में इतने अच्छे अच्छे लेखक हुए, जैसे भारत में प्रेमचंद हुए, तो मॉरिशस में अभिमन्यु अनंत हुए
1: जी।
0: ठीक है, अब आप सोचिए प्रेमचंद की जो कहानियां हैं या जो उनकी रचनाएं हैं उनका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है
1: जी।
0: लगभग 65-70 से भी ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। उसी तरह से अभिमन्यु अनंत की रचनाओं का अनुवाद हो चुका है। और यदि प्रेमचंद ने नहीं लिखा होता, वो तो आज़ादी से पहले के थे, अभिमन्यु अनंत भी आज़ादी से पहले से के रचनाकार रहे हैं, तो हिंदी के माध्यम से उन्होंने अपने दुख दर्द को सभी लोगों के साथ साझा किया है। ठीक है, अभी मुझे एक संस्कृत के प्रोफेसर हैं, गुरु विश्वानंद, ठीक है, कल वे लोग आपस में जो है भोजपुरी में बात कर रहे थे, तो अचानक उन्होंने कहा कि भोजपुरी में बात करने में जो मिठास है वह दूसरी भाषा में नहीं मिलती। ठीक है, तो मैंने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो भाषा दिल के करीब है उसमें जो बोलने का तरीका है,
1: जो आपके भाव है,
0: जो भाव हैं, जो संवेदनाएं हैं
1: जी,
0: वह हम अच्छे से प्रकट कर
1: मतलब
0: सकते हैं।
1: मतलब कि अपनी भाषा यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं। शायद हर कोई जो सुन रहा है, अगर वो हिंदी भाषी नहीं है, वो भी इस बात से सहमत हो रहा, क्योंकि जब भावनाओं को व्यक्त करने की बात आती है वो अपनी भाषा में हो तो उसे हम और अच्छी तरीके से व्यक्त कर पाते हैं।
0: और जब आपने

0: मॉरिशस के लेखक की बात की तो आप देखेंगे कि मॉरिशस में हिंदी एक अलग ढंग से विकसित हुई और यही कारण है कि यहाँ पर लोक भाषा भी विकसित हुई है, लोक संस्कृति, लोक संगीत, लोक कथाएं भी अलग ढंग से विकसित हुई हैं। आपको पता ही है कि हमारे प्रहलाद राम शरण जी ने जो है लोक कथाओं का जो है संकलन किया, उन्होंने लिखा
1: जी।
0: जो भी उन्होंने अपने दादी नानी या जो भी बुजुर्ग लोगों से सुना उन्होंने लिखा और वे जो कथाएं हैं बहुत ही दिलचस्प कथाएं हैं। मुड़िया पहाड़ पर है, सिंह पहाड़ कई है, परी तालाब पर है, बहुत सारी कथाएं जो पढ़ेंगे तो बहुत ही रोमांचक कथाएं हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो हम मैंने अभी अभिमन्यु अनंत के बारे में बात की ही, रामदेव धुरंधर जी हैं, फिर आप लालदेव अंचराज जी हैं, हमारे जगा सिंह जी हैं, सब ये आदरणीय हैं जिन्होंने, और हेमराज सुंदर जी हैं जो कविता के क्षेत्र में हैं। इसके अतिरिक्त जो है कई नाम हैं, हमारे धनराज शंभू जी हैं और अभी सोमनाथ जी हैं जो यंग जनरेशन है। उसी तरह से महिला लेखिका की बात यदि आप करेंगे तो कल्पना लाल जी हैं, हमारे बाला अरुण जी हैं, इसी तरह से और भी कई हैं, सुमति जी हैं, तो बहुत सारे आपको जो है यहाँ पर लेखक और लेखिकाएं हैं जिन्होंने की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, मॉरिशस के साहित्य को बनाया है, ठीक है। और ये मॉरिशस के हिंदी साहित्य का निर्माण किया है, हिंदी साहित्य का ही निर्माण नहीं किया, जबकि आप देखेंगे कि गीत गवाई का संकलन जो है हमारे जो है सरिता बुद्धू जी ने किया भोजपुरी में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम है। उसी तरह से उन्होंने जो है विवाह पर भी जो है कन्यादान और इस तरह की जो है भारी भरकम पुस्तकें लिखी हैं जिसमें पूरे भारतीय समाज में शादी के जो रीति रिवाज हैं उसका वर्णन है, चाहे किसी भी भाषा में ये जो पद्धतियाँ की जाती हैं। तो ये सब मॉरिशस को कहीं न कहीं साहित्य के क्षेत्र में अमर करता है। ये सब कालजयी रचनाएं हैं जो पूरे संसार को इनसे परिचित होना चाहिए। और आप देखेंगे कि भारत का जो दुख है वही मॉरिशस का भी दुख रहा है, इसीलिए हम दोनों देश एक दूसरे के दुख को महसूस करते हैं अपनी भाषा के माध्यम से। इसीलिए भारत और मॉरिशस एक परिवार है और हम परिवार के सदस्य हैं, हम दुख में भी शामिल हैं, सुख में भी शामिल हैं, और उसमें कहीं ना कहीं हमारी अपनी भाषा है। भारतेंदु हरिश्चंद ने बहुत ही एक सुंदर पंक्ति कही है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत हिल को सूल। इतनी मैंने अपनी भाषा में जो मिठास है वही हमारी अपनी पहचान है।
1: जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अपनी पहचान को बनाए रखना भी बहुत आवश्यक होता है। 4028085 है नंबर हमारा, यदि आप में से कोई आज के इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, अपने विचार बांटना चाहते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। अभी के लिए एक छोटे से गीत के साथ प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं।

0: आज की चर्चा।
1: आज की चर्चा इस कार्यक्रम से आप सभी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी भाषा को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हिंदी दिवस मनाया गया। ऐसे हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को खासकर भारत के संक्षेप में मनाया जाता था, लेकिन समय के साथ साथ इस हिंदी दिवस को जो है विश्व भर में मनाया जाता है। उसके अलावा जो है विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है जो जनवरी के महीने में मनाया जाता है। तो हिंदी को लेकर आप सोचेंगे तो साल में दो बार जो है बड़ी बड़ी गतिविधियों का आयोजन होता है और बहुत से कार्य होते हैं इस पर। और अभी के लिए अगर हम आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर राजशेखर जी, तो किस तरह से हिंदी को लेकर जो है मॉरिशस में प्रचार प्रसार हो रहा है, कितनी सारी संस्थाएं हैं, हम विश्व हिंदी सचिवालय की बात करें, हिंदी स्पीकिंग यूनियन की बात करें, हिंदी प्रचारिणी सभा की बात करें और अन्य संस्थाएँ जो इस भाषा को लेकर कार्य कर रही हैं।
2: जी बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत सारी संस्थाएं हैं और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो संस्था नहीं कहेंगे उनको कहेंगे व्यवस्था
1: जी,
2: वह है बैठका
1: जी।
2: ठीक है, और बैठका जो है जब यहाँ पर हमारे पूर्वज आए, और जो हमारे पूर्वज आए थे आपको पता होगा कि वे गन्ना की खेती करने के एक्सपर्ट थे। ठीक है, यानी एक विधा में वे बहुत ही उनको महारत हासिल था, और गन्ने के खेत को बनाना, फिर उसमें मिठास बोना, फिर उसकी फसल को पूरे विश्व तक पहुंचाना, यह बहुत बड़ी बात थी। और उसमें जो उनका दुख छुपा था वो कहीं ना कहीं अपनी भाषा में वह दुख था। तो जब बैठका में आते थे तो वहाँ पर रामायण पाठ हो रहा है, संतों की वाणी सुनाए जा रहे हैं, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, तो कई लोगों को फिर लगा कि कुछ लोग जानते थे हिंदी, हस्तलिखित रामायण लेकर आए थे, कैथी भाषा में लिखित रामायण भी लेकर आए थे। अभी भी आप देखेंगे कि MGI के यदि आप म्यूजियम में जाते हैं तो वहाँ पे हस्तलिखित रामायण कैथी भाषा में है। तो जब इतिहास के पन्नों को हम पलटते हैं तो उसमें दुखी दुख नज़र आता है, और उस दुख का यदि कोई गवाह है तो वो है बैठका। लोगों ने महसूस किया कि क्यों ना हम अब हिंदी पढ़ना सीखें, जो हम रामायण सुनते हैं तो हम रामायण खुद पढ़ें। तो आप देखेंगे कि रामायण लोगों ने पढ़ना शुरू किया, वहाँ से हिंदी की यात्रा प्रारंभ हुई। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता आंदोलन में हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, और बैठका की तो थी ही। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो आर्यसभा है, आर्यसभा ने एक व्यक्ति थे जिनको कि सत्यार्थ प्रकाश हिंदी में मिली थी, किसी ने दिया किसी ग्वाले को, उनको उसका कोई मतलब उनके लिए प्रयोग नहीं था, यूज नहीं था, तो उन्होंने और किसी विद्वान को दे दिया, और वहाँ से जो है एक क्रांति की शुरुआत होती है कि जो हमारे जो वेद हैं, जो वेद ग्रंथ हैं, जो वैदिक परंपरा है, जब वह एक पुस्तक केवल हिंदी में लिखी हुई, हम कहते भी हैं कई बार कि भारत में विश्व की चर्चा होती है कि सत्यार्थ प्रकाश की जो भाषा है, जो हिंदी है, वह बहुत ही अच्छी हिंदी है, और वहीं से हिंदी की शुरुआत भी कई बार मानते हैं लोग प्रमाणिक और परिष्कृत हिंदी के रूप में। तो आप देखिए कि हिंदी में लिखी हुई एक पुस्तक ने जो है क्रांति का काम किया, और वेद के जो अच्छे विचार हैं वे पूरे मॉरिशस में जो है

0: उसका प्रचार प्रसार हुआ जी। ये देखिए कि हिंदी की ताकत
1: बिल्कुल
0: है ना। फिर आप देखेंगे कि हिंदी प्रचारणी सभा, तो हिंदी प्रचारणी सभा ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इतना ही नहीं, और वहाँ पर एक जो है पुस्तक थी दुर्गा पत्रिका, 1936 में निकली थी, बाद में उसको 3 खंड में संकलित भी किया हमारे गोयनका जी और भारत सरकार और मॉरिशस सरकार के सहयोग से वह पत्रिका बनी, हस्तलिखित पत्रिका, बहुत ही अच्छी पत्रिका है। तो उसमें आप देखेंगे कि लोग गुमनाम से जो है अपना नाम छुपा के गुमनाम रूप से कहानी लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, या कुछ संदेश लिख रहे हैं, या लेख लिख रहे हैं, आलेख लिख रहे हैं, अपने दुख दर्द को व्यक्त कर रहे हैं, वो भी हस्तलिखित है। उसमें पढ़ेंगे, उसमें कुछ शर्तें भी हैं कि ये किताब जो है आपको जहाँ जहाँ पत्रिका जा रही है तुरंत पढ़कर आगे बढ़ाना है। बताइए कितनी मेहनत की बात है। ठीक है, तो जब देखते हैं तो लगता है कि जैसे हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत के साथ अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का जो है प्रयास किया है, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे यदि और आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे रामायण सेंटर है, पूरे विश्व के कोने कोने में रामायण के अच्छे विचार को स्थापित करने में इस रामायण सेंटर का बहुत बड़ा योगदान रहा। कहीं भी 6,000 से ज़्यादा पुस्तकें रामायण पर, अलग अलग भाषाओं की जो पुस्तकें हैं वो ये कहीं भी नहीं है
1: जी,
0: यहीं पर है।
1: बिल्कुल, और उसके अलावा अन्य कई संस्थाएं हैं
0: जी। आप फिर देखेंगे कि हिंदी स्पीकिंग यूनियन है, अभी अंजलि चिंतामणि जी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम करा रहे हैं, उससे पहले भी जो है बहुत महती भूमिका रही है। और फिर आप विश्व हिंदी सचिवालय है, जिनका उद्देश्य है कि पूरे विश्व में जो है हिंदी का जो है मान प्रतिष्ठा बढ़ाना है।
1: चलिए, एक श्रोता है हमारे साथ, उनसे हम मिलते हैं। और आज हम पिछले सप्ताह जो हिंदी दिवस मनाया गया उस पर चर्चा कर रहे हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो, नमस्कार।
2: नमस्ते सुमी जी।
1: नमस्ते जी, आपका स्वागत है।
2: राजशेखर जी को भी नमस्ते।
0: नमस्ते,
2: बहुत अच्छा लगा, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ।
1: धन्यवाद।
2: वैसे तो मैं हिंदी ज्यादा तक पढ़ा नहीं हूँ, प्राइमरी स्कूल में हिंदी पढ़ा है
1: जी,
2: लेकिन मैं गीतों के माध्यम से इंडियन फिल्म जो है, जो गायक है
1: जी,
2: मैं ज्यादा हिंदी बोल सकता हूँ
1: जी।
0: जी, आप बहुत अच्छी हिंदी
2: कोई भी मिलते हैं, या नेपाली या बंगला, तो हम उनसे हिंदी में, कभी कभी वो लोग वो बोल नहीं सकते क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम उनका मदद करते हैं हिंदी के माध्यम से
1: जी जी जी,
2: अपने लैंग्वेज से
1: जी।
2: तो कभी कभी सोचते हैं कि हम उनसे ज्यादा हिंदी में बात कर रहे हैं।
1: अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं, थोड़ा अपना नाम याद दिला दीजिए।
2: मैं से उदय भाई बोल रहा हूँ।
1: हाँ उदय जी, जी जी, बहुत धन्यवाद उदय जी आपके इन विचारों के लिए।
2: मैं आपने फोन दिया, कोई फोन नहीं कर रहा है, मैं इसलिए मैंने सोचा कि मैं फोन लगा दूं।
1: चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, उदय जी ने जो जो बात छेड़ी है वो सही है। बहुत से हमारे रेडियो पर जितने श्रोता जुड़ते हैं या MBC TV जो देखते हैं, बहुत से लोगों का ये कहना है कि जो हमारे रेडियो पर कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जो गाने चलाए जाते हैं, जो फिल्में वो देखते हैं, जो सीरियल देखते हैं, उनसे जो है हिंदी के बारे में जो है उनकी रुचि बढ़ी, और ऐसे जाकर जो है हिंदी उन्हें सीखना या समझना उन्हें शुरू किया
0: जी।
1: तो कहीं ना कहीं MBC का भी अपने आप में हिंदी को लेकर बहुत बड़ा योगदान है,
0: बहुत बड़ा उत्कृष्ट योगदान है। और देखिए, मॉरिशस एक ऐसा देश है जो कि पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। आप देखेंगे कि यहाँ पर मुझे अलग अलग भाषा के बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, और वे बच्चे मुझसे हिंदी में बात करते हैं। ठीक है, उन बच्चों ने कभी भी हिंदी में लिखा नहीं है, वे हिंदी पढ़ना नहीं जानते। मुझे कई बार आश्चर्य होता है कि अरे कैसे ये, तो कहते अरे मैं तो देखता हूँ फिल्म देखता हूँ, हिंदी फिल्म देखता हूँ, शाहरुख खान की फिल्म देखता हूँ, सलमान खान की फिल्म देखता हूँ।
1: इस पर मैं एक बात जोड़ना चाहूँगी, बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि आपको यहाँ पर इतने साल हो गए, आपने क्रियोल नहीं सीखी या फ्रेंच नहीं सीखी। मैं कहा जब भी व्यक्ति को पता चलता है सामने वाले को

0: कि हम भारत से हैं तो वो सामने से ही आपसे हिंदी में बात करना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभार आपको अन्य भाषाओं समझ में तो आती है लेकिन बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति ही आपसे हिंदी में बात करना शुरू कर देता
1: है। जी। और सबसे आपको मुझे कई ऐसे बच्चे मिले और यंग जनरेशन भी कि जैसे मान लीजिए मराठी भाषी है, तेलुगु भाषी है, तमिल भाषी है, ठीक है, वे हिंदी में बात कर रहे हैं।
0: जी।
1: मैं आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने किसी कक्षा में बैठकर हिंदी सीखी नहीं, बैठका भी नहीं जाते हैं। बहुत अच्छी हिंदी जो है बोल लेते हैं। हमारे महात्मा गांधी संस्थान में एक प्रवासी जी हैं, तेलुगु की प्राध्यापिका हैं, बहुत अच्छा हिंदी अच्छी हिंदी बोलती हैं, वो बहुत अच्छी हिंदी बोलती हैं और भोजपुरी भी बोलती हैं, भोजपुरी में कविता भी लिखती हैं।
0: अच्छा
1: जी। तो बड़ा सुखद एहसास होता है कि एक ऐसा माहौल है जहाँ पर हिंदी का इतना विकास हो रहा है और लोग मनोरंजन के माध्यम से, गीत संगीत के माध्यम से, पर्व त्यौहार में जो गीत संगीत का प्रयोग होता है उसके माध्यम से, या आजकल टिकटॉक पर या यूट्यूब पर या कोई भी रील्स बनाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में जो है हिंदी फिल्मों के चलते हैं या भक्ति के गीत जो हैं वे सब चलते हैं। तो बड़ा ही अच्छा।
0: उसके अलावा आपने अगर अभी सोशल मीडिया की बात की तो बहुत सारे लोग अब अपनी भाषाओं में रील्स बनाना या व्लॉग बनाना शुरू किया, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है।
1: बिल्कुल।
0: पहले तो सिर्फ अंग्रेजी में हम देखते थे, लोग बनाते थे, नहीं, लोग अब हम सभी भाषाओं को यहाँ पर जोड़ रहे हैं कि लोग अब अपनी भाषा के जो है शायद महत्व को समझ रहे हैं या उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आजकल के यंगस्टर्स अपनी भाषाओं में रील बना रहे हैं।
1: आप इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि जो हिंदी भाषा के जो संस्कृत के जो श्लोक हैं वो देवनागरी में हैं, तो कई लोग जब अपने शरीर पर टैटू बनवाते हैं तो आप देखें कि देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं।
0: जी।
1: तो यह भी आजकल चलन में है, सबसे ज्यादा चलन में है कि कुछ भी ओम नमः शिवाय या कोई भी इस तरह का जो उनको पसंद है वो करते हैं। तो आप ये समझिए कि अब केवल कागजों में ही नहीं लिखे जा रहे बल्कि जो है अब हमारे शरीर के ऊपर भी जो है देवनागरी लिपि में बहुत कुछ लिखे जा रहे हैं।
0: जी। उसके अलावा अगर हम एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की बात करें तो हिंदी फिल्मों की बात करें तो कभी कभार हिंदी फिल्में जो है काफ़ी वेस्टर्नाइज होती जा रही थी, एक समय ऐसा था, लेकिन अभी के समय में जैसी फिल्में बन रही हैं वो हमारे ग्रंथों पर आधारित है, हमारे जो है रिलीजन पर आधारित है, हमारे स्पिरिचुअलिटी पर आधारित है ना, हमारे धर्म पर आधारित है। तो ये भी अपने आप में एक रेवोल्यूशन ही हम कह सकते हैं जो आ रहा है, जो देख रहे हैं हम।
1: बिल्कुल। आप देखिए समय के साथ साथ जो है सबसे ज़्यादा आप देखेंगे जो धारावाहिक या फिल्में चलती हैं वो पौराणिक कथाओं पे।
0: जी। कोविड के समय जो उस समय के 80 के सालों में जो रामायण आता था उसे दोबारा चलाया गया था और लोगों ने उतनी ही दिलचस्पी के साथ उसे दोबारा देखा था।
1: जी। मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़े साहित्यकार मिले, उन्होंने मुझे बहुत ही रोचक बात बताई कि जब यहाँ रामायण का प्रसारण होता था तो अधिकांश घर में नॉनवेज नहीं बनता था क्योंकि रामायण देखना है।
0: जी।
1: ये है आस्था अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति।
0: बिल्कुल।
1: ये आप
0: तो चलिए यहाँ पर एक और श्रोता है, उनसे हम मिलते हैं, देखते हैं कौन है लाइन पर। हेलो नमस्कार।
2: हेलो नमस्कार जी, प्रणाम आप दोनों को।
0: प्रणाम जी, कौन बोल रही है?
2: मैं हूँ, हम हैं नानी ब्रह्मानियों से।
0: अच्छा नानी, बताइए कैसी है आप और क्या जोड़ना चाहती है आज के विषय को लेकर?
2: आपको लोग को सुन रही हूँ
0: जी।
2: देखिए हम एक छोकरी जन्म ले वाली शहर में।
0: अच्छा।
2: बस शहर की छोकरी तन को नहीं जान रहा कलकत्ता बच्चा है ना
0: जी।
2: तो फिर से अली सा नानी नला लगी नुबेर फॉल। जब अली नानी कलकत्ता बच्चा हुए जब बच्चा जब हमने के मुँह ताकब से कुछ कुछ बन सा तो हमार माँ खातिर मामू ले रहा गो रामायण।
0: अच्छा।
2: तो रोज हमारे रामायण पढ़े बकर माँ तो बुने चल गल छोटी छोटी रही से तो हमार माँ चल गल तब नाना रामायण लेके हवे रामायण रोज एगो रामायण पाठ करी तीन गो लेता रही सर तीन गो बेटी लेता रोज के हमने के सुनाई नाना कैसे हमार मंगावत रह रहा है। अब जब रामायण हम रोज

हमर माँ के रामायण लेके देख कुछ सीख लेली सीता है लिखे के सीख लेली राम है लिखे के कले कले अपने मने उधर तक खूब कुछ राजो एम्बेस सुने के बखिर कमती मिलत रहा आप सुनते सुनते सुनते अपने

0: कहते पापा पराही नानी बोलता पर पराही नो आज मैं नानी बिहार तब कौ तब अपने मने रोज के रामायण लेके हम पर हमारी माँ तो एक आदमी है वही ना हम किसी का मन करता कहीं नाना नानी बच्चा लगाई अब तक घर जाने ला एको गांव की बार एको फल एक बस हुए एक केशन करके चुरबा फलवा खाई के और उसने सीख ली लपकली कैसे हिंदी बच्चा के कैसे भोजपुरी बच्चा के और हम बड़ी खुशी ला भोजपुरी बच्चा के और हिंदी बच्चा के और सब लड़का से कहा जाएगा बचाईला।
1: बहुत धन्यवाद नानी अपने इन विचारों को हमारे साथ बांटने के लिए, अपने इस अनुभव को हमारे साथ बांटने के लिए। चलिए शेखर जी, हमारे जो है कार्यक्रम का समय भी काफ़ी कम रह गया है, और हिंदी को लेकर कुछ और आप जोड़ना चाहेंगे इस भाषा को लेकर?
2: अभी जो है जो हमारे साथ जो सम्मानित महिला जुड़ी थी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कलकतिया
1: जी
2: भाषा का। हाँ। ये शब्द जब मैंने सुना जब मैं सरिता बुद्धू जी से एक दिन बात कर रहा था तो उन्होंने कलकतिया भाषा का जिक्र किया था, तो मेरी बड़ी
1: मेरी भी दिलचस्पी थी कि इसे क्यों ऐसे कहा जाता है
2: जो मतलब कलकत्ता से लोग आए थे हमारे गिरमिट प्रथा के अंतर्गत, तो इसलिए जो भाषा बोलते थे तो मतलब भोजपुरी का ही एक रूप जो है रहा है, रूप क्या समझिए कि उसी को एक अलग नाम से गिरमिटिया लोगों के समय में उस समय इस तरह से बोलते थे। तो देखेंगे कि भाषा की जो यात्रा होती है वह बहुत ही दिलचस्प यात्रा होती है, और यहाँ पर एक जो है डॉक्टर मनीलाल आए थे, और डॉक्टर मनीलाल ने जो है 1909 में एक द हिंदुस्तानी करके एक अखबार की शुरुआत की थी, और यह भारत से बाहर पूरे विश्व में हिंदी भाषा में निकलने वाला पहला अखबार था। ये एक बहुत ही रोचक बात थी। यानी देखिए क्या कहते हैं कि हम एक उदाहरण पेश करते हैं समाज के सामने में, और फिर धीरे धीरे उसी नींव पर जो है समाज का निर्माण होता है। कैसे मैंने आपको कहा कि एक अखबार है द हिंदुस्तानी, वहाँ से पत्रिका की शुरुआत होती है, उसी तरह से सत्यार्थ प्रकाश पर जो है एक आंदोलन की ही शुरुआत होती है, और लोग अपने वेद के प्रति रामायण के प्रति आस्था थी, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि रामायण के साथ साथ और भी जो वैदिक ग्रंथों में बात कही गई हैं, जहां हमारे संस्कार हैं, रीति रिवाज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वे सब जो है लोगों को जानने का मौका मिला। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कह रहे थे कि मैं और क्या कहना चाहूँगा, तो एक स्वामी विवेकानंद जी से तो हमारे युवा वर्ग हमेशा जो है प्रभावित होते हैं। देखिए अपनी भाषा के प्रति जो सम्मान होता है, कहते हैं कि हमारी भाषा हमारी पहचान हमारा गर्व, इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरी भाषा से घृणा या नफरत करते हैं। यदि आप अपनी भाषा का सम्मान करते हैं तो आप उतना ही ज़्यादा दूसरे की भी भाषा का सम्मान करते हैं और उनकी संस्कृति का भी सम्मान करते हैं। यही भाषा हमें सिखाती है। जब 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म संसद हो रहा था, तब स्वामी विवेकानंद जी जो है उसमें भाग लेने के लिए गए, तो एक अमेरिकी पत्रकार जो है उनके पास आया और उन्होंने कहा कि हाउ आर यू स्वामी जी, तो स्वामी जी ने कहा कि मैं ठीक हूँ। तो उस पत्रकार को लगा कि हो सकता है कि स्वामी जी भारत से आए हैं तो उनको अंग्रेजी भाषा नहीं आती है, तो इसीलिए मैंने जब पूछा तो उन्होंने हिंदी में उत्तर दिया। तब इस बार जो है उन्होंने जो है टूटी फूटी हिंदी में पत्रकार ने पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, ये कैसा देश है, तो स्वामी जी ने कहा कि आई एम फीलिंग वेल, योर कंट्री इज वेरी ब्यूटिफुल। तब उन्होंने अंग्रेजी में जवाब दिया, तो फिर पत्रकार को ये अचंभित हो गया कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, जब मैंने उनको अंग्रेजी में पूछा तो हिंदी में जवाब दे रहे हैं, जब मैंने हिंदी में पूछा तो अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों जवाब दे रहे हैं स्वामी जी, तो स्वामी जी की बात सुनिए। स्वामी जी कहते हैं कि जब तुमने अंग्रेजी भाषा में मुझसे सवाल किया तो मेरा फर्ज बनता था कि मैं भी अपनी मातृभाषा में जवाब दूँ, जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया, हिंदी में जब पूछा, तो फिर मेरा भी यह फर्ज बनता था कि आपकी मातृभाषा का मैं सम्मान करूं, इसीलिए मैंने आपको अंग्रेजी में जवाब दिया। यह है अपनी भाषा और संस्कृति का उद्देश्य और महत्व। चलिए।

0: लगभग हम कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं। डॉक्टर राजशेखर जी, कोई संदेश देना चाहेंगे सभी को जो इस समय हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हैं?
1: जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो खास करके मॉरिशस के लिए, कि जो सर शिव सागर राम गुलाम जी का उद्देश्य था, उनका जो संदेश था, वे जो चाहते थे कि देश जहाँ पहुँचे, देश वहाँ धीरे धीरे पहुँच रहा है, ऐसा नहीं है। वे भी चाहते थे कि अपनी भाषा को आप बचाइए, अपनी संस्कृति को बचाइए। बहुत ही कर्मठ इंसान थे, सभी जगह वे जाते थे और सभी संस्थाओं में और बच्चों को प्रोत्साहित करते थे, बच्चों के बहुत करीब थे। तो जो वे चाहते थे उनके उद्देश्य को हमें पूरा करना चाहिए, और मैं मानता हूं कि पूरा मॉरिशस जो है उन्हीं उद्देश्यों पर आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में आप देखेंगे कि मॉरिशस देश जो है हिंद महासागर के नक्षत्र में एक चमकता हुआ सितारा अभी भी है, आगे भी रहेगा,
0: और पूरे
1: विश्व के लिए जो है यह एक उदाहरण के रूप में एक ऐसा सर्वश्रेष्ठ देश है जहाँ सभी लोग, सभी भाषा के लोग जो है मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर लगभग 13 से ज़्यादा भाषाएं लोग बोलते हैं, और भी लोग अलग अलग भाषाई क्षेत्रों से आते हैं और यहाँ बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं। तो ऐसे माहौल में एक यहाँ पर सद्भाव का माहौल है, यह बहुत ही सुखद एहसास दिलाता है।
0: तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजशेखर जी आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हिंदी भाषा को लेकर इतनी सारी जानकारियां हमारे साथ बांटने के लिए, और साथ ही जितने लोगों ने इस कार्यक्रम में हमारा साथ दिया आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। जाते जाते हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम और टेक्निकल टीम का, हमारे प्रोड्यूसर निज़ाम जी रहे हैं और टेक्निक पर हमें फैज़ान का सहयोग मिला, साथ ही हमारी प्रोडक्शन असिस्टेंट उरुषा का भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अगले सप्ताह एक और नए विषय के साथ हम आप सभी के साथ जुड़ेंगे। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को हमारी ओर से।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुबह के ठीक 10 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं समाचारों के साथ।

10 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। शागुस मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनके ब्रिटिश समकक्ष एंडी बर्नहम के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। एंडी बर्नहम ने 22 मई 2025 के समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शागुसियन समुदाय के लिए इस दर्दनाक अध्याय को समाप्त करने में ब्रिटेन के समर्थन का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री रितेश रामफर और एड मिलिबान के बीच होने वाली बैठक का स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। करीब 130 बड़े नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफर कर रहे हैं। नई महासचिव

0: चीफ का चुनाव जलवायु बदलाव और एआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं। जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ है। आयात 9.4% घटा जबकि निर्यात 10.7% बढ़ा है। हालांकि जहाजों को दी जाने वाली सामग्री और ईंधन को अलग कर दें तो निर्यात 7% कम हुआ है। ब्रेक पेडल में खराबी मिलने के बाद बीवाईडी ने चीन में 183,000 से अधिक गाड़ियां वापस मंगवाई हैं। इनमें क्वीन और टैंग सीरीज शामिल हैं। ये दोनों सीरीज मॉरिशस में नहीं बेची जाती, इसलिए यहां के वाहन मालिक प्रभावित नहीं होंगे। गवातोमंगा मामले में 350 मिलियन रुपए की कथित मांग से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच फ्रांस तक पहुंच गई है। एफसीसी ने वहां एक व्यक्ति का फोन जांचा है। रिकॉर्डिंग की सच्चाई और उसमें सुनाई देने वाली आवाजों की पहचान अभी साबित नहीं हुई है। विदेश स्तर पर यमन में लड़ाई तेज होने के बाद 120,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में 3,000 से अधिक लोगों ने पड़ोसी जिबूती के एक शरणार्थी शिविर में पना ली है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए।
1: Radio Mauritius
2: 800 kilohertz par ye hai Radio Mauritius
1: Radio Mauritius
2: Radio Mauritius

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: भक्ति धारा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। करजोड़ अभिवादन है। रत्ना का सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें अभी से लेकर दिन के 11 बजे तक इस भक्तिमय भेंट में। जनों के साथ साथ हम सुनेंगे आचार्य सुदेश बद्री जी को ठीक 10:15 बजे के करीब। आइए आज के इस भजन भरे यात्रा की भजन भरे यात्रा का शुभारंभ करते हैं इस गणेश भजन द्वारा।

जहाँ मन विचलित होता है बस वहीं तो सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं जीवन में, पर जहाँ मन थम जाता है वहाँ सारे मोह बिखर जाते हैं। मन का स्थिर होना अति आवश्यक है। जीवन को अगर स्थिर बनाना है तो सर्वप्रथम हमारे मन पर हमें बहुत ज्यादा संयम धारण करना आवश्यक हो जाता है।

0: वेदों पर आधारित कार्यक्रम, आइए सुनिए वेद सुधा।
1: वेद सुधा कार्यक्रम के समस्त आदरणीय श्रोताओं को मेरा सादर अभिवादन है। आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार निर्धारित की गई है। सर्वप्रथम हम वेद पाठ एवं उसका भावार्थ सुनेंगे, तत्पश्चात एक मधुर भजन का आनंद लेंगे और अंत में एक वैदिक मंत्र की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। तो आइए आरंभ करते हैं वेद पाठ से। ॐ प्रसम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोतनव्यं गिर्भे नरं नृषाहं मंहिष्ठम्। उपासकों को चाहिए कि वे गुण विशिष्ट परमेश्वर्यवान परमपिता परमेश्वर की शरण में बैठकर श्रद्धा भक्ति और प्रेम से उसका स्तवन करें, उसका गुणगान करें। ये सब कार्य वे इस प्रकार करें जैसे कि सच्चे भक्तों को सच्चे श्रोताओं को करने चाहिए। ओम आत्वेतानि शीतदिन्द्रमभिप्रगायत सखायस्तोमवाहसः। यदि साधक एकांत में भजन के अभ्यासी नहीं है तो उन्हें चाहिए कि वे अपने समान गुण कर्म स्वभावों वाले साधकों के साथ मिलकर बैठें और चहुं ओर से अपने मन को एकाग्र करके इस जगत सम्राट परमपिता परमेश्वर का खूब गुणगान करें। ओम दोषो आगा आद बृहद्गायद्युम्न गामन्नाथर्वण स्तुहि देवं सवितारम्। साधक को चाहिए कि वह ज्योतिर्मयी राह पर प्रकाशमान पथ पर चले, वह अथर्वा अर्थात अहिंसक परमात्मा का भक्त अथर्वण बने, वह स्थिर चित्त वाला बने और जब रात होने लगे, जब शाम होने लगे तो वह खूब गाए, महान परमेश्वर को गाए, अपने उत्पादक प्रेरक दिव्य गुणों से संपन्न सविता देव की स्तुति करे। ओम एषो वह अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिवा स्तुषे वामश्विना बृह। जो उपासक हैं उन्हें चाहिए कि जब रात आने वाली हो, सायं समय होने वाला हो तो वे जहां उस सविता देव की स्तुति करें वहां वे इस मंत्रानुसार मध्य रात्रि से ऊर्ध्वकाल में अर्थात उषा काल में उठकर भी उसका भजन करें।

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। प्रिय श्रोतागण, इस मंत्र का सामान्य भाव है कि मनुष्य को इस संसार में अपने कर्तव्य रूप कर्म करते हुए ही दीर्घ जीवन की इच्छा करनी चाहिए। धर्मानुकूल, वेदोक्त और निष्काम कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने का यही श्रेष्ठ मार्ग है। इस प्रकार कर्म करते हुए मनुष्य कर्म के बंधन में नहीं फंसता। श्रोताओं, मंत्र का मूल संदेश यह है कि मनुष्य संसार से भागकर नहीं बल्कि संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करके आत्मोन्नति कर सकता है। वैदिक परंपरा में यह मंत्र कर्म, कर्तव्य, दीर्घ जीवन और निष्काम भाव के अत्यंत गंभीर संबंध को प्रकट करता है। मंत्र के प्रत्येक शब्द में एक गंभीर जीवन दर्शन निहित है। श्रोतागण, कुर्वन का अर्थ है करता हुआ, आचरण करता हुआ, एव अर्थात ही, इह अर्थात इस संसार में, कर्माणि अर्थात कर्मों को, जिजी विशेष अर्थात जीने की इच्छा करे, शतम समाह अर्थात 100 वर्षों तक, एवं अर्थात इस प्रकार, त्वयि अर्थात तुझ में, न अर्थात नहीं, अन्यथा अर्थात दूसरे प्रकार से, इत अर्थात इस मार्ग से, अस्थि है, न कर्म लिप्यते कर्म लिप्त नहीं होता, और नरे मनुष्य में। श्रोताओं, यहाँ सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि वेद कर्म का निषेध नहीं करता। वैदिक जीवन दर्शन में मनुष्य कर्मशील प्राणी है। शरीर की रचना ही ऐसी है कि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक उसे कुछ न कुछ कर्म करना ही पड़ता है। भोजन करना, अध्ययन करना, परिवार का पालन करना, समाज की सेवा करना, राष्ट्र के लिए कार्य करना, ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान का प्रचार करना, यज्ञ करना, सत्य बोलना, न्याय करना और अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना, ये सब जीवन के कर्म क्षेत्र का भाग हैं। इसलिए वैदिक दृष्टि में कर्म से पलायन जीवन का आदर्श नहीं है। श्रोताओं, मंत्र का आरंभ ही कुर्वन्नेवेह से होता है, अर्थात कर्म करते हुए ही। इसमें कर्म करते हुए शब्दों को अत्यंत महत्व दिया गया है। मनुष्य को निष्क्रिय होकर जीवन बिताने की शिक्षा नहीं दी गई है। जीवन का मूल्य उसके कर्म से निर्धारित होता है। जिस प्रकार बीज अपने भीतर वृक्ष बनने की संभावना रखता है, उसी प्रकार मनुष्य के भीतर ज्ञान, शक्ति, विवेक और सेवा की संभावना होती है। किंतु वह संभावना तभी वास्तविक उपलब्धि बनती है जब मनुष्य उसे उचित कर्म द्वारा व्यक्त करता है। श्रोतागण, यहाँ कर्म का अर्थ प्रत्येक प्रकार का कर्म नहीं है। वैदिक दृष्टि से ऐसा कर्म जो अधर्म, स्वार्थ, हिंसा, छल, शोषण, अन्याय अर्थात अविवेक पर आधारित हो, मनुष्य को उन्नति की ओर नहीं ले जाता। स्वामी

आनंद के भाष्य में इस मंत्र के कर्माणी को धर्मयुक्त, वेदोक्त और निष्काम कर्मों के रूप में समझा गया है। इसलिए कर्म की श्रेष्ठता केवल कर्म करने में नहीं, बल्कि किस उद्देश्य से और किस प्रकार कर्म किया जा रहा है इसमें है। एक व्यक्ति अपने कार्य को केवल धन कमाने का साधन समझ सकता है, जबकि दूसरा उसी कार्य को परिवार, समाज और मानवता की सेवा का माध्यम मान सकता है। दोनों बाहर से समान कार्य करते हुए दिखाई दे सकते हैं, किंतु उनकी आंतरिक भावना अलग होने के कारण उनके कर्म का नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य भी अलग होगा। श्रोताओं, मंत्र का अगला महत्वपूर्ण पद है जिजी विशेत शतम समाह। इसका अर्थ है कि मनुष्य 100 वर्षों तक जीवन जीने की इच्छा करे। यहाँ 100 वर्ष को केवल गणितीय संख्या मानना मंत्र के व्यापक भाव को सीमित कर देना होगा। श्रोताओं, वैदिक साहित्य में दीर्घ जीवन का उद्देश्य केवल अधिक समय तक शरीर को जीवित रखना नहीं है। दीर्घ जीवन इसलिए मूल्यवान है कि मनुष्य अधिक समय तक ज्ञान प्राप्त करे, अपने कर्तव्यों को पूरा करे, समाज की सेवा करे, अपने चरित्र का निर्माण करे और आत्मिक उन्नति करे। अर्थात वैदिक आदर्श यह नहीं है कि मैं अधिक समय तक जीवित रहूं और अपनी इच्छाओं को पूरा करता रहूं, बल्कि यह है कि मैं दीर्घ जीवन प्राप्त करूं ताकि अधिक से अधिक उत्तम कर्म कर सकूं। यही इस मंत्र की महान विशेषता है। श्रोताओं, यदि जीवन में उद्देश्य नहीं है तो दीर्घ आयु भी सार्थक नहीं होती। इसके विपरीत यदि मनुष्य सत्य, ज्ञान, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका प्रत्येक वर्ष समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। विद्यार्थी का जीवन अध्ययन द्वारा सार्थक होता है, शिक्षक का जीवन ज्ञान दान द्वारा, चिकित्सक का जीवन रोगी सेवा द्वारा, कृषक का जीवन अन्न उत्पादन द्वारा, वैज्ञानिक का जीवन अनुसंधान द्वारा, सामाजिक कार्यकर्ता का जीवन लोक सेवा द्वारा और आध्यात्मिक व्यक्ति का जीवन सत्य एवं सदाचार के प्रचार द्वारा सार्थक होता है। श्रोताओं, मंत्र का अत्यंत गंभीर भाग है न कर्म लिप्यते नरे। यहाँ लिप्यते का अर्थ है लिप्त होना, चिपकना या बंधन उत्पन्न करना। इसका तात्पर्य यह है कि उचित भावना से किया गया धर्मयुक्त कर्म मनुष्य को कर्म बंधन में नहीं डालता। श्रोताओं, यहाँ निष्काम कर्म का अर्थ कर्म के परिणाम की उपेक्षा नहीं करना है। इसका वास्तविक अर्थ है कर्तव्य का पालन करते समय केवल व्यक्तिगत लोभ, स्वार्थ और अहंकार को कर्म का केंद्र न बनाना। श्रोताओं, मंत्र मनुष्य के सामने एक अत्यंत संतुलित जीवन दर्शन प्रस्तुत करता है। जीवन को स्वीकार करो, दीर्घ जीवन की इच्छा करो, परंतु उस जीवन को केवल भोग में न लगाओ। कर्म करो, परंतु अधर्मपूर्ण कर्म मत करो। सफलता प्राप्त करो, परंतु अन्यायपूर्ण साधनों से नहीं। संसार में रहो, परंतु लोभ और स्वार्थ के दास मत बनो। अपने कर्तव्य का पालन करो और अपने कर्मों को ईश्वर, सत्य तथा लोक कल्याण की भावना से जोड़ो। इस प्रकार कुर्वन्नेवेह कर्माणि केवल कर्म करने का आदेश नहीं है, यह एक संपूर्ण जीवन दर्शन है। यह मनुष्य को आलस्य से कर्म की ओर, स्वार्थ से सेवा की ओर, अधर्म से धर्म की ओर और कर्म बंधन से

0: कर्म की शुद्धता की ओर ले जाता है। जिजी विषय छतंग समाह मनुष्य को सार्थक दीर्घ जीवन की प्रेरणा देता है और न कर्म लिप्यते नरे की यह शिक्षा देता है कि धर्मयुक्त वेदोक्त और निष्काम भावना से किया गया कर्म मनुष्य की आत्मिक उन्नति में बाधक नहीं बल्कि सहायक बन सकता है। वास्तव में इस मंत्र का सार यही है कि मनुष्य को कर्म से भागना नहीं चाहिए, उसे अपने कर्म को इतना शुद्ध धर्मयुक्त और लोकहितकारी बनाना चाहिए कि उसका संपूर्ण जीवन ही साधना बन जाए। ऐसा जीवन व्यक्तिगत उन्नति के साथ परिवार, समाज, राष्ट्र और समस्त मानवता के कल्याण का साधन बनता है। यही इस महान वैदिक मंत्र की शाश्वत प्रासंगिकता है। आदरणीय श्रोताओं, आज का कार्यक्रम अब अपने समापन की ओर है। हमें विश्वास है कि वेद मंत्र की व्याख्या ने आपके जीवन में सकारात्मक प्रेरणा प्रदान की होगी। इस कार्यक्रम को सजाने हेतु श्री यूसुफ जी का विशेष धन्यवाद है। आप सभी का स्नेह और श्रवण हमारे लिए अमूल्य है। पुनः एक नए विषय के साथ मिलेंगे। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद सुधा।

श्रोताओं, आज की इस भक्तिमय धारा, भक्तिमय यात्रा का समापन करने का समय हो चला है। आज का दिन मन को पवित्र रखें, अपने विचारों में संयम रहें और इसी के साथ नकारात्मकता को दूर करते हुए सकारात्मकता की ऊर्जा को हम जागृत रखें। सभी का कल्याण हो, बस ईश्वर से यही प्रार्थना करते हुए आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। संतिम भजन के साथ आप सभी ने हमारा हृदय की गहराई से साथ दिया, आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित करते हैं और पुनः भेंट होगी एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ दिन आप सभी को।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे आस्था, नमस्कार।
2: नमस्कार, 11 बजे के समाचारों में स्वागत है आप सभी का। शक्कुस मुद्दे पर प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम और उनके ब्रिटिश समकक्ष एंडी बर्नहम के बीच कल फोन पर बातचीत हुई। एंडी बर्नहम ने 22 मई 2025 के समझौते को मंजूरी दिलाने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने शक्कुसियन समुदाय के लिए इस दर्दनाक अध्याय को समाप्त करने में ब्रिटेन के समर्थन का स्वागत किया। नेताओं ने न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री रितेश रामफर और एड मिलीबैंड के बीच होने वाली बैठक का भी स्वागत किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा का सत्र आज न्यूयॉर्क में शुरू हो रहा है। करीब 130 बड़े नेता इसमें भाग ले रहे हैं। मॉरिशस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री रितेश रामफल कर रहे हैं। नए महासचिव का जलवायु चुनाव, जलवायु परिवर्तन और एआई के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियम बैठक के प्रमुख मुद्दों में शामिल है। जुलाई में मॉरिशस का व्यापार घाटा पिछले महीने के मुकाबले कम हुआ। आयात 9.4% घटा जबकि निर्यात दर 10.7% बढ़ा। हालांकि जहाजों को दी जाने वाली सामग्री और ईंधन को अलग कर दें तो निर्यात 7% कम हुआ है। ब्रेक पैडल में खराबी मिलने के बाद BYD ने चीन में 183,000 से अधिक गाड़ियां वापस मंगवाई हैं। इनमें क्वीन और टंग सीरीज शामिल है। ये दोनों सीरीज मॉरिशस में नहीं बेची जाती, इसलिए यहां के वाहन मालिक प्रभावित नहीं होंगे।

0: तुमंगा मामले में 350 मिलियन रुपए की कथित मांग से जुड़ी ऑडियो रिकॉर्डिंग की जांच फ्रांस तक पहुंच गई है। एफसीसी ने वहां एक व्यक्ति का फोन जांचा। रिकॉर्डिंग की सच्चाई और उसमें सुनाई देने वाली आवाजों की पहचान अभी साबित नहीं हुई है। विदेश स्तर की खबरों में यमन में लड़ाई तेज होने के बाद 1,20,000 से अधिक लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। पिछले कुछ दिनों में 3,000 से अधिक लोगों ने पड़ोसी जिबूती के एक शरणार्थी शिविर में पनाह ली है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। बढ़ते हैं शोक समाचारों की ओर। बरान ले ने बिलेरिवियर सेश में 62 साल के 62 ईयर्स ओल्ड के धनमराज ओजायब की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए लालूसी बिल्डिंग बिलेर की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। समय के बारे में आपको बाद में सूचित किया जाएगा। शोकग्रस्त परिवार के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: शम्मे फरोजा।

0: मौसा सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:22 हो चुके हैं। मंगल का दिन है और सितंबर की 22 तारीख है और माह रबीउस्सानी की आज 10 तारीख है। अब ताखीर ना करते हुए आप समाअत फरमाएंगे खतीब व इमाम मस्जिद, माफ़ कीजिएगा, ताखीर ना करते हुए अब आप समात फरमाएंगे ख़तीब व इमाम हज़रत मखदूम सैयद अशरफ मस्जिद हाईलैंड्स के मोहतरम मौलाना जुनैद अहमद ख़ान अशरफ़ी साहब की ज़ुबानी एक बयान, आइए समात फरमाइए।
1: नहमदु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला अशरफिल अंबिया व सैयदिल मुरसलीन وعلى آله وأصحابه عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम। पिछली गुफ्तगु से मिली हुई चंद बातें अवलिया कामलीन की शान में अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सामिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लम कमा तुहिब्बु व तरदा बिन तुसल्ली अलैहि सलातम व सलामन अलैका व अला आलिका व असहाबिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पिछली गुफ्तगु औलिया कामलीन माह रबीउल आखिर के मुकद्दस महीने के हवाले से हुई थी। उसी गुफ्तगु को आगे बढ़ाते हुए कि औलिया कामलीन कि ज़िंदगी में बड़ी सख्त ज़रूरत है, जिसे जिस्म पर बीमारियां और लोहे पर जंग आती रहती है, इसी तरह दिल पर भी गफलत की जंग चढ़ती रहती है। जिस्म की बीमारियों के लिए डॉक्टर्स अतिब्बा पैदा हुए और बीमारी दिल के लिए अतिब ईमान वो कौन है? औलिया कामलीन। हजरत मौलाना रूम फरमाते हैं, चंद खानी हिकमत यूनानिया हिकमत ईमानिया रा हम बखान। जंगालू लोहे को भट्टी की जरूरत है कि कोयला खूब जल के राख हो गया, अब उसमें जिस लोहे में जंग लग चुका हो उसमें डाल दीजिए तो सब जंग वो जल जाता है और लोहा ओरिजिनल हो जाता है। और जिनके दिलों में जंग लग जाता है फिर वो नमाज की गफलत बरतते हैं, कुरान हकीम की तिलावत से दूर होते जाते हैं, फिर ऐसों के इलाज के लिए औलिया अल्लाह की सुहबत और इबादत और रियाजात दरकार हैं। मगर तासीर में सुहबत औलिया तेज तर है। तिलावत कुरान पाक स्याही कल्ब को आहिस्ता आहिस्ता दूर करती है। मिश्का शरीफ है कि इंसान तिलावत कुरान सुबह शाम या जब भी मौका मिला कर रहा, दोपहर कभी भी,

उसकी कल्ब में जो स्याही है, कालापन है, कालापन किस बात का, हसद है, बुग्ज है, कीना है। जब इंसान तिलावत कुरान करता है तो ये आहिस्ता आहिस्ता दूर हो जाती है। मगर अल्लाह वालों की नज़र करम एक आन में काया पलट देती हैं। हज़रत मौलाना रूम फरमाते हैं, एक ज़माना सुहबत बा औलिया बेहतर अज सद साला तात बेरिया। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें, अल्लामा इकबाल ने कहा। तो वाकई औलिया कामलीन की ज़िंदगी ऐसी है कि उनके करीब पहुँचो तो फौरन उनकी निगाह में वो तमाम जलवे हुब्बे रसूल, हुब्बे खुदा, नमाज, तिलावत कुरान कि वो जलवे उनकी आँखों में होते हैं कि वो जब अपनी नज़र किसी पर डालते हैं तो उसकी तकदीर बदल जाती है, तकदीर पलट जाती है। क्या कहना, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। वाकई की तौर पर हुजूर सैयदना गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला की बारगाह में चोर चोरी की नियत से घुसा मगर कुछ न पाया। हुजूर गौसुल आज़म ने अपने खादिम से इरशाद फरमाया, हमारे घर से चोर खाली हाथ जा रहा है, इसमें हमारे दरवाजे की बदनामी और तौहीन है। खादिम ने अर्ज किया, क्या दिया जाए? हुजूर गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाए, वो दिया जाए जो दोनों जहान में इसके काम आए। हमें क्या याद करेगा कि फला जगह कि कुतुब का इंतकाल हो गया है, उसे वहाँ का कुतुब बना कर भेज दियो। देखो आया था चोर था और गया तो कुतुब। ऐ सरकार बगदाद, हम गुनहगारों पर भी नज़र करम फरमाइए। तो वली की बारगाह में जब कोई इंसान जाता है तो लफ्ज़शें, ख़ताएं जो कुछ होती हैं, पहुंचने के बाद वहाँ वली कामिल उसके दिल की दुनिया को बदल देता है। लेकिन ज़ियारत का तरीक़ा सही, जैसा हमारे उलमाए कराम ने बयान फरमाया, उस तरह हमें ज़ियारत करने जाना चाहिए। आज सिर्फ़ हम गाय बैल भैंस के लिए ज़ियारत करने के लिए जाते हैं, हमें गाय चाहिए, हमें ये चाहिए, भैंस चाहिए, हमें बीवी चाहिए। अरे उस मुक़दस बारगाह में पहुँच कर औलिया कामलीन से अपने ईमान की इस्लाह की तलब करो। जो दिल में जंग लगा है, ऐ वली कामिल, इसे दूर कर दीजिए ताकि दिल नमाज में लगे, ताकि दिल रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने वाला हो जाए, ताकि ये दिल माँ बाप की ताज़ीम के लिए, ये दिल बीवी बच्चों के हुकूक़ की अदायगी के लिए हो। लेकिन आज बहुत से लोग हैं ला माशाल्लाह कि इस तरीक़े पे ज़ियारत करते हैं तो उनका चेहरा साहिब करामत वली ये कामिल की दरबार से रोशन और मनवर होता है। तो अज़ीज़ाने ग्रामी, बताना ये है कि सरकार गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर या और तमाम दीगर औलिया कामलीन की बारगाह में जब आप जाएं और अगर वापस आ रहे हैं, आपने अपने दिल की दुनिया को नहीं बदला तो आपका जाना बेकार है।
जैसे आप बाज़ार गए और सब्ज़ी ख़रीद कर

ना लाए तो आपका जाना बेसूद है, बेफायदा है। इसी तरह वली की बारगाह पहुंचे और दिल ना बदले तो समझ लेना आपका जाना बेसूद है। इसी तरह मक्के मुकर्रमा उमरा हज के लिए पहुंचे, मदीने तैयबा हुजूर की ज्यारत के लिए पहुंचे और वापिस आकर हुजूर की सुन्नतों पर अमल ना करें तो आप वाकई हुजूर की ज्यारत के लिए नहीं गए, मदीने की जमीन पर घूमने गए आप। आकर बेअदब हो जाना, हुजूर की सुन्नतों से इनहराफ करना, नंगे सर नमाज पढ़ने की आदत बना लेना, अलयाज़ु बिल्ला, आप मक्के मुकर्रमा पहुंचे हैं, क्या किसी नबी ने या हमारे हुजूर ने, जिस हुजूर की उम्मत में है, क्या मेरे हुजूर ने कभी नंगे सर सिवाय नमाज इस्तस्का की और कोई नमाज पढ़ी है? तो इज़ान मोहतरम, तो इसी तरह वली की बारगाह में पहुंचे और दिल अगर नहीं बदला तो समझ लीजिए आप सिर्फ गए और चादर को देखा और वली की मज़ार को देखा, उसकी बारगाह से कोई फैज़ तुमने हासिल नहीं किया। फैज़ हासिल करने जिस तरह आप बाज़ार गए, आपका झोला सब्जियों से भरा है, इसी तरह वली की बारगाह से जब वापस आवें तो ईमान का झोला इतना मजबूत भर जाए कि नमाज फ़र्ज नहीं, सुन्नत नफिल भी नहीं छोड़ेंगे और बैठकर इंशाअल्लाह औलियाए कामलीन के तरीक़े पर क़ुरान की तिलावत करेंगे, ज़िक्र अज़कार करेंगे, तब पता चला कि वाकई आप किसी वली की बारगाह से औलियाए कामलीन फ़ैज़ देने के लिए बैठे हैं, आप फैज़ लेना तो चाहो। चलिए एक वाक़े के तौर पर, एक दफ़ा हुज़ूर ग़ौसुस अक़ल रज़ियल्लाहु ताला जंगल में अकेले जा रहे थे और बड़ा कीमती लिबास पहने हुए थे, बहुत कीमती कपड़े को पहने हुए थे। एक डाकू ने बुरी नीयत से दामन पकड़ लिया और कपड़ा उतारने के लिए कोशिश की। अर्ज़ किया, मौला इसने अब्दुल क़ादिर का दामन पकड़ा है, क़यामत तक इसके हाथ से न छूटे। अल्लाह अकबर। तो वली कामिल का अगरचे उसने बुरी नीयत से पकड़ा था, लेकिन सरकार गौसुल पाक ने फरमाया कि अब्दुल क़ादिर का दामन पकड़ा है, क़यामत तक किससे हाथ से न छूटे। तो उस डाकू ने सारी बुराई छोड़कर जो खूबियाँ सरकार गौसुल आज़म पिरान पीर दस्तगीर की ज़िंदगी में थीं, वो सारी खूबियाँ उसके अंदर आ गईं। यानी नमाज का वो पाबंद हो गया, रोज़े का पाबंद हो गया, बुराई से दूरी अख्तियार कर ली, डाकूपन ये चोरी चमरी तमाम चीज़ों से अपने आप को दूर कर लिया। अज़ान महतरम, इसी तरह हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद रदियल्लाहु ताला एक कुहार की भट्टी से गुजरे जिस पर मिट्टी के बर्तन पक रहे थे। हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने आवे पर निगाह डाली जहाँ पर वो मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं, निगाह फरमाई, नार को तो नूर बना दिया और निगाहे करम से तमाम बर्तनों पर अल्लाहु अल्लाहु नक्श हो गया। कुम्हार ने ये देखकर चीखा, कहा, ऐ शाहे नक्शबंद तू नक्शे मोरा बबंद, नक्शे चुना बबंद कि गोयन नक्शबंद। अल्लाह अकबर। जैसे दुनिया में मुसाफिर को रहबर की ज़रूरत है, परदेश में बग़ैर रहबर के काम नहीं चलता, ऐसे ही मुसाफिर आखरत के लिए रहबर तरीक़त की ज़रूरत है, वरना राह राह मारे फिरते हैं। अल्लाह तबारक ताला हमें औलियाए कामलीन बिलखुसूस सरकार गौसुल आज़म और तमाम सलासिल के मुक़द्दस बुज़ुर्गों से मोहब्बत, उल्फत, उख़ुव्वत अता फ़रमाए और उनके फ़ैज़ो बरकात से हमारे दिलों को रोशन व मनव्वर फ़रमाए। तमाम सलासिल मुक़द्दस

अभी आप समात फरमा रहे थे ये खूबसूरत कलाम मरहूम ज़ुल्फ़िकार अली साहब के खूबसूरत आवाज़ में। मेरे गौसे आज़म तेरी नस्बत का सहारा है, अंधेरों में भी हमको एक यही रोशन सितारा है। तेरा दर वो दर है जहाँ झोलियाँ अंबरती हैं, गमों की धूप में रहमत की बदलियाँ बरसती हैं। बगदाद की गलियों से ये खुशबू आज भी आती है, गौसे आज़म की मोहब्बत दिलों को जगमगाती है। हम गुनहगार सही, दिल में तुम्हारी चाहत है, या गौसे पाक यूं तो हमारी सबसे बड़ी दौलत है। तेरी निस्बत से दिल को करार मिलता है, टूटे हुए दिल को फिर एतबार मिलता है।

या इम्तिहानात दे रहे हैं उनके लिए आसानी अता फरमाए और उन्हें कामयाबियाँ दे, आमीन। इसके अलावा दुआ की गुजारिश की गई है फदील जुम्मन उज़्मा

मन एफएमली ने। इसके अलावा दागोचिया से फिनाज चूनी अपनी वालदा फरीदा चूनी और अपने वालिद फारूक चूनी और अपने चाचा राफिक चूनी और सलीम सोमाली और गासिद सोमाली के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इन तमाम मरहूमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसके अलावा हानिया मौला और साहिर, जी हाँ, हानिया मौला और साहिर के लिए दुआ की गुजारिश कर रही हैं वालदा फिरोज़ा गामपत, नाना नानी, भाई अनस, भाभी, भाई नूरुद्दीन, फरहीन और जी हाँ तमाम फैमिली दुआओं की गुजारिश कर रही है हानिया मौला और साहिल के लिए। इसके अलावा भाई रिशाद गुजीदावा के लिए, उनकी बेगम मुनीजा, उनकी बेटियां तस्लीमा, अर्जीना, जनैदा, बेटा जावेद, दामाद बहू जहरा और तमाम पोते पोतियाँ मेजिन कौंदेमास से बहुत सारी दुआएं और प्यार भेज रहे हैं।

मौजूद सामीन, गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी हमें ये पैगाम देती है कि अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत हो, दिल में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, ज़ुबान पर सच्चाई हो और ज़िंदगी में तक़वा आजिज़ी हो। आज उनके उर्स के मौके पर दिल यही कहता है कि ऐ पाक परवरदिगार, हमें भी अपने नेक बंदों के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामीन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

जाम्यो कालिंदड़ी ने घाट रुड़ो जाम्यो।

की पसंद। चलिए श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस एमी जो हम हुए वाटसा 19 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है इस समय। तो चलिए सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। चलिए आप ये आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय से लेकर शाम के 4 बजे तक आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। फ़ोन नंबर वही है 4028085। हमारा व्हाट्सअप नंबर है वो है 5251700। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं आप सभी सुनने वालों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत हम कर रहे हैं।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम 2:40 हो चुका है स्टूडियो की घड़ी में और ये अगला गीत जाने वाला है हमारे साथ इस समय राधा जी है पृथ्वी वर्ष की रहने वाली, हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहती है। तो ये गीत उन के नाम हम करेंगे, साथ में है मीला जी जो हमेशा हमारे साथ निभाती है न्यूकोव की रहने वाली, उनके समस्त परिवारों के लिए ये अगला गीत। माला सुमारू है कतबोन की रहने वाली और उनके पति है सूर्यदेव जी और उनके सभी बच्चों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए प्यारा सा गीत फिल्म जुबैदा से लिया गया लता मंगेशकर की आवाज़ में हम सुन पाएंगे।

चलिए श्रोताओ, आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं और चलिए आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हम लेने वाले। हमारे साथ इस समय सुदेवी जी हैं और वो वक्वा की रहने वाली है, हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो ये अगला गीत जो है जाने वाला है उनके समस्त परिवारों के लिए। ये गीत जाएगा उनके दीदी ललिता त्रियोले की रहने वाली कुशल परिवार है, दीदी सुनीता है, देविना बिंदु है, माला मालेंगा के, आहना है, नंदिता, सभी रामरतन परिवार है, कुआवो परिवार, गबुआ परिवार, कुदयाल परिवार। तो चलिए इन सभी लोगों के नाम जो है ये अगला गीत हम चलाएंगे।

तो चलिए श्रोताओं, 2:50 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। मनचाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद, इसे हम सजा रहे हैं आपके नाम। तो चलिए, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। 4028085 हमारा फ़ोन नंबर है, हमारा व्हाट्सएप मैसेज जो है, जहाँ आपका जो व्हाट्सएप मैसेजेस आप भेज सकते हैं 5251700। अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। ये अगला गीत जाने वाला है हमारे साथ इस समय। जी हाँ, हमारे साथ इस समय जो है आप हैं, जी हाँ हमारे साथ इस समय आप हैं गीता जी। गीता जी जो है पोफिया की रहने वाली है। ये गीत जाएगा उनके सभी बच्चों के लिए, आदित्य, अरव, जानवी, टेनिश और साथ में है उनके पति है रोहित जी और उनके सभी परिवारों के लिए। कि अगला गीत हम चलाने वाले हैं।

0: चलिए श्रोता, अगला गीत विद्या जी है न्यनपा की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हुई है, तो चलिए उनके नाम पे ये अगला गीत, फिल्म का नाम है चंपा कली, और ये प्यारा सा गीत जाएगा, उनकी बहन है सती, साथ में है उनकी बहन सुरेखा, वेदना भी है, विमला, प्रीति और चाची कुमारी, तो इन सभी लोगों के नाम जो है, ये अगला गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ों में आप ये प्यारा सा गीत सुन पाएंगे।
1: HMV द्वारा प्रस्तुत गीतमाला हिट परेड के कैसेट नंबर 7 का दूसरा पहलू शुरू होता है उस साल के हिट गीत नंबर 18 से। ये गीत है सुचित्रा सेन और भारत भूषण की फिल्म चंपा कली का, जिसमें सुरीले दर्द में डूबी हुई एक बिरहन की पुकार है।

0: मिलते हैं अर्शिता से, जानते हैं इस घंटे के संक्षिप्त समाचार। नमस्कार।
1: नमस्कार विकास, और श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। समुद्री संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना और अवैध मछली पकड़ने पर अधिक प्रभावी तरीके से रोक लगाना, यही वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम के मुख्य उद्देश्य हैं। आलबियो फिशरीज रिसर्च सेंटर में जहाज़ों की निगरानी दूर से और रियल टाइम में की जाती है। इसमें जहाज़ों की लोकेशन के साथ साथ उनकी पकड़ पर भी नज़र रखी जाती है। हालांकि इन नियमों को लेकर मछुआरों में पूरी सहमति नहीं है। कुछ मछुआरे इनसे जुड़ी पाबंदियों और प्रक्रियाओं पर आपत्ति जता रहे हैं। इन चिंताओं को दूर करने और इस डिजिटल बदलाव को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही नियमों में कुछ संशोधन किए जाएंगे। चीन के 77वें गणतंत्र दिवस के आधिकारिक समारोह 1 अक्टूबर को होंगे। मॉरिशस में हालांकि इन समारोहों की शुरुआत पहले ही हो चुकी है। हिन फो ली क्वान सोसाइटी ने रविवार 20 सितंबर को पोर्टलिस में इस मौके को खास अंदाज में मनाया। इस अवसर पर चीनी संस्कृति से सजी एक विशेष शाम का आयोजन किया गया, जिसमें पारंपरिक प्रस्तुतियों के साथ साथ मॉरिशस और चीन के बीच दोस्ती और मैत्री का संदेश भी दिया गया। मॉरिशस राष्ट्रीय कॉमन मार्केट फ्रेमवर्क तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। 4 दिनों की एक कार्यशाला में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाया गया है। इसमें पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 के तहत प्रस्तावित तंत्रों पर चर्चा की जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में जलवायु से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना है। इस पहल को ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डी ला फ्रांकोफोनी का समर्थन प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिथुआनिया के प्रधानमंत्री ने बताया है कि रूस से संभावित खतरे को देखते हुए उनके देश ने इवैक्यूएशन की योजनाएं तैयार कर ली हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि अगर लिथुआनिया पर हमला होता है तो उनका देश आत्मसमर्पण नहीं करेगा। प्रधानमंत्री माइडाउगस सिंकेविचिस ने यह भी कहा है कि लिथुआनिया के लोग रूस की ओर से खुद को लगातार खतरे में महसूस करते हैं। इसकी एक वजह देश के हवाई क्षेत्र में ड्रोन का प्रवेश भी है। उन्होंने कहा कि अगर लिथुआनिया पर हमला हुआ तो वे जवाब देंगे और वे मुकाबला करेंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि अलग अलग संभावित परिस्थितियों के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए ये भी कहा है कि बुजुर्ग नागरिकों को शहरों से व्यवस्थित तरीके से बाहर निकालने और ट्रैफिक जाम से बचने की योजना भी बनाई गई है। लिथुआनिया नेटो का सदस्य है और उसकी सीमा रूस के कैलिनीग्राद क्षेत्र से लगती है। और उन्होंने ये भी कहा कि वे ठोस खतरों का सामना कर रहे हैं। ये रोज़ाना नहीं होता है, लेकिन वे इनका अनुभव कर रहे हैं और ये उनके लिए वास्तविकता है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद और नमस्कार। News on NBC Play and NBC.mu.
2: ये है रेडियो मॉरिशस।

की पसंद। चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। सपहर के 3:04 हो चुके हैं इस स्टूडियो की घड़ी में। तो चलिए आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जो है काफ़ी लोग हैं, तो चलिए एक प्यारा सा गीत जो है हम चलाने वाले हैं। हमारे साथ इस समय हमारे साथ सरिता जी है, कथोबोन की रहने वाली, और उनके पसंद पे जो है ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं। तो चलिए श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद रेडियो मॉरिशस पे, और ये कार्यक्रम जो है हम जारी रखने हैं वाले हैं शाम के 4 बजे तक। तो एक से बढ़कर एक गीत आपके लिए। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहेंगे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, वो है 5251705, और हमारा फ़ोन नंबर है 4028085। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ने वाले हैं। प्यारा सा नज़ाना हम फिल्म माया से लिया गया हम चलाने वाले हैं, और ये प्यारा सा गीत जो है आप सुन सकेंगे। जी हाँ, ये प्यारा सा गीत आप सुन सकेंगे लता मंगेशकर की आवाज़ में, साथ में है मोहम्मद रफ़ी।

और इसी गीत पे नाम जोड़ेंगे हमारे साथ इस समय जी है सरिता जी। सरिता जी हैं कथोबोन की रहने वाली, हमारे साथ जुड़ी हुई है। गांगोप की सुनीता भी है, उनके नाम ये एक प्यारा सा गीत हम कर रहे हैं।

0: तो चलिए श्रोता, वो आपकी पसंद कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और अगले गाने की ओर। हमारे साथ इस समय, जी हाँ, हमारे साथ इस समय रेहाना जी है। रेहाना जी हमेशा हमारे साथ रहती है, वो है फिनिक्स की रहने वाली है। तो ये अगला गीत जो है उनके नाम हम कर रहे हैं, और बहुत ही प्यारा सा गीत जो है फिल्म ठोकर से लिया गया, उनकी पसंद पे हम चलाने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया सा गीत जो है रेहाना जी की पसंद पे इस कार्यक्रम में हम शामिल कर रही है।
1: गीतमाला हिट परेड के पहले कैसेट में आपकी यादों को गुदगुदाया जा रहा है, धुन शब्द और आवाज के उन कुशल खिलाड़ियों की कला से जिन्होंने सन 50 के आसपास गीतमाला में उस हिट परेड की नींव रखी जो शुरू हुई 1954 में। ये 12 लाजवाब

चलिए श्रोताओं, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद, इसे हम जारी रख रहे हैं। और अगला गीत समस्त बंधु परिवार के लिए। जी हाँ, बंधु परिवार जो है त्रियो लेके रहने वाले हैं। तो चलिए, ये अगला गीत है जो है बहुत ही प्यारा सा गीत है। वैसे एक भाव गीत है ये, और ये भाव गीत है जो है हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो 4028085 पे हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए, मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद, इसे हम जारी रखेंगे शाम के 4 बजे

अगला गीत जाने वाला है हमारे साथ इस समय मोहम्मद शफीक का, जो है सैपिया के रहने वाले। आपके लिए ये अगला गीत हम चला रहे हैं, फिल्म का नाम है अनवर।

चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद का रकम को जारी रखते हुए ये अगले गाने की ओर हम बढ़ रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ाना जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं के नाम जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इस समय हमारे साथ जो है श्यामा रघुनंदन जी जुड़ी हुई है। तो चलिए ये अगला गीत जो है जाने वाला है उनके समस्त परिवारों के लिए। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा गीत श्यामा रघुनंदन जी की फरमाइश पे ये गीत जाएगा विश्वानी दुखी के लिए। वीना रामफल है और दिनी उकलू भी है। तो चलिए इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत फिल्म शिकस्त से लिया गया।

तो आपकी पसंद कार्यक्रम स्टूडियो की घड़ी में 3:30 बज रहे हैं श्रोताओं, और मन चाहे गीतों का ये प्रोग्राम आपकी पसंद, इसे हम आगे बढ़ाएंगे। और ये अगला गीत जो है हम चलाने वाले हैं इन सभी लोगों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप हैं जी, हाँ, हमारे साथ विश्वानी डुबन जी है, मौराबिया की रहने वाली। ये गीत विश्वानी डुबन जी है, वाकवा की रहने वाली। ये अगला गीत हम चलाने वाले हैं उनकी बहनों के लिए, इंदिरा शारदा है, उनकी सहेलियों हैं नीला, प्रतिभा, शोभा, साथ में है गीता गजाधर जी। तो इन सभी लोगों के नाम जो है ये प्यारा सा गीत, और ये प्यारा सा गीत जो है हम नाम जोड़ेंगे माँ गायत्री जी का, जो कि नुवे फ्रांस की रहने वाली है। और ये गीत उनके बेटे अजय के लिए, साथ में है उनके सभी परिवारों के लिए। दिलवाले कभी न हारे, बहुत ही प्यारा सा गीत इन लोगों की फरमाइश पे जो हम चला रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गीत इस फिल्म से लिया गया। तो चलिए गीत की ओर हम बढ़ेंगे कुमार सानू और राजेश्वर की मीठी आवाज़ों में।

गीतों का ये खूबसूरत कारवा आगे बढ़ाते हुए ये अगला गीत जाने वाला है शोभा जी पोम्पे मुसेस की रहने वाली। ये प्यारा सा गीत फिल्म हमराही से लिया गया।

चलिए श्रोताओं, अगले गाने की ओर हम बढ़ने वाले हैं। हमारे साथ इस समय मुकेश मोहन और देवयानी हैं और गीता वाकवा के रहने वाले। साथ में निर्मला फोंजूसा की रहने वाली और उनके बहनें हैं अलीदा और यास्मीन। और साथ में है अंशुजा राम किलावंत क्योले की रहने वाली। ये गीत जो है उनके पति उमदेद जी की याद में, और प्यारा सा गीत जो है जाने वाला है इन सभी श्रोताओं के लिए।

तो चलिए श्रोताओं, आपकी पसंद कार्यक्रम के अंत तक आप पहुंचे हैं। जाने से पहले आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। वाराणसी और पिचिकॉन फिनिक्स के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है से डुब्लेवेया वाराणसी, विल डेवी इवेंट गार्डन, वाल डेवी इवेंट गार्डन, मौसलमॉ ले नोआ, पिचिकॉन के कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को मौसलमॉ रिवर एज, सोफिया ब्रांच रोड, मौसलमॉ डामरी और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी 23 सितंबर 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बुधवार को, और ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से और कार्यों की समाप्ति पर बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए अंतिम नज़ाना आप सभी सुनने वालों के नाम, ये गीत खास जो है अनसुया रंग के रावण जी की फरमाइश पे ये गीत जाएगा ओमदत्त जी की याद में। तो चलिए इसी गीत के साथ ही आपकी पसंद कार्यक्रम का समय पूरा हो चला और साथ देने के लिए धन्यवाद। अगला कार्यक्रम शाम के 4 बजे, और ये कार्यक्रम जो है आप सुन सकेंगे तमिल भाषा में, और ये कार्यक्रम जो है फुवाना के साथ आप सुन पाएंगे। हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार।

नमस्कार प्रिय श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत प्रोग्राम। इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए मैं उषा कौर यहाँ पर। और दोस्तों, आप ये कार्यक्रम सुनेंगे 6 बजे तक, तो कहीं मत जाइएगा, साथ दीजिए। कुछ ऐसे गाने आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है और बस उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करती हैं आज का पहला गाना।

5:15 बज गए हैं दोस्तों और आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत प्रोग्राम और आपके कॉल्स और मैसेजेस के जरिए हमको पता लग रहा है कि आपको ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आ रहा है क्योंकि जो

खाने हमने सिलेक्ट किया है आप लोगों के नाम और वो एंजॉय आप लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद लता जी की आवाज़ में। ऐसे ऐसे गाने बाद में आप सुनेंगे, नया अंदाज फिल्म से लिया गया, अपना तो जमाना जमाने में किशोरा की आवाज़ में।

पे गाइए ना। दिल की उमंगे हैं जवान, गाइए ना, क्या मुश्किल है, सरगम बताऊं।

0: दो।
1: पांच बजकर 35 मिनट हुए हैं। दो कदम तुम भी चलो, दो कदम हम भी चले, तो चले बढ़ते हैं आगे इस खूबसूरत कार्यक्रम में। यहाँ पर फिल्म का नाम है एक हसीना दो दीवानी, फिल्म से लिया गया। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1972 में। चलिए मुकेश साहब और लता जी की आवाज़ों में सुनते हैं ये प्यारा तराना।

5:54 हुए हैं दोस्तों, आपने साथ दिया इस खूबसूरत कार्यक्रम में, बहुत धन्यवाद। ऐसे ऐसे गाने हम फिर से लेकर आएंगे आप लोगों के लिए, और इस सफर में आपने साथ दिया, धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द, उषा को दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, शाम के ठीक 6 बजे हैं। सितंबर मंगलवार का दिन, इस सायंकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नम ने शागोस द्वीप समूह से जुड़ी संधि को मंजूरी देने के लिए मॉरिशस और अमरीका के साथ मिलकर काम करने की कटिबद्धता जताई। इस संदर्भ में उन्होंने कल प्रधानमंत्री डॉ नवीन राम गुलाम के साथ फोन पर बात की। दोनों सरकारी नेताओं ने आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा की और संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई। दुनिया भर के नेता संयुक्त राष्ट्र की

0: 51वीं महासभा के लिए न्यूयॉर्क में 81वीं महासभा के लिए न्यूयॉर्क में एकत्र हुए हैं। अगले 28 सितंबर तक वे बारी बारी से एजेंडा में शामिल मुद्दों पर बात करेंगे, जिनमें मध्य पूर्व और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और गाजा के हालात शामिल हैं। समुद्री संसाधनों का बेहतर संचालन और गैर कानूनी मछली मार गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी संघर्ष, ये वेसल मॉनिटरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम के मुख्य उद्देश्य हैं। स्थानीय मछुआरों की आशंकाओं को दूर करने और डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया तेज करने के वास्ते जल्द ही नियमों में संशोधन किए जाएंगे। जोरदार चक्रवर्ती तूफान दुजों ने जापान में काफी तबाही मचाई, कम से कम 4 लोगों की मौत और कई अन्य लापता। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। बरतानी प्रधानमंत्री एंडी बर्नम ने शागोस द्वीप समूह से जुड़ी संधि को मंजूरी देने के लिए मॉरिशस और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की कटिबद्धता जताई है। साथ ही उन्होंने जिगोगाशा सैन्य अड्डे की गतिविधियां जारी रखने तथा यूके की राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने का भी आश्वासन दिलाया। इस संदर्भ में उन्होंने कल प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम के साथ फोन पर बात की। दोनों सरकारी नेताओं ने आपसी हित के कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की और संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई। इस पर सिंचा मुतु की रिपोर्ट पर गीता सुनारायण का विवरण।
1: प्रधानमंत्री दफ्तर की ओर से जारी बयान के अनुसार दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच मैत्रीपूर्ण बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने मॉरिशस और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए कई मुद्दों पर मिलकर काम जारी रखने की इच्छा जताई। इनमें 22 मई 2025 को हुए शागोस द्वीप समूह समझौते का मुद्दा भी शामिल है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एंडी बर्नम ने दोहराया कि वे अमेरिका के साथ मिलकर इस समझौते की पुष्टि के लिए हर संभव प्रयास जारी रखेंगे। ब्रिटेन का मानना है कि उसकी सुरक्षा के लिए जेगोगाशा स्थित सैन्य अड्डे का इस्तेमाल सुनिश्चित करना जरूरी है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने अपने ब्रिटिश समकक्ष को शागोस के लोगों के लिए इस दर्दनाक अध्याय को समाप्त करने की दिशा में उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। एंडी बर्नम ने ये भी कहा कि कई क्षेत्रों में सहयोग से दोनों देशों को साझा लाभ मिल सकता है। इनमें जलवायु परिवर्तन से निपटना, वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई तथा आर्थिक विकास और व्यापार को मजबूत करना शामिल हैं। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई। बताया गया है कि इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान न्यूयॉर्क में ब्रिटेन के विदेश मंत्री एड मिलीबैंड और मॉरिशस के विदेश मंत्री रितेश रामफल की मुलाकात होगी। इस बैठक का उद्देश्य ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच संबंधों को और मजबूत करना है।
0: दुनिया भर के नेता संयुक्त राष्ट्र की 81वीं महासभा के लिए न्यूयॉर्क में एकत्र हुए हैं। अगले 28 सितंबर तक वे बारी बारी से एजेंडा में शामिल मुद्दों पर बात करेंगे, जिनमें मध्य पूर्व और यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और गाजा के हालात शामिल हैं। ये उच्च स्तरीय बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब वैश्विक हालात काफी गंभीर हैं, खासकर बढ़ते मानवीय संकट और तेजी से बिगड़ती जलवायु इमरजेंसी की वजह से। आधिकारिक वक्तव्यों के अलावा कई अनौपचारिक बैठकें भी लगाई जा रही हैं, जैसे कल फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल माक्रों और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच एक बैठक लगी। राष्ट्रसंघ की इस 81वीं महासभा के अंतर्गत नए महासचिव का चुनाव भी होगा। इस पर सिल्वाना परिमामन की रिपोर्ट पर करुणा आलू का विवरण।
2: 130 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री और प्रतिनिधि आज से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का रुख कर रहे हैं। भरोसा बहाल करने, परिवर्तन को प्रबंधित करने, सभी की सेवा में संयुक्त राष्ट्र का संगठन थीम के तहत ये सत्र लगाया जा रहा है। मध्य पूर्व की स्थिति और विश्व की स्थिरता तथा अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर वक्तव्य केंद्रित होंगे। यूक्रेन युद्ध भी है जिसके लिए समझौता फिर से शुरू होने से हल्की उम्मीद नजर आई है। इस वास्ते यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की स्थल पर पहुंच चुके हैं, जबकि ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियन का आज इंतजार है। शायद पिछले साल के मुकाबले इस मंगलवार को डोनाल्ड ट्रंप के भाषण की अधिक प्रतीक्षा होगी। आज शुरू हुई आम बहस के दौरान भावी संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति प्रक्रिया पर आदान प्रदान करने का भी अवसर होगा, जिसका कार्यकाल 2027 में शुरू होगा। अंटोनियो गुटेरेस के उत्तराधिकारी बनने के लिए 7 उम्मीदवार हैं, 4 महिलाएं और 3

0: पुरुष संयुक्त राष्ट्र संगठन के नेतृत्व में 10 साल तक रहने के बाद उन्होंने अपनी आखिरी राष्ट्र सभा की शुरुआत की। 31 दिसंबर को वे संघ से अलग हो जाएंगे। सभा से इतर संचालकों के बीच कई मुलाकातें भी निर्धारित हैं। कल इमैनुअल मैक्रों ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने पेट्रोल के दाम घटाने के लिए कई संभावनाओं का उल्लेख किया। इनमें राष्ट्रसंघ में एक ऐसे प्रस्ताव का पारित करना शामिल है जिससे होर्मुज जलमार्ग में अवरोध दूर हो और हुती विद्रोहियों के हमलों से सऊदी तेल ठिकानों की रक्षा हो सके।
1: समुद्री संसाधनों का बेहतर संचालन और गैर कानूनी मछली मार गतिविधियों के खिलाफ प्रभावी संघर्ष ये वेसल मॉनिटोरिंग सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक रिपोर्टिंग सिस्टम के मुख्य उद्देश्य हैं। अल्बियन फिशरीज रिसर्च सेंटर में दूर से लेकिन वास्तविक समय की निगरानी की जाती है जिसमें जहाज़ों की स्थिति और मछली मार की ट्रैकिंग दोनों शामिल हैं। हालांकि मछुआरे इन नियमों को लेकर सहमत नहीं है, कईयों को कुछ शर्तों से आपत्ति है। अधिकारियों के अनुसार इन आशंकाओं को दूर करने और डिजिटल बदलाव की प्रक्रिया तेज करने के वास्ते जल्द ही नियमों में संशोधन किए जाएंगे। ड्रग तस्करी की जांच के सिलसिले में हिरासत में ली गई एक फ्रांसीसी महिला का कहना है कि वह एक पुलिस अधिकारी की मदद से आधी रात को सुदनाक पुलिस स्टेशन में अपने सेल से बाहर निकली और फिर उस अधिकारी के साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसका कहना है कि ये सब आपसी सहमति से हुआ था। MCIT इस मामले की जाँच कर रही है लेकिन कई सवाल उठते हैं। हिरासत में रखी गई कोई महिला अपने सेल से बाहर कैसे निकल सकती है और इस बारे में कानून क्या कहता है, इस पर हम फिर से पुनः वापस आएंगे। एक राष्ट्रीय कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क स्थापित करने की दिशा में मॉरिशस तेजी से आगे बढ़ रहा है। पेरिस समझौते के आर्टिकल 6 में शामिल मेकानिज्म पर चर्चा करने के लिए विशेषज्ञ सरकारी अधिकारी और कई अन्य साझेदार 4 दिनों की एक कार्यशाला के लिए एकत्र हुए। मकसद रहा देश में जलवायु से जुड़ी परियोजनाओं के लिए फंड जुटाना। इस पहल के लिए अंतर्राष्ट्रीय फ्रांकोफोनी संगठन का समर्थन प्राप्त हुआ है। मॉरिशस में गिनी गणराज्य के नए राजदूत मोरीबा आले कोने ने इस सोमवार दोपहर गणराज्य के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल को अपना परिचय पत्र सौंपा। बातचीत मुख्य रूप से दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और आपसी हित के कई क्षेत्रों पर केंद्रित रही।
2: मॉरिशस और गिनी के बीच एक संयुक्त आयोग कायम किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना है और प्रोग्राम कायम करने में आसानी प्रदान करना और समान परियोजनाएं कायम करना है। इस पहल से दोनों देशों को अपने अनुभव बांटने और सहयोग मजबूत करने का मौका मिलेगा। मोहिबा आले को ने कहते हैं, गिनी को मॉरिशस से बहुत कुछ सीखना है। मैं अफ्रीकी देशों के बीच अनुभवों के आदान प्रदान और सहयोग पर विश्वास करता हूँ। मॉरिशस के पास कई सेक्टरों में अनुभव है जैसे पर्यावरण, मत्स्य उद्योग, ब्लू इकोनॉमी, पर्यटन, कृषि, फाइनेंस आदि। हम चाहते हैं कि वो गिनी के साथ अपना अनुभव बांटें।
3: La pêche, l'économie bleue, comme le tourisme, comme l'agriculture, comme les finances, pourraient éventuellement partager l'expérience avec la Guinée, qui a également beaucoup d'expérience en matière minière.
2: मॉरिशस के लिए नामजद होने से पहले मोरीबा आले कोने दक्षिण अफ्रीका में गिनी गणराज्य के राजदूत थे। उन्होंने न्याय मंत्री का पद भी संभाला है।
1: पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की 77वीं सालगिरह का आधिकारिक जश्न 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मॉरिशस में समारोह पहले ही शुरू हो चुका है। हिन फो ली क्वान सोसाइटी ने रविवार 20 सितंबर को पोर्ट लुइस में इस मौके पर एक समारोह का आयोजन किया जिसमें चीनी संस्कृति की झलक दिखाई गई, पारंपरिक प्रस्तुतियां हुई और मॉरिशस व चीन के बीच दोस्ती का संदेश दिया गया। प्रियंका की रिपोर्ट पर करुण लालू का विवरण।
0: ड्रम, लायन डांस और पारंपरिक नृत्य हिन फो ली क्वान सोसाइटी मॉरिशस के सबसे पुराने हक्का संगठनों में से एक है जो 150 साल से ज्यादा समय से मॉरिशस में चीनी संस्कृति और विरासत की रक्षा और उसे आगे बढ़ाने में मदद कर रही है। आमिन लिम्फात ने कहा, चीन गरीब देशों की मदद के लिए तत्पर हैं, जिन्हें राष्ट्रपति ने अपने संदेश में मल्टीपल

0: विश्व का उल्लेख किया है। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की 77वीं सालगिरह के मौके पर संगठन ने अपने सदस्यों को इकट्ठा किया। पीढ़ियों से चली आ रही विरासत का जश्न मनाया गया, लेकिन संस्कृति से परी चीन मॉरिशस का एक अहम साझेदार है। मंत्री शकील मोहम्मद ने कहा, मित्रता का मतलब उस वक्त मौजूद रहना है जब एक देश को मदद की जरूरत हो। 2019 में जब मॉरिशस ने संयुक्त राष्ट्र में शागुस के संघर्ष में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की मांग की थी, तो चीन हमारे साथ था। पेइडिंग ने कहा, हमारे दोनों देशों के बीच आपसी संबंध बढ़े हैं और ठोस सहयोग भी बढ़े हैं। मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान को लेकर भी चीनी समुदाय की अहम भूमिका है। एक शाम जो 150 से ज्यादा सालों की विरासत, हस्तांतरण और योगदान को दिखाती है, साथ ही मॉरिशस और चीन के बीच दोस्ती के रिश्तों का जश्न भी मनाती है।
1: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में हम आपको बता रहे थे कि जोरदार चक्रवाती तूफान दुजो ने जापान में काफी तबाही मचाई है। कम से कम 4 लोगों की मौत हुई है और बाढ़ तथा भूस्खलन के कारण 6 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इस पर तथा दुनिया भर की अन्य खबरों पर एक विशेष रिपोर्ट अदिति अवतार की ओर से।
2: जापान में जोरदार चक्रवाती तूफान दुजवान के प्रहार से कम 4 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए गए हैं। टोक्यो के आसपास हजारों घर बिजली सेवा से वंचित रहे। मूसलाधार बारिश के चलते कुछ इलाकों में बाढ़ उतर आई और भूस्खलन हुआ, जिससे 6 लोगों के लापता होने की भी खबर है। उनकी तलाश के लिए कार्रवाइयां चलाई जा रही हैं। आज सुबह दुजवान जापान से दूर हटकर प्रशांत महासागर में पहुंचा, जिससे जापान में सभी चेतावनियां हटा दी गई। अमेरिका ने चेतावनी दी है कि इस बुधवार से ईरान की सभी विमानन कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए बैन की जा सकेंगी। साथ ही वॉशिंगटन ने उन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को भी धमकी दी है जो ईरानी एयरलाइंस को सेवाएं उपलब्ध कराना जारी रख रही हैं। ईरान की अर्थनीति को कमजोर करने के उपायों के तहत अमेरिका ईरान के ऊर्जा, शिपिंग, टेक्नोलॉजी, गोल्ड तथा डिजिटल एसेट सेक्टरों को भी निशाना बनाने का दावा कर रहा है। G7 देशों ने यमेनी हूती विद्रोहियों से सऊदी अरब के खिलाफ हमले रोकने की मांग की है और साथ ही रियाद के प्रति समर्थन जताया गया है। यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका ने एक संयुक्त बयान में सऊदी अरब पर हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की है। इन देशों के नेताओं ने ईरान से हूती विद्रोहियों को गलत समर्थन देने से पीछे हटने को कहा है। साथ ही यूके ने सऊदी अरब को सैन्य सहायता पहुंचाए जाने की कटिबद्धता भी जताई है। अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड आज एक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। ये संधि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक के दौरान तय होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस समझौते से अमेरिका को ग्रीनलैंड की सुरक्षा की स्थायी जिम्मेदारी मिलेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 प्रमुख न्यूज एजेंसियों CNN, पॉलिटिको और MS नाउ पर बैन लागू किया है, जिसके जवाब में कई अन्य मीडिया नेटवर्क्स ने राष्ट्रपति ट्रंप को कवरेज देने से साफ मना कर दिया और इस मामले को अदालत में घसीटा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैन के पीछे इन मीडिया हाउसेस द्वारा फेक न्यूज फैलाए जाने का कारण बताया। दूसरी तरफ आज से व्हाइट हाउस ट्रंप TV की लॉन्चिंग कर रहा है, जो 24 घंटे अमेरिकी राष्ट्रपति को कवरेज देगा।
1: बढ़ते हैं अब हम मौसम संबंधी जानकारी की ओर।
3: आम हालत, पूर्व की ओर से आने वाले बादल हमारे स्थानीय मौसम को आज रात से प्रभावित करेंगे। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है रात के दौरान और कल सुबह पूर्व दक्षिण और सेंट्रल प्लेटों पर बादल घिराएंगे और कुछ देर के लिए सामान्य रूप से थोड़ी वर्षा होगी। दिन में पश्चिम, दक्षिण पश्चिम और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों में बादल विकसित होंगे और रहकर बारिश होगी तथा अन्य इलाकों में बादल घिरे रहेंगे। हवा रात के दौरान हल्की बहेगी और कल दिन के दौरान पूर्व उत्तर पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य

रहेगा और कल दोपहर बाद धीरे धीरे खराब होता जाएगा। दक्षिण पश्चिम की ओर से 2 मीटर 50 सेंटीमीटर की लहरें उठेंगी। समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, न्यूनतम तापमान सत्रप्राल पर 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच, अधिकतम तापमान सत्रप्राल पर सामान्य से थोड़ा ज्यादा 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। अतिरिक्त जानकारी, कल 23 सितंबर 2026 को इक्विनॉक्स होगा, यानी जब उत्तर और दक्षिणी गोलार्ध में यानी हेमिस्फीयर में दिन और रात दोनों का समय सामान्य अवधि का होता है। आज सूर्यास्त शाम 6:05 पर और कल सूर्योदय सुबह 5:59 पर।

तो इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला है। इसकी तैयारी में पूरे समाचार डेस्क का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं हम अब शोक समाचारों की ओर।

Choc 101 signé. Gilbert Jason Street au Coulimain. Gilbert Jason Street au Coulimain. 92 साल की 92 years old की श्रीमती गौरी गनु पैदा शंपादिया और जिन्हें पर्वत के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी कल 2:30 बजे उनके बेटे तासैन गनु के घर ओकुली से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए आलिब्रियों की शमशान भूमि ले जाएगी. कमीशन टुमोरो एट 2:30 PM. एवेन्यू रोज वेडर में 64 साल की 64 years old की श्रीमती रामबावती अनमोल पैदाश नाम दिगंबर और जिन्हें कविता के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी कल 1:30 बजे उनके पति श्री दनेश अनमोल के घर वैद्य से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेकोस्तोस की शमशान भूमि ली जाएगी. कमीशन टुमोरो एट 1:30 PM. ओ एस ए स्कूल लेन बोनाक्यू में 65 साल के 65 years old के श्री नारद कैंताल जिन्हें राजेश के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल सुबह 11:45 पर उनकी पत्नी श्रीमती शामिला कैंताल के घर बोनाक्यू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावोचा की शमशान भूमि ले जाएगी. कमीशन टुमोरो एट 11:45 PM. एट 11:45 AM बालिसों रोजबेल में 90 years old की श्रीमती सुपामा दोगासामी की मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे राजेंद्र दोगासामी के घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाएगी. क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM बारन लेन बेलेरिव्यसेश में 62 साल के 62 years old के श्री धर्मराज ओजायब जिन्हें संजय दत्त के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी बाद में उठाई जाएगी. क्रिमेशन आफ्टरवर्ड्स. कांपुरन पोस्ट द फ्लैक में 61 साल के 61 years old के श्री विजय आनंद गजाधर जिन्हें भीम के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं. उनकी अर्थी कल दिन के 2 बजे उनके बेटे अविनाश गजाधर के घर पोस्ट द फ्लैक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लामोचा की शमशान भूमि ली जाएगी. कमीशन टुमोरो एट 2 PM. एवेन्यू मुताई लाबुत में 78 साल की 78 years old की श्रीमती विल्दिया गोरीबा पैदाश नाम चेदी और जिन्हें जेल के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है. उनकी अर्थी गुरुवार को सुबह 11 बजे उनके घर लाबिज से उठाकर अंतिम

संस्कार के लिए सेंट-जॉर्ज ले सालिन की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन ऑन थर्सडे एट 11 AM। डोमेन जुमुलें गुडलैंड्स में 55 साल की 55 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देवी गोविंदन पैदाशना मुकैन और जिन्हें मालिनी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे योवन गोविंदन के घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआहोश गुडलैंड्स की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुमारो एट 1 PM। मोदेजिया वाकवा में 29 साल के 39 ईयर्स ओल्ड के श्री रिकेश बिलाव की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के 12:30 उनकी पत्नी श्रीमती आरती बिलाव के घर वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुमारो एट 12:30। बालिसों रोजबेल में 90 साल की श्रीमती सुपामा दोगासामी पैदाशाम पाइनी की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके घर रोजबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की शमशान भूमि ली जाएगी कमीशन टुमारो 10 AM। एम्पास सहाय रोथ रॉयल गुडलैंड्स में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धुनवंती सहाय जिन्हें पति के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके बेटे गोई दामरी के घर गुडलैंड से उठाकर बुआगोज गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई गई अंतिम संस्कार के लिए क्रीमेटेड टुडे एट 2 PM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।

सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। शुक्रवार 25 सितंबर को दिन के 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक सैंपल और फिनिक्स और आसपास के इलाकों में सैंपल रोड, बिशा लेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड, सोमी लेन, एडवा केरें एवेन्यू, मोसल मोनुअल, एम्पास कुमानी और बालगोबिन लेन, उस्मान एवेन्यू, आले जाक स्ट्रीट, एम्पास लोरियों, मोसलमान शांडो, मोसलमान सुब्राती, कोइंग लेन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, सी डब्ल्यू ए सैंपल और आसपास के इलाकों में भी। और कल 23 सितंबर को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक वालेटा और आसपास के इलाकों में मौसलमान वीआरएस वालेटा नंबर 1, नंबर 2 और आसपास के इलाकों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 819 किलोहर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस।
2: बजले प्रभु का नाम, रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

सभी श्रोताओं को अनीता का नमन स्वीकार कीजिए। इस क्षण आप आध्यात्मिक कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। भक्तजन, कहा गया है कि जो ओम है प्रणव धनुष है, जीवात्मा बाण है और परम ब्रह्म ही इसका परम लक्ष्य कहा गया है। इस लक्ष्य को बिना चूके एकाग्र चित्त और सावधानी से भेदना चाहिए ताकि बाण की तरह आत्मा भी ब्रह्म में विलीन अर्थात तन्मय हो जाए।

भक्तजन, चाणक्य नीति में कहा गया है कि उद्योगे नास्ति दरिद्रयम्, जपतो नास्ति पातकम्, मौनेन कलहो नास्ति, नास्ति जागरिते भयम्। भावार्थ यह है कि उद्यम करने वाले व्यक्ति के पास दरिद्रता नहीं टिकती। जप करने से पाप दूर होते हैं, मौन रहने से कलह नहीं होता है और सजग एवं जागरूक रहने वाले

प्रियजन, वैसे तो कहा जाता है कि हर चीज की अति जीवन का संतुलन बिगाड़ देती है। बहुत काम करना भी ठीक नहीं है, बिल्कुल काम ना करना भी ठीक नहीं है। बहुत सोना शरीर को सुस्त करता है, कम सोना मन को थका देता है। इसी तरह आराम, भोजन और मनोरंजन में भी संयम आवश्यक है। अर्थात हर चीज सही मात्रा में हो तो जीवन बोझ नहीं व्यवस्था बन जाती है।

भक्तों, कहा जाता है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। अर्थात जिस व्यक्ति में स्वयं की बुद्धि और विवेक नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या कर सकते हैं। जैसे नेत्रहीन व्यक्ति के लिए दर्पण का कोई उपयोग नहीं। अर्थात केवल शास्त्रों का ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ज्ञान को समझने और जीवन में उचित रूप से लागू करने के लिए विवेक आवश्यक है।

श्रोताओं, दुर्जन अर्थात बुरे लोगों की संगति का त्याग करो और सज्जनों का साथ अपनाओ। दिन रात पुण्य कर्म करते रहो तथा संसार की नश्वरता को सदैव स्मरण रखो। तो श्रोताओं, इसी विचार के साथ हम कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपने साथ दिया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। अनीता को दीजिए अनुमति। नमस्कार और शुभ रात्रि।

मुअज़्ज़ज़ सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह फ़िलहाल शम्मे गौसियत के परवाने ताजदारी जीलान हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह अक़दस में नज़र अकीदत पेश कर रहे हैं। धूमधाम से ग्यारहवीं शरीफ मनाएंगे, मना रहे हैं। हज़रत सैदना शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के ऐसे मकबूल वली कामिल थे जिनकी ज़ात जमाल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आयना थी, और आप रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह अज़्ज़वजल ने बेशुमार फ़ज़ाइल व कमालात से नवाजा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ना सिर्फ कसीरुल करामात बुज़ुर्ग थे, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको दिगर औलिया इकराम से बढ़कर करामात व इनामात से नवाजा था। सामईन, आइए हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की शान में ये कलाम समात फरमाइए।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सामईन कराम, हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाही की इस मनकबत के साथ आज का ये मुबारक प्रोग्राम महफिल शब अपने अख्तिताम को पहुंचता है। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ये वक्त दिया कि हम दीन की बातें आम करें, बिलखसूस हुजूर गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाही की ज़िंदगी और तालीमात से फैज़ हासिल करें। अल्लाह तबारक व ताला हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। सामईन, आपका मेज़बान निसार अख्तर अब आपसे इजाज़त तलब करता है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अब हमारी मुलाकात अगले मंगल को होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।

0: Continuous music. RM3.
1: 7 days a week. 24 hours a day. My. This is Radio Marxist.
2: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा
3: एक से एक जोली भोजपुरी की प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर गमट धमाल और ही मस्ती प्रताप सिंह के संगे एमबीसी रेडियो पर
4: सब संगत चालों के अजय प्रताप सिंह की ओर से प्यार भरा नमस्ते और सलाम। यह तो मनपसंद रेडियो चैनल एमबीसी रेडियो मॉरिशस और एमबीसी रेडियो मनोरंजन दोनों चैनलों पर सबको स्वागत करते जा। आज हम मंगल की रात मंगल 22 सितंबर साल 2026 भोजपुरी तड़का प्रोग्राम अभी से लेकर रात के 11 बज रहे थोड़ा मन करता नाचे के गावे के झूमे के कमरवा डोलाई के तो नंबर व घुमाइया का जगो दे हुए जगो विद सैंक का जगो दे हुए जगो विद सैंक पर SMS करिए जा टेलीफोने करिए जा का जगो दे हुए जगो विद सैंक पर टेलीफोने करिए ठीक बा। थोड़ा मन करता कोनो भी भोजपुरी गीत सुने के कोई के शादी बा जन्मदिन बा शादी की सालगिरह या कोई भी खास मौका तो झिझक के नहीं टेलीफोन करिए का जगो दे हुए जगो विद सैंक पर। पहल का गाना राधन राम साहब भोजपुरी बाजा बाजी बॉयज गीत गेले वन बहुत ही प्यारा सन गाना है लंगरो और एक गीत चलाते लाफलो खा के विशाल विशेषर जी के नाम ओकर घरोली ओकर बेटा और सब विशेषर परिवार के लिए जोन रहे लाफलो खात भाई विशाल विशेषर एक गीत खासम खास तोहर नाम और सब श्रोतालु के नाम जोन सुनता रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन

रात के 9:07 होता है और तू सुना तो एमबीसी रेडियो और संगचालक देखा था ऐसा कि धीरे धीरे अब हमने गर्मी के मौसम में प्रवेश करते ऐसा देख रहा दो दिन से खूब घमाकलक मौसम बदला था और दिन के काफ़ी घमाकल अभी रात के वक्त भी उतना ठंडा नहीं कराता है तो अभी ठंडा के मौसम जाता और अब गर्मी के मौसम आता और ऋतु विज्ञान केंद्र की ओर से बोला जाता कि साल बहुत बहुत गर्मी करी एक तरफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग और एल नीनो के असर मौसम परिवर्तन तो चाइना पारि के गर्म के मौसम के सामना करेगी और विश्व के अपरिहस तुल संग गमत करे के और हबीबी के कुछ संगत याद

न साथ आप हवन भाई सुधीर रामरो रामनोरत और रहेलन थोसेफ क्यूपिप में थोसेफ के पास रहेलन जा तब भाई सुधीर रामनोरत है गीत तोहर खातिर तोहर घरोली खातिर और तोहर दुगो लैका और सब रामनोरत परिवार के नाम और सुधीर रामनोरत अपन एम जॉय के सब संगतिया लोग के याद करत हवन सुबीर रामनोरत एक्स एम जी आई स्टूडेंट हवन एम जी आई मौका और याद बार 20 मई को संगतिया लोग सब कोई संगे हंसते गाइते जाता खुल रावत लंसा त हमने के दोस्त सुधीर रामनोरत के नाम खासम खास है गे त चल सुधीर रामनोरत कमरवा ढुलावा नाच गाव दुलिन के दादी के संगे भाई सुधीर दो सया नाचे के गावे के नाचा गावो भैया जिंदगी में हमेशा खुश रहा नचते गईते रहिया ए हे दुल्हन के दादी के बात सुना का बोलता थोड़ा सुधीर रामनोरत

और समय चला जाए के वो खती रू चल गल के जहाँ जाए के और शायद ओकर उतने दिन निखरल जिए के तू रोब उदास होब त कुछ नहीं बदली जाए होला चल गल वेरी प्रैक्टिकल इन लाइफ जिंदगी चला जिए के अब जो मर जला था और याद में नहीं कर सबसे हमेशा रोते रहे कहे के जो हम के आगे बा हमके परिवार लेकर लो बहुत खातिर परि जिए के अब तू लोग के आगे रोवल कर बहुत उदास बताओ के मूड भी खराब हो जाए और लोग उदास सही जानी रह सके तू एगो प्रियजन के खोइले हव जिंदगी में पर का करब दुनिया के ही दस्तूर है जे भी आल बा एक दिन परि जाए एक दिन हम नहीं जाब सा बारी बारी से त का करब जीना इसी का नाम है जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ यहाँ मरब सा यहाँ जी अब सा और यहाँ से कहाँ जाब सा जब मर गई तब फिन हो गए भैया कहानी खत्म फुल स्टॉप तो थोड़ा जी ल गाल नाच हमी के संगे संगे रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर और ढेर को इनके साथ देवा था बखत और आप हो रविश मंडु हेलो जी अगे तोहर माता पिता तोहर मारे खा तोहर भाई भौजी चीज़ों फॉर सब मंजू परिवार के नाम चाचा आत्माराम है गीत और खातिर और चाची ललिता कुशल तू हवा थ्योले से है गीत चली सतोबे एस एस एस के सब संगत चालू खातिर वीरापेन रुसाय प्रतिमा केत शिशंकर और सौजू भाई तो चले एक साथ सुने है गीत थोड़ा झीली

हमने के देश के आजादी खातिर धेको लड़लन पर पहला व्यक्ति जो लड़न वो रहस शिवसागर राम गुलाम और वो हमने के देश के पहला प्रधानमंत्री रलंजा प्यार से के चाचा बोलत ऐसा और मॉरिशस के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता रलन और जहाँ के मॉरिशस के फादर ऑफ द नेशन के रूप में भी उकरा याद कर जातल सर शिव सागर राम गुलाम के जन्म हो रहा 18 सितंबर 1900 में मॉरिशस के बैगीव जगह में और उनका परिवार भारत से मॉरिशस आ रहा इंडेंचर लेबर समुदाय से जुड़ा रलन बचपन में आर्थिक कठिनाई रहल बाकी पढ़ाई के प्रति उनका बहुत रुचि रहल रॉयल कॉलेज के पिप में पढ़तलन बाद में उच्च शिक्षा खातिर इंग्लैंड गईलन यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में मेडिसिन पढ़लन 1935 में मॉरिशस वापस आके डॉक्टर के रूप में काम करलन और धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन के राजनीति में प्रवेश भी करलन राम गुलाम के राजनीति में आवे के मुख्य उद्देश्य रहल मॉरिशस में आम लोग के राजनीतिक अधिकार मिले खातिर समाज में समानता बढ़ाई गई और सर शिव सागर राम गुलाम उनकर राजनीतिक यात्रा में कई महत्वपूर्ण पड़ाव पड़ल 1958 में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बनलन 1958 में पोर्टविस के मेयर 1951 में चीफ मिनिस्टर और 1965 में मॉरिशस के प्रधानमंत्री उनकर नेतृत्व में यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज यानी कि वयस्क नागरिकन के मतदान के अधिकार लोकतांत्रिक विकास के महत्वपूर्ण हिस्सा रहल मॉरिशस के स्वतंत्रता के इतिहास में सर शिव सागर राम गुलाम में के सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहल 1960 के दशक में ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के से मॉरिशस के स्वतंत्र करके बातचीत करके संवेदनशील प्रक्रिया तेज भइल अंत में 12 मार्च 1963 के मॉरिशस स्वतंत्र राष्ट्र बनल आज़ादी के बाद सर शिव सागर राम गुलाम स्वतंत्र मॉरिशस के पहला प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बनन यही कारण से आज भी हमने हमेशा के याद करी रह सर और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ कर लन ऐसे सौ के जो मान्यता रहा कि देश के सबको के चेहरा शिक्षा मिले के और बेशक उनका समय में शिक्षा के विस्तार या अधिक लोग तक शिक्षा पहुंचे पर जोर दिलन जा यूनिवर्सिटी मॉरिशस के स्थापना

1995 में भय जिमोशियस के उच्च शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण स्थान दिलक। स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण भी कर लन सर श्री सागराम गुलाम और कर प्रेजेंस में हेल्थ केयर के महत्व में भी खूब परिवर्तन आल। उनकर सरकार के दौर में पब्लिक हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर या एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया। मॉरिशस में गरीब या सामान्य परिवार खातिर सामाजिक सुरक्षा के व्यवस्था भी मजबूत करन गल। और सर शिव सागर राम गुलाम जिन्ह हमके देश खातिर बहुत कुछ कर ले हवन और हम के हमेशा याद करब सर हमेशा के लिए। और 15 दिसंबर 1997 के सर शिव सागर राम गुलाम के निधन होल और अंतिम संस्कार पॉम्पलिमुस में भयल जहाँ आज कर समाधि मेमोरियल मौजूद बा। तो प्रयोग गीत बनबा भी सौवेन सिंह के एनिवर्सरी के अवसर पर एनिवर्सरी पर विशाल मंगरू रीति जुड़न गीत गैलक बा हमने के चाचा सर शिव सागर राम गुलाम पर। चल आज की रात श्रद्धांजलि के रूप में सर शिव सागर राम गुलाम के याद कर सब के चाचा रहल पेय दुलाना से ओके कबू नहीं भुलाब जा।

भोजपुरी दल का प्रोग्राम रेडियो मॉरिशस रेडियो मनोरंजन पर आज प्रताप सिंह के साथ। और अब थोड़ा सा बात कर से हमने कि बॉलीवुड न्यूज़ के बारे में, जो महीना हुआ था कर मैं धीरे मना फिल्म रिलीज हो की बड़े पर्दे पर सब फिल्म सकबा देखे। 2 अक्टूबर की रिलीज हुई दृश्यम द कंक्लूजन, फिर वही तारीख के प्रेम कीटाणु फिल्म के नाम है। दुगो फिल्म रिलीज हुआ था 2 अक्टूबर के, एक गोहा दृश्यम दूसरा प्रेम कीटाणु। 9 अक्टूबर के रिलीज होता उड़ता तीर। 15 अक्टूबर के रिलीज हुई जेला 2 फिल्म। 16 अक्टूबर के प्रहार, 16 अक्टूबर के ही रफ्तार, दुगो फिल्म रिलीज हुआ था प्रहार और रफ्तार। 16 अक्टूबर के वेंथवा अक्टूबर, 23 अक्टूबर के पहला प्यार दूसरी बार फिल्म के नाम, और 11 अक्टूबर के फिल्म रिलीज होता मैं न रहा मेरा। और 2026 के रिलीज डेट में बदलाव सकेला हुए, पर ऐसा अनुमान लगाया जाता कि जी सब फिल्म चुन रही काफ़ी ज़बरदस्त रही और में नया नया कलाकार मिली हमने की देखे के, जैसे दृश्यम, प्रेम कीटाणु, उड़ता तीर, जेलर 2, प्रहार, रफ्तार, पहला प्यार दूसरी बार और मैं ना रहा मेरा। तो जो कोई शौकीन बा बॉलीवुड के तो लोग सब टाइटल याद रखें सर। अभी सुनब जाए गलु गीत मुकेश चेदी की आवाज़ में, चुम्मा चुम्मा मांगा था। और गीत तो हम चलाओ सब संगत आलू के नाम बोबासा के भाई हरीश है, तो और खतीत काला छोटी पोला जैसे हरीश नारायण मिडलैंड से साइलेंट के उसे गीत चली कर बरका संगतिया वीरानंद दीनदयाल के नाम आशा जनू रहलन को तेज कर्मा कुमारी शुभम शुभम के मंगेतर दीदी आशा जीजाजी और सब जानू परिवार देवेन नदीवाला वैनकुवे कैनडा सेवन रवि बंगारू है गीत और नाम और सब बंगारू परिवार के नाम। तो चल एक साथ सुने है ये जुलीसन गीत, गीत तो आप बोला था चुमा। अब भाई मुकेश चेदी बोला था वन चुमा के बारे में। तो चल एक साथ सुने गीत तो मुकेश चेदी गावत वन चुमा।

अब हमने तोरा तुलुके सुनाव जाए गो कहानी, और ये कहानी जो है बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ये कहानी के शीर्षक है चिड़ै और मच्छी की कहानी। तो बहुत पुरानी बात है, एगो गांव में एगो सुंदर पोखरा रहल। पोखरा में तरह तरह की मच्छी रहतल, और

किनारा एगो पेड़ पर एगो नन्हिका चिड़ैया के घोंसला रहल। चिड़ैया रोज सवेरे पेड़ से उड़ के पोखरा किनारे आवत हल। वो पानी पिए, दाना चुगे और फिर अपन घोंसला में चल जाता हल। और पोखरा में एगो मछली भी रहत हल। वो बहुत चंचल दयालु रहल। धीरे धीरे चिड़ै और मछली में दोस्ती हो गल। दोनों रोज एक दूसरे से बातचीत करत रहन सा। एक दिन बहुत तेज बरखा भइल। लगातार कई दिन तक पानी बरसल। पोखरा में पानी बर गल और ओकर धार तेज हो गल। चिड़ैया अपन घोंसला में फसल चुगा लोग के लेके बहुत परेशान हो गल। मच्छी चिड़ैया के उदास देख के पूछलक, बहिन तू आज इतना उदास काहे हो, काहे परेशान हो? चिड़ैया बोललक, बरखा से पानी बहुत बर गल बा। हमर घोंसला गिर जा के डर बा। हम अपन बचाव कैसे करब समझ में नहीं आवता। तो मच्छी बोललक, तू चिंता ना कर, हम तोहरा मदद करब। मच्छी पोखरा में रहत बाकी मच्छी लोग के बुलैलक। सभे मिल के पेड़ के नीचे जमा होइल। अन्य चिड़ैया भी अपन घोंसला के मजबूत करे खातिर सुखल टहनी घास या पत्ता लेके आल। मच्छी लोग पानी की धार से घोंसला के नीचे मिट्टी न बह जाए ई खातिर किनारा के आसपास के जगह पर नज़र रखलन जा। कई दिन के मेहनत के बाद बरखा रुक गल। चिड़ैया की घोंसला बच गल और ओकर चूजा लोग भी सुरक्षित रहल। चिड़ैया खुशी से मच्छी के बोललक, सच्चा दोस्त ऊ ना है जे खाली खुशी में साथ देवेला, बल्कि सच्चा दोस्त ऊ है जो मुसीबत में काम आवेला। कुछ दिन बाद पोखरा में एगो मछुआ जाल लेके आल। ऊ पोखरा में जाल फेंकलक आ बहुत सगरी मछली जाल में फंस गल। चिड़ैया ऊपर पेड़ पर बैठल सब देखत हल। वो तुरंत समझ गल कि ओकर दोस्त मच्छी के जान खतरा में बा। चिड़ैया नीचे उड़ के गल और अपन चोंच से जाल के रस्सी कुतर दिलक। बाकी चिड़ैया के भी बोलवैलक। सभी चिड़ैया मिल के जाल के कई जगह कमजोर कर दिलन सा। मछली लोग लगभग जाल से निकल गेलन सा। सभी मच्छी पोखरा में वापस भाग गल। मछुआ खाली जाल लेके रह गल। मच्छी चिड़िया के धन्यवाद दिला और बोलक, आज तू हमनी के जान बचैला, दोस्ती के असली मतलब आज समझ में आल। चिड़ैया मुस्कुरा के बोलक, दोस्ती में हिसाब ना होला, जब दोस्त मुसीबत में होला तब मदद चहला करे के। ओकर बाद चिड़ैया और मच्छी की दोस्ती और गहरा होल। दोनों एक दूसरे के हर दुख सुख में साथ देवत हलन। तो कहानी किसी की है संगतिया लोग कि सच्चा दोस्त ऊ होला जो मुसीबत के समय काम आवेला। ई कहानी से ई भी सीख मिलेला कि छोटा बड़ा जमीन पानी या अलग अलग जाति के होखला के दोस्ती में फर्क ना पड़े। अपन भरोसा दया और सहयोग सबसे ज़रूरी है। तो तू भी याद रखिया कि दोस्ती में हमेशा चलना एक दूसरे के साथ दे के, खासकर मुसीबत के समय में। ऐसा में चला सुन अब जा अगला गीत। यशवीर सिरतन गैले वन मच्छी हम खाइला। हम तो विजदाई भैया आई तो गीतवा के टाइटल है मच्छी हम खाइला। गीतवा गैले वन यशवीर सिरतन और है गीत मंगले हवन रतन निहाल घोंबे से कर पत्नी करुणा पापा विजय ज्ञान उचित विश्राम और दालबे से और रेहाना हास दानी फीलिंग से गीत मंगले वन ओकर खाला रीता और खाला रेणुका खातिर। तो चले एक साथ सुने हैं गीतवा मच्छी हम खाइला यशवीर सिरतन की जुबानी। और हे गीत चलावते सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लिसनर्स के नाम।

0: हमने के शास्त्र में, वेद में, पुराण में, उपनिषद में कहल गल बा कि जब हमने कोई के सहायता करी रहा सा तब भगवान बड़ी प्रसन्न रहा, भगवान के आशीर्वाद हमने पर रहेला। एक आते जहाँ ले सकबा हमेशा एक दूसरे के सहायता करे, चाहे कर बदले में वो तुम्हारा सहायता करी या ना करी, पर तू हमेशा दयालु बनिया, करुणा के सागर बनिया और जहाँ ले सकबा एक दूसरे के मदद करिया, एक बड़ा पुण्य। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, हाँ कि नहीं? हमके बड़ा आदमी लोग बोलक बा, हमके देवता देवी लोग बोलक बा, शास्त्र में लिखल बा, पर आजकल सब कोई लिखा थे कर रहता ये खातिर हमके बड़ा दुख सह के, हाँ कि नहीं? अगर सहायता करब तो भगवान तोहर सहायता करी, हाँ कि नहीं? तगला गीत खुशी के दिन नीरज को मधु गीत गेले वन और गीत हमने चलावते खासम खास ये सब संगत चालू खातिर अजय पूनम चिंताराम ऑस्ट्रेलिया से वन कद्दू को बेटा बाल गोपाल दादी इंदिरा चिंताराम बेटा चंदन बहुप्रिया सब चिंताराम परिवार सरोनी जानकी सी सहाय को बेटा बहु सबसे सहाय परिवार के नाम अनिता फ्रीकॉन फ्लाग से हवन और चल अनिता से बात करब जा। हेलो अनिता, नमस्ते अनिता जी, नमस्ते
1: नमस्ते।

0: हाय जी, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक हैं नीता जी, तो कैसे हुआ?
0: हम ठीक हैं।
1: मच्छी और इतिके कहानी कैसी लोकल, मच्छी और चिड़ै की?
0: मच्छी और चिड़ै की कहानी तो एक खूबे निमन बा, खूबे जोड़ी बा।
1: जोड़ी सीख बा, देखेला मच्छी कैसी।
0: आप तो आपके सब सब डायलॉग बहुत अच्छा बा।
1: एता
0: डायलॉग नहीं हाँ, सीखे के
1: सीखे ना? के हाँ हाँ
0: सिखावे ला जा
1: ढेर कुछ के मनोरंजन भी होला, शिक्षा भी होला साथ में।
0: हाँ चाहे ना हाँ। हमने रेडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखेला
1: है। कहानियाँ तू जाना तला जन बोली कहानियाँ? नहीं
0: नहीं नहीं कबू नहीं,
1: जोड़ी कहानियाँ।
0: जब तो जब आप कहानी सुनावे ला जा, हमने के मालूम नहीं है
1: हाँ।
0: कि कौन कहानी है आपसे सीखी रहा है।
1: हमने खुद खोज कहानी रहा सर इंटरनेट पर से
0: अच्छा
1: कहानी
0: लगी ना?
1: आशा करे सर कि ये सब हमने के जो कहानी है सबके दिमाग में जाला और इंसान कुछ न कुछ सीखेला।
0: रेडियो के माध्यम से हमने बहुत कुछ सीखी।
1: बहुत धन्यवाद। और अभी तोहर लगे लेता हूँ, कैसे यहाँ तक बड़ी गर्म करता शुरू कर दे रहे?
0: गर्म निमन बाकी, गर्म उतना नहीं
1: दिन के गर्म करे रहा दिन वहाँ के
0: ना? नहीं नहीं ठंडा हो उतना नहीं।
1: दक्षिण में खूब गर्म कर लगे मुजोन सगरो मुजोन हो रहा था दक्षिण में।
0: आयो बाप, अभी एक बार तो शुरू
1: बड़ी गरम करिए खूब गरम ऐसा गरम कब ना देख ले पहली बार ऐसा गरम हुई
0: ना।
1: भगवान की पूजा कर इंद्र भगवान बरसाए पानी हर पर उड़ी गई है महुवाकुआ में कैसे पानी सूखा था बाप रे बाप। फेकुआ भी वहाँ गया छो रहा वहाँ पर
0: टेलीविजन
1: में पास तो चेहना करे के पूजा पाठ इंद्र भगवान के प्रसन्न करे वरुण भगवान तो पानी बरसाए। नहीं तो आज के दिन कैसे बिता नहीं क्या बोले था?
0: अच्छा से बीतल हाँ, बहुत अच्छा से बीतल। थोड़ा सुननी मन थोड़ा सा
1: हाँ, ये सब तो होते रहे ना
0: होते रहे थोड़ा।
1: पर परिवार लोग लड़का लोग सब कोई अच्छा वन
0: सा सब कोई अच्छा वन सा सब कोई अच्छा वन है जे रलन सा तभी घर हवन सा घरे रोज आवेलन सा।
1: अब बोला था नहीं क्या कौन गीत सुन बा?
0: रेशम की साड़ी।
1: हाँ गीत तो मैं मन में कब से तो मैं मन के बाद जान गई रहा।
0: दोहर खातिर दोहर सभी टीम खातिर
1: हाँ।
0: हम सभी परिवार खातिर हमारे दोस्त खातिर।
1: और अनिता जी तो कुछ है रेशम की साड़ी पहने के?
0: रेशम की साड़ी
1: नहीं खुशी रह पहने के
0: हाँ तो आगे के लिए तो हमें बहुत रहल ना मामा के रहल
1: आगे रह कांजीवरम।
0: कांजीवरम हमारे साड़ी हो रहा कांजीवरम और बनारस के साड़ी।
1: एक गुलाम धोल तुलसी के साड़ी
0: अभी तुलसी के साड़ी नहीं दिख रही है कब
1: तुलसी के साड़ी से जोड़ी जोड़ी से आगे में ओंसरा डाल के और अब अनुपमा के साड़ी
0: सब बना
1: सब लामोद बना
0: हाँ सब रिक्लाम करे ना
1: सिमो देखब तब बुझाला कितना महंगा पड़ी सब लाइन में सस्ता बस सिमो है और वहाँ के जब आखिरी सुन अच्छे रिविजन में जानो पहने ना बड़ी जोड़ी जोड़ी है सोना से भी जोड़ी
0: खूबे जोड़ी अभी सोना के पहने रहा
1: अभी उतना कोई नहीं पहने रहा
0: नहीं तब बोलबा तो सोने
1: के जोड़ी। अच्छा रेशम की साड़ी के खाती मांगते वह
0: हमारे सब परिवार दोस्त के खातिर तोहर खातिर रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस सभी टीम के लिए आपको बहुत बहुत कॉल
1: बहुत धन्यवाद। ओके बाय बाय
0: बाय।
1: अरे को संगत है ललिता चाची, ललिता कैसे अमर जोड़ी चाची कहाँ रह लगी चाची?
2: हेलो नमस्ते बेटा।
1: हाँ चाची कैसे?
2: अच्छा सब कुशल मंगल।
1: आयो अम्मा नहीं रख रहे खाती चाची सब अम्मा का अचार डाल दे रहे हम बनी अम्मा खाती और समाचार अच्छा ना?
2: सब कुशल मंगल बा बेटा तुहर समाचार?
1: बाप हम यहाँ तो बड़ी गरम करता तुहर बगल ठंडा गरम गरम ठंडा। अरे बोला तो चाची कौन गीत सुन
2: बाडिया बेटा सुभावती दुमन के
1: कौन गीत
2: नाको के फुलिया
1: नाकों के फुलिया सुम्बावती दुमन
2: गिरल जाला
1: हो देख हाँ और के गई रख बस सुम्बावती दुमन
2: सुम्बावती दुमन हाँ बहन सुदेवी
1: हाँ हाँ बोला
2: यानी छोटी दीदी दादी प्रभावती आत्माराम भैया और शुक्लाल मौसी खातिन आ तोहरो खातिन बेटा।
1: और शुक्लाल मौसी कैसे अच्छा बना?
2: अच्छा हुआ अच्छा हुआ
1: थोड़ा बहुत सुनाला नीमन से थोड़ा बहुत
2: हाँ हाँ सुनाला
1: हाँ बस कब कब जब बचालन तो

0: टेलीफोन का बता कब कब मत जाए टेलीफोन
1: नाम का सुना ना बेटा राजू भीरी रखेला
0: वो खाते
1: हाँ
0: और आज के दिन कैसे बिता चाची
1: सब अच्छा बीतल बेटा तनी हवा हवा रहला
0: ए हवा रहल तो हर बगल है
1: हाँ हवा रहल
0: एने तो दिन के दक्षिण में बड़ी गरम करे रहल
1: हाँ
0: बुझा रहे से बुझा रहे से देसाम चल बाऊ से ऑफिस से गीता के बोल बोल रहे चाची

0: Center, 95.5. North, South, 95.6. 95.6. East, West, 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: Kilohertz. This is Radio Marches. Radio Marches.
4: एक से एक जोली भोजपुरी गीत प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर। कमट, धमाल और ये मस्ती प्रताप सिंह के संगे MBC रेडियो पर।
5: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का तो हर जीवन में स्वाद आने खातिर गमट जलसा हंगामा

रात के 10:08 होता है। तू सुना तो रेडियो मनोरंजन 94.6 पर और रेडियो मोशन 700 यानी AM और FM पर दोनों चला था। कार्यक्रम भोजपुरी तड़का अजय प्रताप सिंह सेतालु के साथ भोजपुरी तड़का ए हे कमरवा डुलावा नाच गावा। और बहुत साल पहले मॉरिशस में कुछ तूफान आ रहा लोगों नाम रन होलांडा उले फुक हम जेलेबरी एंजॉय में शायद फोम फोर फोर फाइव में रहते तूफान आ रहा होलांडा तो होलांडा तूफान खूब तबाही कर ले रहा और एक बाद मॉरिशस में एक महीना तक ब्लैकआउट रहा और स्कूल सब बंद रहा तो उले फुक रहा तूनी मिनवी। अब तूनी मिनवी कौन चिया तो देख बता लुगाओ पियन देन किल्ला करी खोजा ना ना ना ना ना ना ना लुगारू आए होला बापी उन दिन के लकड़ी खोजे लुगारू घर के पाछे लुगारू मचान पर। हाँ तो लालमाटी के जो गांव रहा वहाँ पर आदमी लोग बोला था सौ चीजों लुगाहू आवा था रात के तो लुगाहू कब कुत्ता के रूप में कब आदमी के रूप में घर में प्रवेश करता था और लोगन के डरा हुई तई काहे लुगारू के बात रहा उस समय सब कोई डर रहा था जैसे 6 तक सब कोई घर के भीतर हिल जाता कुल प्यंदेन की घोंची फलौता था आंगन में ताकि लुगारू भूत उत नहीं आई। अब कहाँ तक सच है बात बोले की मुश्किल हुआ पर खिमिया फैल रहा उलिपोक जब उलंदा तूफान आ रहा तब कर बाद जब तबाही मचल चारों अंधेरा रहा सौसे लुगारू आवत है तो हमने की कुछ संगठिया भाभी थो सेफ के पास रह और हमने के संगे नाचत वन गावत वन भाई सुबीर रामनुरत बोलते गीतों के बरिए पसंद बा लुगारू के गीत तो चलो भाई सुबीर रामनुरत है गीत तोहर खातिर तो के चाह संगे संगे के टेलीफोन के घंटी बजल हर घड़ी चुरू हो गल लुगारू आए हो लबा पियन देन के लकड़ी खोजे तो सुबीर रामनुरत है गीत खासम खास तोहर खातिर। अभी लुगारू के डर नहीं बाए ए लुगारू सब भाग गल सुधीर रामनरत मेरे दोस्त ये गीत खासम खास तो हर नाम

0: भोजपुरी दर का कार्यक्रम चलेगा लेंदी से लेकर धीमा से रात के 9 बजे से 11 बजे एमबीसी रेडियो मॉरिशस एमबीसी रेडियो मनोरंजन पर। और सब कोई नाचता गावता झूमता के संगे संग कमरवा डुलावता को संगत या बलाइन देकर से मिला जा। हेलो जब लाइन मिलते बच ये हेलो हेलो
1: हेलो जी नमस्ते
0: नमस्ते भैया तोहर नाम
1: संजय गोकुला से।
0: हाँ संजय भैया कैसे समाचार एकदम चकाचक बड़ा जोर का मठ हुआ था बुझा था
1: होता होता।
0: और बोला अगला गीत के कर खाते
1: मौसम कैसे बात
0: यहाँ यहाँ गर्म करा था भैया मौसम
1: गर्म
0: बहुत गर्म कर
1: था।
0: अभी आम लिपस्टिक से मिली तो हर बगल आम मिला था कि नहीं
1: मिला था।

0: मिलता हाँ और बोलो अगला गीत क्या कर खातिर चल लाली सिनेमा देखे केकर खातिर केकर खातिर अभी काम में हुआ
1: नहीं
0: घर से घरे हुआ जात वर्त संगत्यारों को याद करते हुआ हाँ चल रहता हाँ बोला तो सब संगत्यारों खातिर
1: और जी राखी काम करते हैं
0: नाइट शिफ्ट में
1: और वॉकर लोग हम
0: जा
1: आपके लिए भी आपके परिवार के लिए भी
0: बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फोन कर ला जा बहुत धन्यवाद और चल लाली सिनेमा गीतवा भी चलाओ सर है गीतवा के बाद अभी एक जोड़ी छोकरी से मिला जा अय और जोड़ी छोकरी लोग के कभी बा मॉरिशस में एक से खूबसूरत छोकरी लोग जोड़ी जोड़ी बा कोनो प्रीति जिंटा लिखा बा कोनो रानी मुखर्जी लिखा बा कोनो मीनाक्षी लिखा बा जोड़ी छोकरी से प्यार करी अरे भाई गीत हम नहीं बोलते कुनार हीलाल गीत आ गए 11 चला संगे संगे गाओ सर गीत में नाचब जारी 1 2 3 चला गीत गाओ जा सब कुछ संगे संगे गाओ से है नाचब सभी La la la la la la जोली छोकरी से प्यार करीला जिकर खातिर हम रोज जीला कैसे बदला बोके कैसे समझा बोके कोई न कोई बताई दे हमको से प्यार करीला जिकर खातिर हम रोज जीला कैसे बदला बोके कैसे समझा बोके को

जीरा ऐसे बदला ओके कैसे समझा ओके कोई ना कोई दे हमको चोली छपरी से प्यार करीला खातिर हम रोज जीला छप ओके कैसे बदला ओके कोई ना कोई बताए दे हमको चोली छपरी से प्यार करीला एहे ऐसे ही जोड़ी छोकरी से प्यार करते रहिए और गीतवा गाते रहिए। हाय देखा ऐसे ही नाच गावा झूमा फजर फजर जब मुखराज दिखेला कैसे बतावा दिन रात में चलेला फजर फजर जब अच्छा

कैसे बतला मुझे कैसे समझा मुझे कोई ना कोई बताई दे हमको चुपके से प्यार करी लाज कर खातिर हम रोज जीर कैसे बतला मुझे कैसे समझा

जरूर याद रखिए द बिगेस्ट ग्रैंड लाइव भोजपुरी कॉन्सर्ट लगी है शाम दी 26 सितंबर के रात के 7 बजे। लोकेशन है ब्लिस बैंक्वेट हॉल अर्सेनल और वहाँ पर ही चली जलसा के रात बा कॉन्सर्ट कुणाल हीरालाल के प्रोडक्शन में। जी हाँ कर में ढेर मना कलाकार भाग ले। प्रीसेल टिकट है 500 रुपये और आडो है 700 रुपीज और बहुत सारा कलाकार कर में भाग लिया जाए तो ज़रूर यह आयोजन कॉन्सर्ट चली और दिसंबरी एक में ढेर मना कलाकार लोग भाग लेवता जैसे रंभा राम तोहल बा और रंभा राम तोहल नीरज गुप मधु किशोर खिमिया कुणाल हिरीलाल रोशन सरासिंग और कृषि मनिक और नील के स्पाइक भी डीजे वकील डीजे अभी डीजे एनी नो एज रेस्ट्रिक्शन सब कोई सक आए और बेशक जलसा के रात फर्स्ट भोजपुरी लाइव कंसर्ट ईसाम दी 26 सितंबर के जरूर जय रात के 7 बजे ब्लिस बैंक्वेट हॉल आर्सेनल में। तो अभी चल प्रोग्राम के आगे बढ़ाओ जा और भाई संजय हरिचंद के गीत चलाओ जा कर पत्नी कर बेटी और सब कर परिवार खातिर चल लाली सिनेमा देखे है गीत चलाते सच जा कोई नाइट शिफ्ट में काम करता और बहुत प्यार से इनके सुनाता जितना ड्राइवर दोस्तों सुनाता थे कोई मेट्रो स्टेशन में काम करता पुलिस विभाग में मेडिकल विभाग में अस्पताल और क्लिनिक में बेकरी में थे कोई गर्मा गर्म रोटी पकावता तो ढेर कोई रात की सिलाई करता कपड़ा सीख रहता और ढेर कोई ढेर लेकर लोग रात के रिविजे करता एन से पेशाक एन से एस सी एच एस सी के एग्जाम सावता तो लेकर लोग रिविजे करता साथ में हमने के साथ होता जितना अध्यापक स्टूडेंट्स तक सुनाता तो गीत के नाम चल लाली सिनेमा देखे

हाँ, मौका मिले तो जरूर जाइए सिनेमा देखे, जुड़ी जुड़ी फिल्म जनरल सिनेमा में आई जाती रहे। रात के 10 बज के आधा हुआ था और हमने के साथ देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहे खातिर ढेर पैसा नहीं चेहरा, खुश रहे खातिर अगर तुहर परिवार तुहर साथ बा, तुहर पत्नी तुहर पत्नी तुहर लड़का तुहर माँ बाप यही काफी बा। रोटी कपड़ा और मकान चेहला और खुश इंसान तब होला जब उके प्यार मिलेला अपनापन मिलेला। त कबो पत्नी तुहर पर चिल्ला दे या पति चिल्ला दे तो अमीदी नहीं हुई ये घर घर के कहानी है, सब कुप में ऐसे होला है। नहीं सोच का है तुहर कुप में कब कबो झगड़ा होला, पति पति बात में पति नाराज हो जाला या पत्नी नाराज हो जाला, ये सब होला। शादीशुदा जिंदगी में ये सब होला। चेहला कॉम्प्रोमी शादी को कॉम्प्रोमी है तो चेहला समझे के एक दूसरे के है। छोटा छोटा बात में हो जाला, तकारी में नमक दस्सी पर गल या तेल दस्सी पर गल तो पत्नी से चिल्ला दिला तो कर मतलब नहीं बाकी तू पत्नी से प्यार नहीं करेला। और पत्नी कुछ कलछुल से धरा दिलक या बेलना से धरा दिलक तो ये मतलब नहीं बाकी तुझसे प्यार नहीं करेला, प्यार में नोक झोंक होती रहेला। तो चल भी सुनब जा खुशी के दिन गीत, गीत नीरज गुप मधु गई रे वन खुशी के दिन न। और गीत चलाते थे सब रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन के लिसनर्स के नाम, खास हम खास स्वीट एंड लवली रेहाना जी के नाम। आप ऑन फिनिक्स से बहुत प्यार से सुनता है डॉक्टर अंजू बीएम के साथ जुड़ल बैक ऐसे डॉक्टर जी गीत तोरो नाम डॉक्टर अंजू और स्वीट एंड लवली रेहाना हसनानी के नाम। चल एक साथ सुने खुशी के दिन।

0: खुशी के दिन रोज के रहेला जब तोहर जेब में पैसा रहेला त रोज के खुशी के दिन बा रोज के गमत करबा हाँ कि नहीं और हम तो बोला मजा कर ले मेरी जान फिर से न होगा जवान ए हे हे हे बुरा बुरा मत करो बुरा है शैतान और गांधी जी के तीन गो बंदर गांधी जी क्या बोले बुरा मत देखो बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो तो जरूर जिंदगी में बुरा चीज न देखिया न सुनिया न बोलिया हमेशा मीठी बोली बोलिया सबके दिल जीतिया ठीक बा काहे इतना घमंड हो ढेर को बोला पन अमर इतना पैसा बा अमर इतना भरा लुटो बा अमर बैंक बैलेंस बा सब कुछ पर ही छोड़ छाड़ के जाए कि भैया दो दिन के जिंदगी बा खाली हाथ आए सर खाली हाथ जाप सर कुछ देने के आ रही सर कुछ देने के जाप सर अगर हमने के साथ को नचित जाए तो हमने के पुण्य हमने के अच्छा कर्म और जब भगवान के जाप सर तब वहाँ न्याय हो तभी चलो गमत करे मजा कर ले मेरी जान गीत अनुराधा जी के नाम सुनंदा भी साधे वतवन नंदा हवन पाई से हेलो शुभा हवन पोत्री से शुभा पॉम्पले मुझसे और मधु मधु उनके साथ देवतवन लाहौजा से हेलो मधु जी बहुत बहुत प्यार के साथ मधु है गीत तुहर फियान से अजय खातिर इंदिरा लौता ने गीत तुहरो नाम बहुत बहुत प्यार के साथ और कमला दीनू है गीत आरोही खातिर और है गीत चलावती से जितना कोई की नींद नहीं लगाता कोई करवट बदलाता इधर कोई उधर करवट बदलाता कोई बोलता प्रताप जी बड़ी गर्म करता और दक्षिण में देख कोई अपन घर में आज पहली बार की पहुँचे जाते दल्ले वन सर और बोलते वन सर भाई गर्म शुरू हो गल बा भी पहुँचे जाते देख कोई एकन डाल के हमने के सुनाता ए हे हे चल मजा कर वाला गीत सुना जा एकन थोड़ा सुन जोरी से डाल दिया अपन और ढेर ठंडा नहीं डाल दिया है वो कातुल से जिक्र में डाल दिया वह में डाल दिया और पहुँच जाते चलता वो चारों बगल ऐसा में गीत है तो लोग सब कोई खातिर जन रात की हमने की सुनता मजा कर ले मेरी जान अनसुया जी क्यूबिप से हवन हेलो
1: मेरी जान
0: है गीत चाहते दिव्यानी खातिर दिव्यानी हवन में बैग से

क्यारोट जिके हमने गाजर बोई रहा सा वो सब्जी भी है वो फल भी है और इस स्वास्थ्य खातिर बहुत ही लाभदायक है बहुत ही पौष्टिक तत्व बा गाजर के सलाद बनेला सलाद काहोत गाजर के लासुप बनेला और काहोत के हमने दाल में या दाल आँची में डाल के पकाई रहा सा रापे करके अच्छा है आँख खातिर और काहोत के कर हलवा गाजर के हलवा भी बनेगा और गाटो भी बनेगा कागज से और विभिन्न प्रकार के मिठाई भी बनेगा और गाजर के जो है उसक ओके इसने वो खाए गाजर उखड़ला जौदे में से ओके सफा से धो के सकबा खाए कंचा का सलाद बना के और भुंजल कागज कागज तारल और भुंजल कागज भी खा जरा और ये गाजर जो निको सब्जी है और एक फल भी है ये 365 दिन हमने के लोकल बाजार में मिलेगा कोनो भी बाजार में जेबा तो

0: है ये थोड़ा मिली और एक प्रयोग करिए जा जरूर ये बहुत अच्छा है लासों देखा थे रवि गुस्संग अत्या लाइन पे और से मिल जा का जगह देवे जगह भी चैंक पर हेलो हेलो जी नमस्ते
1: नमस्ते
0: हमने के संगत या प्रेमिला कैसे कैसे बा
1: अच्छा अच्छा
0: नमस्ते और सब ठीक ठाक
1: हाँ सब ठीक ठाक
0: तो और राजू के बोली मान जोर बा कमती कर दे प्रेमिला प्लीज राजूवा के बोली में ढेर जोर बा कमती कर दे रहने से कब से बच्चे आली बोला आज के दिन कैसे बिता प्रेमिला
1: आज के दिन बिता तो नहीं दुखी दुख के घर
0: हाँ यू कहा होगा बोला तो
1: नहीं परिवार में
0: मृत्यु
1: हो
0: रहा है आ यू फांसी नहीं बा परल जाके मरने में कितना बरिस के रलन जा इतना जेन है कौन से बीमारी एक्सीडेंट
1: बीमारी
0: कब को जेन जेन अभी चल जा दे सन दुख बुझाला ना
1: अपन परिवार परल जाए के दंडे
0: जा हाँ बीमार रहन ढेर दिन से तो भगवान को आत्मा की शांति दे सके रखो उतने दिन कहाँ रहे रहतलन
1: दूर रहे लन तनी
0: हाँ और अगला गीत के कर खातिर बोले तो
1: करे याद में दादा है शिवदत्त जी के योगी तो है ना
0: विनोद शिवदत्त के कौन गीत
1: हाँ विनोद शिवदत्त के जाय
0: बाप दादा लोग के बोली नहीं छोटा से बड़ा आदमी बनिया जल्दी जल्दी नहीं चला नहीं
1: दूर जाए के हा बड़ी
0: कौन सी लेके आल हवा हाँ कौन सी लेके जाप से आली गीतवा तो परिवार की याद में आली बहुत धन्यवाद प्रेमिला बंक आज बोलते हैं देखा जिंदगी में आली से एक दिन परी जाए के बारी बारी से हाँ ने कहा कि नहीं कोई यहाँ पर हमेशा अमर नहीं बा पर दुख बुझाला पर का कर बा परेला को आज
1: की परिवार
0: आयो हाँ पूजा में गर रन हो रात के पूजा में गर रन रात के आवत रन बस साक्षी दो कर लक और माँ भी आईसीयू में बाबर बेचारी 40 साल के आयु में मृत्यु होगा हाँ तो कब
1: भगवान के आगे कुछ नहीं
0: कब कब लिखा रहे ला उससे जाने ला कब कब कोई के है जीवन और मृत्यु हमने के हाथ में नहीं बा हाँ कि नहीं नहीं सच्ची है हमने के
1: जितना जितना समझावा था सबके के
0: हाँ
1: पंडित हुए हो आप भी
0: बहुत धन्यवाद तमनी पढ़ी ला सा रिसर्च करी ला सा पुस्तक में इंटरनेट पर
1: सोशल अच्छा अच्छा बात सिखावा तो सबको जिलियन जाता अपन जिंदगी में बहुत अच्छा
0: अच्छा सिखियन सा तब ना देर कोई है कान से डाल के हाँ कान से निकाल दे वेनन सा
1: हाँ निकाल दे
0: वेनन आली बहुत धन्यवाद प्रेमिला तो जैसे प्रमीरा बोलन होकर परिवार के कुछ सदस्य चल गए हम के सहानुभूति सपाची सह सैकौंदोलियंस पर दिख दुनिया में सब कोई एक दिन परी जाए कि बारी बारी से जब हमने के जन्म होला तो वही दिन भगवान लिख देवेला कि हमने की मृत्यु कब हो ये हमने नहीं जानी रहा सर पर भगवान जाने रहा वो पंडितों नहीं जानी है इतना बड़ा पंडित नहीं जानी पर जब समय आवेला तब पर हम रोईला स विलाप कैला स कैं तेल फलना व्यक्ति इतना निमन रहल पर जब ओकर समय रहेला जाए के तब पर सब कुछ छोड़ छाड़ के जाए के गरुड़ पुराण में लिखल बा कि जब ओकर व्यक्ति के मृत्यु आवेला तब यमदूत आवेला और अपन पास से वो हमने के प्राण लेके जाला भगवान लगे और वहाँ न्याय होला ये शरीर त नश्वर है मोटल है ये शरीर 5 तत्व से बनल है और अंत में 5 तत्वों में मिल जाला कौन सी लेके आल हुआ कौन सी लेके जाप सा खाली हाथ आ रही सर यहाँ से खाली हाथ ही जाप सा

जलसा लाल बा किशोर किमिया के गावल है गीत के संगे भोजपुरी तड़का प्रोग्राम यहीं पर समाप्त हुआ था। रात के 9 बजे से अभी हमने के साथ दे रहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोग के फोन कॉल्स और SMS खातिर शुक्रिया। रात के 11 बजे सुन बजा सुनहरे पल प्रोग्राम नितुषा के साथ और रात के 12 बजे से कल फजर के 5 बजे दे नॉन स्टॉप फिल्मी तराने। हमने की तलों की मुलाकात हुई कल बुधवार के रात के इसी समय रात के 9 बजे से 11 बजे ले रेडियो मोशस रेडियो मनोरंजन पर अजय प्रताप सिंह के साथ प्रोग्राम चली भोज हुई तड़का। तो कल रात तक हमने की इजाजत दा अजय प्रताप सिंह सितारू की ओर से सबको एक प्यार भरा नमस्ते और सलाम शुभ रात्रि लव यू और गॉड ब्लेस नमस्ते शुभ रात्रि।

0: जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
1: प्रणाम, नमस्कार श्रोताओं, हमें यकीन है कि आप सब बिल्कुल कुशल मंगल हैं। और रेडियो मॉरिशस पर चलिए नीतू आपका स्वागत करते हुए आपको हम ले चले हैं हसीन वादियों में। ये है सुनहरे पल कार्यक्रम। आज एक ऐसे नाम से आपसे रूबरू कराएंगे जो हिंदी और मराठी सिनेमा के दर्शकों के दिलों में कई दशकों से बसे हुए हैं। आप हैं सचिन पिलगांवकर। याद आया कौन? एक नन्हे चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में कैमरा के सामने आने वाले सचिन ने अपनी मासूमियत, नेचुरल एक्टिंग और मेहनत के दम पर सिनेमा की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके सबसे खास बात ये रही कि उन्होंने सिर्फ एक्टिंग तक अपने हुनर को सीमित नहीं रखा, बल्कि डायरेक्शन, प्रोडक्शन, राइटिंग, सिंगिंग और टेलीविजन के क्षेत्र में भी अपनी कला का प्रदर्शन किया। तो चलिए, उनके प्यारे प्यारे गाने आज इस सुनहरे पल कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे।

सचिन पिलगांवकर का जन्म 17 अगस्त 1957 को मुंबई में हुआ। उनके परिवार की जड़ों का संबंध गोवा से था और उनके पिता शरद पिलगांवकर फिल्म प्रोडक्शन और बिजनेस से जुड़े हुए थे। सिनेमा का माहौल उनके आसपास था, लेकिन सचिन की असली पहचान उनकी अपनी प्रतिभा से बनी। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उन्होंने मराठी फिल्म हाँ माझा मार्ग एकला से चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपनी फिल्म जर्नी शुरू की। उनकी परफॉर्मेंस को इतनी सराहना मिली कि उन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला। बाद में अजब तुझे सरकार के लिए भी उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस तरह सचिन उन गिने चुने चाइल्ड आर्टिस्ट्स में शामिल हो गए जिन्होंने 2 नेशनल अवार्ड्स जीते।

0: तुम हो।
1: चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में सचिन ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। उनका बचपन ही फिल्म सेट्स पर गुजरा और उन्हें अपने दौर के बड़ी बड़े कलाकारों के साथ काम करने का मौका मिला। ज्वेल थीफ, मंजली दीदी, ब्रह्मचारी, चंदा और बिजली और मेला जैसे हिंदी सिनेमा के प्रोजेक्ट्स में उनकी उपस्थिति ने उन्हें दर्शकों तक पहुंचाया। इस दौर में उन्होंने एक्टिंग की वो बुनियादी समझ हासिल की जो बाद में उनके एडल्ट करियर में बहुत

चाइल्ड आर्टिस्ट से एडल्ट एक्टर बनना आसान नहीं था। बहुत से बच्चे सिनेमा में छोटी उम्र में मशहूर होते हैं, लेकिन बड़े होने के बाद उनके लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। सचिन ने इस बदलाव को सफलता से पार किया। 1970s में उन्होंने एडल्ट एक्टर के रूप में अपनी एक नई इनिंग्स शुरू की और गीत गाता चल, बालिका बधू, अखियों के झरोकों से और नदिया के पार जैसे फिल्मों में लीड रोल्स के जरिए अपनी रोमांटिक और इमोशनल इमेज बनाई। वैसे गीत गाता चल सचिन के करियर की एक बहुत यादगार फिल्म बनी। साफ सुथरी कहानी, मधुर संगीत और उनकी सादगी भरी स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों को बहुत पसंद आया। इसके बाद बालिका बधू और अखियों के झरोकों से ने उनकी पॉपुलैरिटी को और बढ़ाया। उनके अंदाज में सादगी थी, एक नेचुरल चार्म था और उनकी एक्टिंग में ओवर एक्टिंग के बजाय सिंप्लिसिटी नजर आती थी। फिर आई नदिया के पार, जो सचिन के करियर की सबसे यादगार हिंदी फिल्मों में से एक मानी जाती है। गांव की पृष्ठभूमि, पारिवारिक रिश्तों, प्रेम और भावनाओं से जुड़े इस फिल्म में सचिन ने एक सिंपल और रिलेटेबल यंग मैन का किरदार निभाया। फिल्म की लोकप्रियता ने उन्हें घर घर में पहचान दी।

श्रोताओं, सचिन ने सिर्फ रोमांटिक हीरो के रूप में ही अपनी पहचान नहीं बनाई, उन्होंने बड़े हिंदी प्रोडक्शंस में सपोर्टिंग और कैरेक्टर रोल्स भी किए। शोले, त्रिशूल, सत्य पे सत्ता जैसे फिल्मों का हिस्सा बनना उनके करियर की वर्सिटैलिटी को दिखाता है। शोले जैसे लैंडमार्क फिल्म में उनकी मौजूदगी ने उनके फिल्मोग्राफी को और खास बनाया। सचिन पिलगांवकर की कहानी का दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है मराठी सिनेमा। एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने डायरेक्शन की दुनिया में भी कदम रखा। 1980s के दौर में उन्होंने मराठी फिल्म्स डायरेक्ट करना शुरू किया और एक सक्सेसफुल फिल्म मेकर के रूप में भी अपने आप को एस्टैब्लिश किया। वैसे सचिन और सुप्रिया पिलगांवकर की जोड़ी सिर्फ पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि सिनेमा में भी एक क्रिएटिव पार्टनरशिप का उदाहरण रही है। दोनों ने मराठी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में साथ काम किया और टेलीविजन पर भी अपनी एक अलग पहचान बनाई।

वैसे टेलीविजन के बदलते दौर में भी सचिन ने खुद को बदलते समय के साथ ढल लिया। तू तू मैं जैसे कॉमेडी प्रोग्राम के साथ उन्होंने टीवी ऑडियंस को एंटरटेन किया। उनकी टेलीविजन जर्नी ने उनकी पॉपुलैरिटी को फिल्म ऑडियंस से निकालकर घर घर के टेलीविजन व्यूअर्स तक पहुंचाया। म्यूजिकल गेम शो चलती का नाम अंताक्षरी से जुड़ी उनकी पहचान ने भी उनकी वर्सटैलिटी को सामने रखा। सचिन का हुनर सिर्फ हिंदी और मराठी तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने कन्नड़ा और भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया। 2007 में उन्होंने कन्नड़ा फिल्म एक दंता का डायरेक्शन किया, जो उनकी मराठी फिल्म नवरा माजा नवसाचा का रिमेक थी। ये उनकी फिल्म मेकिंग एक्सपीरियंस और रीजनल सिनेमा के प्रति उनकी समझ को दर्शाता है। उनके करियर का एक इम्पोर्टेंट पहलू है कि उन्होंने समय के साथ अपने रोल्स और इमेज को बदलने से कभी परहेज नहीं किया। यंग रोमांटिक हीरो से लेकर मैच्योर एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और टीवी पर्सनालिटी तक उन्होंने अलग अलग फेजेस को एक्सेप्ट किया। उनकी एक्टिंग ने ये दिखाया कि एक कलाकार की क्रिएटिविटी उम्र के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि नए रूप में सामने आ सकती है।

अवार्ड्स की बात करें श्रोताओं, तो सचिन के करियर में नेशनल फिल्म अवार्ड्स का खास स्थान है। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स उनके करियर की शुरुआती बड़ी उपलब्धियों में शामिल है। इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड्स और फिल्म फेयर मराठी अवार्ड से भी सम्मान मिला। 2010 में वी शांताराम स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। सचिन की जिंदगी से एक बहुत खूबसूरत बात सीखने को मिलती है, टैलेंट को सिर्फ एक फील्ड तक बंध कर नहीं रखना चाहिए। एक्टिंग मिली तो एक्टिंग की, डायरेक्शन का मौका मिला तो डायरेक्टर बने, प्रोडक्शन की जिम्मेदारी संभाली, राइटिंग में भी अपना योगदान दिया और टेलीविजन के नए मीडियम को भी। उनका करियर एक कंटिन्यूस जर्नी रहा है श्रोताओं, चाइल्ड आर्टिस्ट से लीडिंग मैन तक, लीडिंग मैन से डायरेक्टर तक, फिल्म मेकर से टेलीविजन पर्सनैलिटी तक और फिर मैच्योर कैरेक्टर एक्टर तक। सिनेमा बदलता रहा, ऑडियंस बदलती रही, टेक्नोलॉजी बदलती रही, लेकिन सचिन पिलगांवकर ने अपने आप को हर नए दौर के साथ रीइन्वेंट किया। आज सचिन पिलगांवकर को सिर्फ एक एक्टर के रूप में याद करना उनके पूरे करियर को समझना नहीं होगा। वो एक कंप्लीट एंटरटेनर और मल्टीफैसेटेड फिल्म मेकर है।

हिंदी सिनेमा हो या फिर मराठी सिनेमा, उनकी डायरेक्टोरियल और एक्टिंग अचीवमेंट्स और टेलीविजन पर उनका काम, ये सब मिलकर उनकी एक बहुत लंबी और विविध कला यात्रा बनाते हैं। सचिन की कहानी असल में सिर्फ स्टारडम की कहानी नहीं है, ये एक ऐसे कलाकार की कहानी है जिसने बचपन में कैमरा को अपना दोस्त बनाया और फिर पूरी जिंदगी सिनेमा को अपनी कर्म भूमि भी बना दिया। 6 दशकों से ज्यादा के सफर के बाद भी उनका नाम इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के उन कलाकारों में लिया जाता है जिन्होंने एक्टिंग के साथ साथ फिल्म मेकिंग के कई पहलुओं को भी अपनाया। और शायद इसलिए सचिन का सफर एक खूबसूरत संदेश देता है कि कला की कोई उम्र नहीं होती, अगर सीखने की लगन, मेहनत और क्रिएटिविटी जिंदा हो तो एक कलाकार अपनी जिंदगी में बार बार नई इनिंग्स शुरू कर सकता है। प्रणाम, शुभ रात्रि।

0: Yo.
1: On the hour, every hour, Radio Marches.

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

0: ना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: एमबीसी रेडियो 24 hours a day।
1: स्पेन के एक दूर दराज इलाके के सरहद ढांचे को मजबूत किया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर हो रहे गैरकानूनी सीमा पार को काफी हद तक रोक दिया जा सके। इससे पहले ही दिन में हजारों लोग समुद्र और जमीनी रास्तों से वहां पहुंच गए थे। पानी में कम 19 लाशें मिली। स्पेनिश डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी ने बताया कि गृह मंत्रालय के हवाले से अंदाजा है कि 24 घंटों के अंदर 49,000 से ज्यादा लोग गैरकानूनी तरीके से मोरक्को से सरहद पार कर गए हैं। अमेरिका ने नए सिरे से ईरान पर नई पाबंदियां लगानी शुरू की हैं। एक व्यक्ति और 5 कंपनियां प्रतिबंध से ताल्लुक रखती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मालवाहक जहाज कंपनियां मध्य पूर्व में उड़ानों को रद्द कर रही हैं। लंबे युद्ध के बाद विमानन क्षेत्र को दोबारा गति मिल रही थी कि अब अरब मुल्कों में फिर से रुकावटें पैदा हो गई हैं। गजा में हमास के लिए समझौता। गजा की शांति परिषद ने कहा कि हमास ने एक रोड मैप की मंजूरी दी है, जिससे गजा से इजरायली ताकतें फारिग होंगी और हमास का निःशस्त्रीकरण होगा। हमास ने शर्त रखी कि इजरायल को भी इस रोड मैप का पालन करना पड़ेगा। उसने बताया कि वो तब तक कदम नहीं उठाएगा जब तक इजरायली पक्ष की स्वीकृति न हो। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में एक खान में एक धमाका हुआ। 34 लोग जान से गए हैं। घटना के वक्त 40 लोग स्थल पर मौजूद थे। सभी मरहूमों के परिवारों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एक जांच शुरू की गई है। स्पेन और फ्रांस के सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में लगी जंगल की आग फिलहाल काफी हद तक काबू में आ गई है। हालांकि दोनों मुल्कों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाने की संभावना है। यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि आग ग्रीस और इटली की तरफ भी फैल सकती है। तेज हवाओं और भयंकर गर्मी की वजह से ग्रीस से लेकर यूके तक कई जगहों पर लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। मेडिटेरेनियन क्षेत्र में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही तेज हवाएं आग को और तेज फैला सकती हैं। इन हवाओं की वजह से आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों को चलाना भी मुश्किल हो रहा है। ग्रीस की मुख्य भूमि के साथ साथ क्रेट और पेरिस द्वीप

0: पंपों पर लगी आग से निपटने के लिए सैकड़ों दमकल कर्मी लगातार काम कर रहे हैं। एक वृहद विस्थापन कार्रवाई शुरू की गई है। भारत में मानसूनी बारिश की वजह से अनेक राज्यों में नुकसानात हैं। आसाम में बाढ़ की वजह से 78 लोगों की जान गई है। आने वाले 3 दिनों के लिए भी तेज वर्षा का अनुमान है।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।